लख चोरिया लख जारिया लख गा लख ठगिया पहना मिया रात दिन के नाल तक पाओ कते बामन बटे आए सब को आखे पाए होए पराना सुटिए पीपर पाए हो नानक तक न टुटे जे तक हो जोर महला पहला।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर तर न जाई कोकी टिका तेज माली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका छोड़ी लेप खंडा नामले जाहे त्रदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री बगायर तिनका ताक तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद ना पे आवे ओ साथ निराश कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहा शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे प्रभु मथे टिका तेड़ तो थी अखाई हाथ सूरी जगत कसाई पैर हो गए प्रबान मिले ताल ने पूजे प्राण बाकिया का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कटी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया बे मत पिटे आना साडा पिटे तन पिटे फेड़ करे मन जू खजनी परे।

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोवाट से। अभी खास स्वागत है आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते बुझी सकंदा आयो। प्रोग्राम शुरू थी चुका है रिटेल स्क्रीन तरह थोड़ी देर में तमा भगत कराम साहब जन जी मिश्रे आवाज में कलाम बुधंदा तंहिंखां पोइ तफ़सीर पेश कंदा पोइ प्रोग्राम नशर कयो वेंदो। सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी ख़ास ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। या त असांजे प्रोग्राम जी विचूड़ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया हींअर छो त भगत कराम साहब खे ॿुधूं।

भगत कलाम साहब जन जी सदाबहार आवाज में कलाम दे रही आकाशवाणी जी सिंधी सरस आए यार पेश आए तबसरो। मुंबई में चौथी का 10 सितंबर 2026 दरमियान 600 का वधिक इंटरनेट माहिर पॉलिसी तैयार कर तकनीकी अगवान पान में गडजानी कर रहे हैं। एपीएनआईसी बाट तई में खतरा तो जहन मंदी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सुरक्षा ए मुस्कबल लाए डिजिटल बुनियादी ढांचे ते गालबोल हली रही है। इन में इंटरनेट जे तरक्की जे इंदड़ दौर ते पण बहस बहस हली रहा है। एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि एपीएनआईसी तई जे कॉन्फ्रेंस जो बाट कॉन्फ्रेंस इंतजाम कराया हुआ नेक्सी यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इनके अलावा आईएसपीएआई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन इदारन के हिमायत मिले है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजरात यानी कि मेती जी ए महाराष्ट्र सूबाई सरकार जी इन कॉन्फ्रेंस में तकनीकी माहिर नेटवर्क ऑपरेटर पॉलिसी तैयार कर इंटरनेट कॉम जहा अगवान पान में मुलाकात कर रहे हैं। इंटरनेट के मुस्कबिल के पेश पवंद ललकार ए वजन बाबत गाल कई वजन तेम अची तो वे आधारित सेवाओं नेटवर्क ऑटोमेशन साइबर सुरक्षा राउटिंग सिक्योरिटी ए इंटरनेट गवर्नेंस मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक्स ए खबरचार टेक्नोलॉजी के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुशील पाल चाहिए।

भारत जो डिजिटल इकोसिस्टम लगातार बढ़ी रहा है तहीं में असा एक सलामत रिसेलेंट ऐं उसके मन लाइ तयारु इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कराए रहियूं मुयसरु कराए रहियूं ऐं सो बि अवलत ते एपीएनएसई बहार जेका आहे भारत खे हिकु अहम प्लेटफॉर्म मुयसरु कराए रही आहे जीअं एशिया पैसिफिक तकनीकी क़ौम सां मशगूली करे सघिजे इन खां अलावा ॼाण जी मट सट करे सघिजे ऐं हिकु खुलियल सभिनी खे शुमार कंदड़ ऐं भरोसेमंद इंटरनेट ते सहकार करे सघिजे। हिन कॉन्फ्रेंस में हिसो वठंदड़ आहे श्री एस कृष्णन, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्रेटरी, इन खां अलावा महाराष्ट्र सरकार जो चीफ सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल। एपीएनएसई डायरेक्टर जनरल जिया रोंग लॉ चयो त इहे ॿिया मुख्य तकनीकी ऐं समाजी शिफ्ट जेके आहिनि से तमामु तेज़ रफ़्तार ते नेटवर्क जे आधार ते तब्दीली आणे रहिया आहिनि। इन सां असांजी मईशत ऐं समाज ॿई मुतासिर थी रहिया आहिनि। एपीएनएसई बाड इलाइक़े जे इंटरनेट क़ौम खे गॾु कंदे भारत खे हक़ीक़ी एक्शन में तब्दील कंदी तंहिं सां हिकु वधीक सलामत रिसेलेंट ऐं स्केलेबल इंटरनेट मिली सघंदी। श्री लॉ वधीक चयो त IPv6 एडॉप्शन में भारत जी सरबराई ॾेखारे थी त जेकॾहिं तकनीकी महारत आहे, सीड़प आहे ऐं सहकार आहे त सभु कुझु मुमकिन थो थी सघे ऐं मुंबई जेको आहे सो एशिया पैसिफिक इंटरनेट क़ौम खे हिकु हंधु गॾिजण लाइ बहितर प्लेटफॉर्म थो मुयसरु कराए। मैक्सी खे अॼु फ़ख्रु थी रहियो आहे त एपीएनएसई बहार जी कॉन्फ्रेंस मुंबई में कराए रही आहे उन वक़्तु जॾहिं भारत जो डिजिटल इकोनॉमी ऐं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ रफ़्तार ते वधी रहिया आहिनि। कॉन्फ्रेंस जी ओपनिंग सेरेमनी में मुख्य तकरीर ॾिनी लाइट स्ट्रॉन्ग ग्रुप सीईओ ऐं मैनेजिंग डायरेक्टर अंजीत गुप्ता। 8 सेप्टेम्बर ते एपीएनएसई बहाट पंहिंजे साइलेंट ते मिक्सी ऐं एपीएनएसई हिकु सुबुह जे चिठे ते सही कई तंहिं में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सां वाबस्त IPv6 ऐं राउटिंग सिक्योरिटी ते करार कयो वियो जंहिं सां भारत जे बुनियादी ढांचे खे वधीक सलामत रिसेलेंट ऐं लंबे अरसे लाइ तयारु कयो वेंदो। हर हिकु वेबसाइट जे लोड वीडियो स्ट्रीम ऐं AI पावर सर्विस पुठियां वंडियल तकनीकी ज़खीरा हूंदा आहिनि जंहिं सां नेटवर्क ॼाण खे ॻोल्हे ऐं कनेक्ट हिकु ॿिए सां पाण में कनेक्ट करे सघंदा आहिनि। एपीएनएसई इन ॾिस में मदद ॾींदी आहे अहम ज़रियनि खे पाण में जोड़ण में। इन खां अलावा इंटरनेट एड्रेसिस खे ऐं नेटवर्क आइडेंटिफायर्स खे पाण में जोड़ंदी आहे। एशिया पैसिफिक इलाइक़े में 56 मईशतूं शुमार आहिनि। थोरे में चइजे त एपीएनएसई इहो ध्यानु रखे थी त इंटरनेट कमु कंदी रहे न फ़क़ति अॼु लाइ पर लंबे अरसे लाइ तंहिं में हिकु खुलियल दायम ऐं सलामत डिजिटल फ्यूचर खे एशिया पैसिफिक इलाइक़े लाइ मुयसरु कराए रही आहे। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा प्रोग्राम सजण तोखे ख़बर कहिड़ी।

पे कैसे पेट्रोल जा गंजी या बिजली जा गंजी गाल कई वजह तो आवाम सिंध में अजा बुरी तरह से हलाक है तैसा वावसा सिंध एक्सप्रेस में एडिटोरियल शायद है जिनको टाइटल है बिजली के मद में आवाम से पवंदड़ 36 अरब रुपये जो बार। एडिटोरियल में लिखल है कि हुकूमत जैसे पैं जिम्मेवार बार न खड़ी है आवाम हुकूमत का बेजारी जो इजहार कन्दी है तो कें भी चूंडल हुकूमत की जिम्मेवारी है आवाम के रिलीफ डे जी सदन जिंदगी सवलाई से बसर थी सके ये नफसियाती मुझारन में न बल्कि समूरन खफन में आवाम आजी हुए तरह वो देश वो समाज अगत है तरक्की कह पर इतने त सिंध में सूरत हाल तमाम ही बदतर है जिते आवाम पानी बिजली ए जिंदगी के अहम जरूरत सबब हलाक है सदन घो वक्त फकत यो सोच में निकली है अजोको डी कें गुजरी वो। एडिटोरियल में अगत लिखल है कि पाकिस्तान उन मुल्क में शुमार थी वे जिते एक ही वक्त घणा ही बहरान गड़ी हली रहा मसलन के खत्म कर परे की गाल पर को सुधारो पर दूर दूर तक दिसण में न पे अचे सरकार वजीर ते जबरदस्त वड़ा खर्च कर रहे हैं इनमें को भी कॉम्प्रोमाइज कर तैयार को सजो खर्च जो बार आवाम से पैजी रो है इं लगी रो है जी आवाम के हर हाल में परेशान कर मुल्क की बागडोर हलानी है आवाम रियासत के जगह टैक्स डी है उनको मकसद ही होंदा कि सरकार वटा पिण खेस खेस सहूलतू मिलन पर इतने तो इन मुल्क की मईशत इनके इकोनॉमी तबाह है तेकर मुल्क के बिजली के बिलन पेट्रोल के अगन पे हलया वे बिजली जहा एतरा तो वा बिल पे मोकल वन जो मू ये भरण की सग को रखन अटजंदर सूरत हाल में मू अजक सोलार्स लगा रहा है इन तरह पैं गुजरान कर रहा पर जिन वट सोलार इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत कने सी वेचारा बिजली जहा वा वा बिल भरे रहा है ए हुकूमत सागी रवायत कायम रखने एक भेरों बीहर आवाम मथा बिजली जो बोझो वजन जो फैसलो कर आवाम से 36 अरब रुपये बार विधो वो सेप्टेम्बर के बिजली बिलन में 36 अरब 56 करोड़ रुपये इजाफे के वसूली थे जो अंदेशो है जुलाई के फ्यूल प्रोसेस एडजस्टमेंट तहत बिजली अघन में फी यूनिट 2 रुपया 52 पैसा इजाफो कर सलाह से बिजली के अथॉरिटी फैसलो कर वरतो है फैसलो वठण का इन बात जो सदो असर सेप्टेम्बर के बिलन में पवंदो आवाम अग में महंगी बिजली सबब हलाक

आहे। हिन ते ॿुधायां की ॾखण एशिया में पाकिस्तान ई सभ खां वधीक महांगी बिजली ॾींदड़ मुल्क आहे। बिजली जो बिल जेकॾहिं फ़क़ति हिकु ॾींहुं बि देरि सां पियारो वञे त रिकवरी एजेंट्स घर में पहुची वेंदा आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में अवाम कीअं ज़िंदा रही रहियो आहे, इहा त फ़क़ति अवाम खे ई ख़बर। तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शाया थियल एडिटोरियल ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो बिजली जे मद में अवाम ते पवंदड़ 36 अरब रुपियनि जो बार।

एक पेशेंट खास खास खबरों भारत जे पाड़ी वजी डॉक्टर एस जयशंकर पैंजे लक्समबर्ग सानी जेवियर बैटल सा नई दिल्ली में बेतरफियो गाल मधुमेह आलमी बेबकई मंझ बिन्हीं मुल्क जहा पा में भरोसेमंद लागापा लक्समबर्ग मुतजम सलामती काउंसिल में भारत जे दायमा मेंबरशिप दावे के हिमायत दिनी है। ईरान चिता दिनो है तो जैसे अमेरिका संदस मिल्कत मथा नवा हमला क्या तो इन जो मोटाए तो जवाब दिनो वेंदो। दक्षिण लेबनान में इसराइली हमले में 12 मानू मार वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में शीतल देवी वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल फाइनल में जो अहमदाबाद में हले पई तेजे फाइनल्स में पहुंची वही है। इन तरह भारत के लिए मेलो सुरक्षित थी वो है।

सर आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा है हिमा संजय प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी रहा है वही असा मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेसी तक दींदा इजाजत सदाई गढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जाएगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विशाल परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कम्प्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रूपये से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए रुद्रा रडार की भी खरीद तथा मैरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय कंपनियों से की जाएगी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध हैं। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघी ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। 6G नेटवर्क के विकास और वैश्विक पहल में भारत अब अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने अमरीकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटकिनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिलों में शामिल हैं। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में भावना और पूजा का सामना चीन से होगा। भारत की पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में स्लोवाकिया से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. More from our correspondent.
2: A major highlight of PM's visit will be the dedication of 3 key sections of Western Dedicated Freight Corridor spanning 326 route kilometers. Built at a cost exceeding 20,700 crore, this marks the full completion and operationalization of the Freight Corridor network. The Prime Minister will also flag off the freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umarkam and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail network. In addition, Mr. Modi will also lay the foundation stone for 3 railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees and 3 national highway projects costing around 1,780 crore rupees to ease the cognition and boost connectivity across Gujarat and Madhya Pradesh. He will also launch various civic and infrastructure projects of Gujarat government worth 2,600 crore, including a 1

श्रोताओं भी आप आनंद उठा रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका का। इसमें अभी आपने सुने डॉ प्रिया लक्ष्मी द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे सितार पर अकील अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर ऋतु मिश्रा और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:32:15। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार, सुप्रभात और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके और हमारे इस खूबसूरत से सुबह के कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। मैं हूं आपकी आज की आपकी अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट अर्चना गुप्ता। और आज की सुबह हम बात करेंगे एक ऐसे एहसास की जिसे महसूस करने के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं होती है।

जी हाँ, एक ऐसा एहसास जो मंदिर की घंटियों में भी मिल सकता है, माँ की दुआओं में भी, किसी अनजान इंसान की मदद में भी, और कभी कभी हमारी अपनी खामोशी में भी। जी हाँ, आज की हमारी बात है भक्ति की, लेकिन आज हम भक्ति को सिर्फ पूजा, आरती और मंदिर तक नहीं सीमित रखेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या भक्ति सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़ना है, या फिर भगवान पर भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना भी भक्ति है।

दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो सबसे पहले किसे याद करते हैं? किसी को भगवान कहते हैं, किसी को ईश्वर।

किसी को अल्लाह तो किसी को वाहे गुरु और किसी को प्रभु। नाम अलग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन रास्ते अलग हो सकते हैं, ये भी हम जानते हैं। पर शायद उस विश्वास की एक भावना होती है जो एक ही होती है।

जी हाँ दोस्तों, वो होता है विश्वास जो सब में एक जैसा होता है, जिसकी भावना एक होती है, वो यही कि मैं अकेला नहीं हूँ। और शायद यही विश्वास इंसान को अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। हमने बचपन से सुना है भगवान की पूजा करो, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि भगवान की पूजा करने का असली अर्थ क्या है? अगर हम मंदिर जाएं, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें और मंदिर से बाहर निकलते ही किसी जरूरतमंद को देखकर मुंह फेर लें, तो क्या हमारी पूजा पूरी हुई? शायद नहीं, क्योंकि भक्ति सिर्फ माथा टेकने में नहीं, व्यवहार में दिखाई देती है दोस्तों। किसी को दुख ना पहुंचाना भी भक्ति है, किसी की मदद करना भी भक्ति है, किसी को माफ कर देना भी भक्ति है, अपने माता पिता का सम्मान करना भी भक्ति है, और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखना भी एक भक्ति है।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और बात चल रही है यहाँ पर भक्ति की। मैं हूँ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। वक्त बता देते हैं, वक्त हुआ है 7:41 और पूरे के पूरे 20 सेकंड्स। चलिए, जब बात चल रही है भक्ति की, तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वो ये कि एक छोटे से शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। हर सुबह वे सुबह जल्दी उठते थे, बहुत ज्यादा जल्दी उठते थे, नहाते, साफ कपड़े पहनते और मंदिर चले जाते। वहां बैठकर लंबे समय तक प्रार्थना करते। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उनसे पूछा, बाबा आप रोज इतनी देर भगवान से क्या मांगते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, पहले मैं भगवान से बहुत कुछ मांगता था, धन मांगता था, स्वास्थ्य मांगता था, सुख मांगता था, अपनी परेशानियां दूर करने की भगवान से हर

वक्त प्रार्थना करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक चीज मांगता हूँ। पुजारी ने पूछा, वो क्या? बुजुर्ग बोले, हे भगवान, मुझे ऐसा इंसान बनाना कि मेरी वजह से किसी और की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए।

खूबसूरत प्रार्थना है ना। हम अक्सर कहते हैं भगवान मेरी जिंदगी अच्छी कर दो, लेकिन उन्होंने कहा भगवान मुझे ऐसा बना दो कि मैं किसी और की जिंदगी को अच्छा कर सकूं। यही तो भक्ति का एक और सुंदर रूप है दोस्तों।

दोस्तों हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अब जब प्रार्थना करते हैं तो शिकायतें भी करते हैं। अब एक बात बताइए, क्या आपने कभी भगवान से शिकायत की है? बिल्कुल की होगी, क्योंकि हम शिकायतें बहुत ज्यादा करते हैं, ये हम सब जानते हैं। जब हमारी मर्जी पूरी नहीं होती, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम शिकायत करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ ये सोचते हैं अक्सर, मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई ये भी सोचते हैं, मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिला। अगर हाँ तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि भगवान से शिकायत करना भी तो एक तरह का भगवान के साथ रिश्ता होता है, जिससे हमें कोई उम्मीद होती है, उसी से तो हम शिकायत करते हैं दोस्तों, कहते हैं ना। लेकिन जिंदगी हमें धीरे धीरे एक बात सिखाती है, कभी आपने इस ओर ध्यान दिया है? हर प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं मिलता दोस्तों, कभी जवाब मिलता है हाँ तो कभी नहीं, और कभी जवाब होता है अभी नहीं, थोड़ा और वक्त लगेगा। और शायद सबसे मुश्किल होता है इस अभी नहीं पर विश्वास करना। लेकिन धैर्य भी तो भक्ति का ही हिस्सा होता है ना दोस्तों। तो जब भी आप भगवान से शिकायत करें, प्रार्थना करें, और भगवान की तरफ से अंतर मन में आपके आवाज आएगी नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी उस चीज का, उस कार्य का वक्त नहीं आया है, तो आप थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी दोस्त। आपकी प्रार्थना का जो असर है ना, वो ईश्वर पे जरूर होगा।

और एक ना एक दिन वो आपकी प्रार्थना को स्वीकारेंगे। तो बस तब तक थोड़ा धैर्य बना के रखें। भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है धैर्य, तो इस धैर्य का साथ कभी न छोड़ें।

लेकिन वो चीज आपको नहीं मिली, उस समय लगता है शायद भगवान ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि जो चीज उस समय नहीं मिली थी शायद वो हमारे लिए बेहतर थी। कभी कभी हमें जिस रास्ते पर जाना होता है ना दोस्तों, वहां पहुंचने के लिए जिंदगी हमें किसी दूसरे रास्ते से ले जाती है। उस समय हमें रास्ता गलत लगता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर समझ में आता है कि शायद यही रास्ता मेरे लिए सही था, क्योंकि इसे ईश्वर ने चुना था। वो कहते हैं ना कि आपके मन का हो तो अच्छा, और आपके मन का अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा शामिल होती है। इसलिए अगर आज आप जिंदगी में भी कुछ ऐसा है, आपकी जिंदगी में भी अगर ऐसा कुछ है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, शायद कहानी अभी बाकी है। पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और धैर्य के साथ उस कहानी के साथ जुड़े रहिए, उस प्रार्थना के साथ जुड़े रहिए।

तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सुबह से बस एक बात अपने साथ लेकर जाइए, भगवान को सिर्फ मंदिर में मत खोजिए, उन्हें उस मुस्कान में खोजिए जो किसी दुखी चेहरे पर आप लाते हैं, उन्हें उस हाथों में खोजिए जो किसी गिरते हुए इंसान को उठाते हैं, उन्हें उस दिल में खोजिए जो किसी को माफ कर देते हैं, और उन्हें उस विश्वास में खोजिए जो मुश्किल समय में भी कहता है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना।

समय से वक्त हो चुका है 7:56 और पूरे 40 सेकंड्स कार्यक्रम की। तो भरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। आज की सुबह हमने जाना कि भक्ति सिर्फ पूजा की एक क्रिया नहीं है, एक एहसास है, एक विश्वास, एक रिश्ता है और सबसे बढ़कर यह इंसान को बेहतर इंसान बनाने की यात्रा है। जब आप अगली बार भगवान के सामने हाथ जोड़े ना, तो अपनी इच्छाओं के साथ एक छोटी सी प्रार्थना

ना और जरूर कीजिएगा कि हे भगवान मुझे अच्छा इंसान बनाए रखना, क्योंकि अगर इंसानियत हमारे अंदर बची रही ना दोस्तों, तो शायद भगवान की खूबसूरत पूजा वहीं पूरी हो जाती है। मैं हूं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना, आपसे फिर मुलाकात का होगी एक नई सुबह के साथ, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ, नई बातों के साथ और नए गीतों के साथ। तब तक रहिए खुश, रहिए मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, स्वच्छता रखिए और यूं ही हमें सुनते रहिए। जल्द मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रूपये से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 28 सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के शक्तिनिकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
3: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित

0: ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे तीन मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू सारण, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की तीन रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कड़ाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: श्री बेटन ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटन ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटन ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.

0: customer-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमेरिकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। नशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के 3रे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार से जुड़े रहिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हथियारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिन्दुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रूपये से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढाई इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today, to also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satyaniketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Gujarat, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara. Mr. Modi will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the completion of the project. Talking to media persons at Ahmedabad Airport, Union Minister Ashwini Vaishnaw said, this mega project has now been fully completed and will be formally dedicated to the nation by the Prime Minister.
3: Dedicated freight corridor.
4: The eastern and western dedicated freight corridors are a major backbone of the country's transformation infrastructure. After several years of work, this landmark project has now been fully completed and now will be dedicated to the nation.

0: And Vijay Sundi will go up against Slovakia's David Ivan and Denis Ivan. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. The news of launching a crackdown on all illegal five-story buildings by the MCD in the national capital finds coverage in all the dailies today. The Tribune writes, five top civic body officials suspended, court orders probe, flags unsafe PG culture. Defence Acquisition Council clears proposals for the three services with 98% procurements to be sourced from Indian industry. Hindustan Times headline says, from missiles to radars, DAC clears 1.1 lakh crore rupee defense boost with 300 kilometer range Sukhoi missiles on list. The Indian Express quotes ISRO chief's message to his staff allaying apprehensions of the space agency being privatized. The headline states, no privatization, but space economy has to grow. National Film Awards ceremony to be in Gujarat this year, cites the Times of India. And finally, in a first, alternative fuels overtake petrol car sales as a headline in the Financial Express. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today to also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UNSC. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrest three members of family that owned collapsed building in Satyaniketan area of the national capital. And India set to feature in four gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्की प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह भी करेंगे। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। लग्जमबर्ग में अक्वामी मुतहदा सलामती काउंसिल ने मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग में अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी के शांतिनिकेतन इलाके में ढह जाने वाली इमारत के मालिक समेत तीन अफराद को गिरफ्तार किया है। और आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी चार फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। गुजरात में वज़ीर-ए-आज़म वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जहां मोदी बारबरदारी के लिए मखसूस मगरबी कॉरिडोर के तीन अहम सेक्शन भी मुल्क के नाम मुअन्नवन करेंगे। इस तरह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इंडियन मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि ये बड़ा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह मुकम्मल हो गया है और इसे वजीर आजम बाजाब्ता तौर पर मुल्क के नाम वक्फ करेंगे।
3: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कम्प्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
2: मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
4: वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान 326 किलोमीटर पर मुश्तमिल बारबरदारी के मखसूस मगरबी कॉरिडोर के तीन सेक्शन को मुल्क के नाम वक्फ किया जाना बड़ी अहमियत का हामिल होगा। इसकी तामीर पर 20,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव और न्यू जेएनपीटी से माल गाड़ियों के साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान

0: कई मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे जो अलीराजपुर के दूरदराज के कबायली इलाकों को रेलवे के कौमी निजाम से जोड़ेगी। इसके अलावा जनाब मोदी गुजरात और मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की खातिर 9,700 करोड़ रूपये मालियत के 3 रेलवे प्रोजेक्ट और तकरीबन 1,780 करोड़ रूपये मालियत के 3 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वो कदाना डैम पर 110 मेगावाट के शमसी प्लांट और पीएमएवाई हाउसिंग यूनिट समेत 2600 करोड़ रुपए मालियत के गुजरात हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे। बाद में वजीर आजम बीजेपी के एआई से आरास्ता और हाईटेक दफ्तर के इफ्तिताह के लिए नवसरी भी जाएंगे। अपर्णा कुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौन एन हैदर।
1: महाराष्ट्र में वजीर आजम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे और वहां मौजूद लोगों से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है इम्कानात से असरात तक जाने फाइनेंस के लिए एजेंटिक एआई क्वांटम भरोसेमंद बाहू मुंसलिक आलमी निजाम। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होने वाले तबादले ख्याल में इस बात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी कि किस तरह एआई क्वांटम टेक्नोलॉजी और दीगर अहम नीज उभरती हुई टेक्नोलॉजियां आलमी सतह पर शहरियों कारोबारी इदारों और मीशतों के लिए भरोसेमंद जाने और ठोस नतज पैदा कर सकती हैं। साल 2020 से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है जिसमें पॉलिसी साज इंजबाती इदारे मरकजी बैंक माली इदारे फिनटेक टेक्नोलॉजी कंपनियां सरमायाकार तालीमी माहिरीन और दीगर आलमी मुतालिका इदारे फाइनेंस के मुस्तकबिल और इसे संवारने के बारे में तबादला ख्याल करते हैं। ये सातवां फिनटेक फेस्ट मुंबई में इस महीने की 11 तारीख तक जारी रहेगा। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इन तजवीजों में भारतीय फौज के लिए केमिकल बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नीज न्यूक्लियाई टोह लेने वाली गाड़ियों हाई मोबिलिटी गाड़ियों जदीद तर्ज के हल्के हेलीकॉप्टरों टॉल टैंक्स और सर्वत्र ब्रिज निजाम की सरकारी खरीद की तजवीजें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुद्र रडार की सरकारी खरीद और मैरीन गैस टर्बाइन्स के डिजाइन और तैयारी नीज इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज को भी मंजूरी दी गई है। अरुद्र रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नस्ब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की इदारों पर इन्हिसार कम हो सके। इधर भारतीय फजाइया के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने के खातिर मुख्तलिफ तजवीजों को भी मंजूरी दी गई है। कसीर मकसदी जैमर की सरकारी खरीद और दिफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निजाम नस्ब करने की भी मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दिफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनतों से की जाएगी। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: लक्जमबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेवियर बेटेल ने अकवामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की कोशिश की ये कहते हुए हिमायत की है कि आलमी इदारे में इस्लाहात की जानी चाहिए ताकि मौजूदा आलमी निजाम के हकाइक की अक्कासी हो सके। एक खबरसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में जनाब बेटेल ने कहा कि भारत के वसी व आरीज होने और इसके आलमी अहमियत के मद्देनजर तौसी शुदा सलामती काउंसिल में इसका शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने भारत और ब्राजील का हवाला देते हुए कहा कि यूएन सलामती काउंसिल में उन बड़े मुल्कों को शामिल करके तौसी की जा सकती है जिनका सरदस्त कोई मुस्तकिल रोल नहीं है। जनाब बेटेल ने मौजूदा वीटो निजाम पर नुक्ताचीनी भी की और इसे दूसरी आलमी जंग के बाकियात से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि किसी एक मुल्क को उन फैसलों को रोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए जिनकी हिमायत वसी तर बैन अलाकवामी बिरादरी ने की हो। लक्जमबर्ग के नायब वजीर आजम भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आए हुए हैं। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग के मकसद से अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ बैन अलाकवामी पहल में शामिल हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका के कॉमर्स के महकमे ने कहा है कि इस कोशिश का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि नए सिलसिले के नेटवर्क से मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात की अक्कासी हो।

ले जा मदारी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत अमीन खान द्वारा राग मियां की तोड़ी में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:15 होने को है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। साथियों, स्कूल के दिनों में हैंडराइटिंग यानी लिखावट पर बड़ा ध्यान दिया जाता था और कई लोगों का ये मानना है कि किसी के हैंडराइटिंग में उसके व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। कुछ लोग इसके विशेषज्ञ भी होते हैं जो आपकी लिखावट को देखकर आपके बारे में सहज ही अनुमान लगा लेते हैं कि आप बिल्कुल ही सरल व्यक्तित्व के हैं या हार्ड व्यक्तित्व है के, यानी कि आप कठिन व्यक्तित्व वाले हैं। इस प्रकार के अनुमान लगा लेते हैं और कई बार तो लोग आपके भविष्य की कल्पना भी कर लेते हैं कि ये आगे चलकर किस प्रकार का इंसान होगा, यानी कि किस प्रकार के जॉब में जा सकते हैं और इसकी जो क्षमता है किस प्रकार की विकसित होगी। इस प्रकार की कई सारी बातें होती हैं। इन्हीं सब विषयों पर एक अध्ययन किया जाता है जिसे हम ग्राफोलॉजी के नाम से जानते हैं और इन्हीं विशेषताओं को यानी कि इनकी खासियत को अध्ययन करने वाले उन्हें ग्राफोलॉजिस्ट कहा जाता है। और सच में हमारी जो लिखावट है वो केवल शब्दों को कागज पर उतारने का माध्यम नहीं है बल्कि हमारे लिखने के तौर तरीके, अक्षरों के आकार, दबाव, स्पीड, झुकाव, दो शब्दों के बीच में जो दूरियां होती है उनके विषय में बहुत सारी बातें उनको देखकर के लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसे हो सकता है, यानी कि ये विशेषताओं का मिश्रण होता है। तो आइए आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और लिखावट के आधार पर क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हम अनुमान लगा सकते हैं क्या। चलिए बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश त्रोस्तकी जी जो कि एक टीचर हैं, ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं और आप एक ग्राफोलॉजिस्ट हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात सबका शुक्रिया, ऑल इंडिया रेडियो की पूरी टीम का, गुरु का।
0: वास्तव में ये ग्राफोलॉजी है क्या, इसके क्या मायने हैं?
1: सर, ग्राफोलॉजी अगर आप इस वर्ड को तोड़ेंगे बीच से तो लॉजी करके एक वर्ड आता है और ग्राफ आता है। जैसे कि हमने बचपन में सुना रहेगा बायोलॉजी, तो लॉजी मतलब स्टडी, बायो बायो का मतलब लाइफ, तो हम लाइफ की जब स्टडी करते हैं बायोलॉजी होती है, तो लॉजी स्टडी है, साइक का मतलब विचार
0: जी,
1: तो एक साइंस है। तो यहाँ पे भी लॉजी वर्ड है और ग्राफ है, तो लॉजी स्टडी और ग्राफ। तो आपकी हैंडराइटिंग, आपका सिग्नेचर, आपके जिंदगी का ग्राफ। अभी कोई अर्थक्वेक होता है तो वहां पे भी ग्राफ, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ पे सीआरओ में आपका ग्राफ दिखाया जाता है,
0: ईसीजी में ग्राफ,
1: ईसीजी में ग्राफ दिखाते हैं। ये ग्राफ है ना, आपके अंदर का ग्राफ है, बाहर का तो है ही नहीं। तो सेम वे आपकी हैंडराइटिंग अंदर का ग्राफ है,
0: यानी कि आंतरिक स्थिति को दर्शाता है,
1: सबकॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, अंदर का जो मन है, बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। मन में जो खलबली चल रही है वो कागज में उतर जाती है
0: जी।
1: अगर आप बहुत ही उत्तेजित हो तो वो दिखेगा, चेहरे पे नहीं दिखेगा लेकिन आपके हैंडराइटिंग में दिख जाएगा,
0: यानी कि आपका व्यक्तित्व है उसकी झलक मिल जाएगी
1: पूरी तरह से।
0: क्या इससे हम सटीक कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसकी हैंडराइटिंग को देखकर ही पता लगाया

0: जैसे कि मैंने ग्राफ की बात, ये ग्राफ है पूरा, टाइपिंग वाली जो चीज है देखो, इसमें सब लेटर्स जो सीधे खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि टाइप्ड है,
1: टाइप्ड
0: है, ठीक है। लेकिन जब हम नेचुरली लिखते हैं तो किसी की सीधी खड़ी रहती है, किसी की आगे झुकती है, किसी की लेफ्ट की तरफ झुकती है, ठीक है। इसको हम स्लांट कहते हैं, इन कौन सी दिशा में तुम्हारी हैंडराइटिंग झुक रही। अगर आप पूरा हैंडराइटिंग जिसका भी चेक कर लो तो सीधे और आगे लिखने वाले ज्यादा है, लेफ्ट की तरफ झुकने वाले कम है। तो ये लेफ्ट में क्यों लिख रहा है? जो लेफ्ट में झुका हुआ है वो अपने इमोशंस को नहीं दर्शाता, अंदर रखता है, किसी को नहीं बताएगा। आप कितना भी पूछ लो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उसका हैंडराइटिंग लेफ्ट की तरफ जा रहा है, शरीर भी ऐसा पीछे की तरफ हमेशा रहता है। जो सीधा लिखता है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक होता है, तब बताएगा और उसके सामने बताएगा जहां पर वो कनेक्टेड है, जहां जरूरत है। और जो आगे की तरफ लिखता है, अभी मैं देखो ये आगे की तरफ आया तो मैं सबसे ज्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगा। मैं किसी को पहचानता हूं या नहीं पहचानता हूं, आपने कभी रिक्शा ट्रैवल किया? नहीं। कुछ रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर आपको पहचानते भी नहीं, फिर भी चालू कर देते हैं बात करना, उस स्ट्रेंजर से भी बात कर लेते हैं।
1: तो लिखावट में गति का भी मायने रखता है, क्या मायने रखता है?
0: अभी जैसे कि कितना फास्ट आप लिखते हो, डॉक्टर्स हैंडराइटिंग आप चेक कर लेना, तो डॉक्टर्स लोग बहुत फास्ट
1: लिखते हैं,
0: डॉक्टर को फटाफट सब बताना है, तो उनकी हैंडराइटिंग बहुत फास्ट और तेज होती है। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो फास्ट थिंकर्स होते हैं ना, वो लोग शब्दों को कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि इधर नहीं रहते, वो आगे की तरफ रहते हैं। तो ये लिखते हुए सोच रहे आगे का,
1: आगे के सोच,
0: तो यहाँ के लेटर्स कंप्लीट नहीं करने की वजह से वो फास्ट हैंडराइटिंग आ जाती है,
1: और इसकी वजह से हैंडराइटिंग थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत आती है।
0: पढ़ने में दिक्कत आती है।
1: पेन को कागज पर अपनी ताकत से जितना दबाया गया, क्या इसका ग्राफोलॉजी में भी कुछ मायने होते हैं, महत्व होता है?
0: बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात पूछा यहाँ पर। तो हम इसको प्रेशर कहते हैं, जितना दबा के लिखते हैं, तो दबा के लिखने में ताकत लगती है
1: जी,
0: और हल्के से लिखने में ताकत नहीं लगती। तो जो भी बंदा बहुत दबा के लिखता है उसका एनर्जी अच्छी है, उसकी ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, तो जब दबा के लिखता है उसकी ताकत ज्यादा रहती है, एनर्जी भी अच्छी रहती है, विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। और जो हल्के से लिखता है वो वीक विल बोलते हैं, उसकी विल पावर, अंदर की आत्मशक्ति जो भी हम कहेंगे, वो बहुत कमजोर होता है और उसमें एनर्जी भी कमजोर होती है। लेकिन जब ताकत से लिखते हैं तो उधर एंगर भी आता है, गुस्सा भी आता है, और जो एकदम हल्के से लिखते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, जाने दो, माफ कर दो।
1: तो जब किसी की लिखावट पे हम ध्यान देते हैं तो उसकी एकाग्रता, और दूसरी बात है कि जो एक आत्मविश्वास होता है और नेतृत्व क्षमता, क्या इनका भी आकलन किया जा सकता है क्या?
0: अभी हम फोकस की बात करते हैं, इसमें दो लेटर है, स्मॉल लेटर जिसको आई और जे कहते हैं, तो छोटा आई और जे, आपने देखा रहा इसके ऊपर हम डॉट डाल, तो पहले मैंने समझिए आई बनाया, फिर पेन उठा के मैंने डॉट डाल, ये डॉट अगर एग्जैक्टली आई के ऊपर गिरा यानी कि आपकी एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस बहुत जबरदस्त है। अगर ये डॉट पीछे गिरा तो आप लेट वाले लोग, प्रोकास्टिन, यानी कि आज का काम कल, कल का काम परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है परसों। तो ये जो है एकाग्रता, इससे मालूम पड़ती है। दूसरा आपने कहा लीडरशिप की बात करते
1: जी, जी, जी।
0: तो भी सिंपल है, जिसकी हैंडराइटिंग साइज बड़ी होती है तो जो बड़े लिखते हैं लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो बड़ी चीजों पे ध्यान देते हैं, छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। और लीडर्स को बड़ा पिक्चर दिखता है, छोटा पिक्चर नहीं दिखता। छोटी हैंडराइटिंग वाले छोटी चीजों पे, माइन्यूट डिटेल वर्क पे ध्यान देते हैं, लोग बड़ा पिक्चर नहीं देखते, उनका माइन्यूट, उनका रिसर्च विसर्च वाली बात होती है, और बिग हैंडराइटिंग वाले बड़ा काम करते हैं।
1: आज का दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमने देखा कि आज सबके पास मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से नहीं लिख पाता तो इसका कुछ संकेत है क्या? ये
0: बहुत बड़ा संकेत है, लिखना एक बहुत बड़ा मानव स्किल है। जब भी हम पेन पकड़ के लिखते हैं तो हम इंडेक्स फिंगर एंड थंब को टच करते हैं, तो इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं,
1: ध्यान मुद्रा।
0: और जब भी हम इंडेक्स फिंगर एंड थंब को टच करके लिखते हैं तो हमारा ध्यान मुद्रा जागृत होता है, 90% ब्रेन सेल जागृत अवस्था में चला जाता है। स्वीडन करके एक देश है जिसने वापस से हैंडराइटिंग के ऊपर लोग रिटर्न आए, अभी स्कूल्स में बच्चों को डिक्टेट कर रहे, बच्चे अपनी हैंडराइटिंग में लिख रहे और सीख रहे, स्वीडन ने ये डिसीजन लिया है। उसको देखते देखते ग्रेट ब्रिटेन भी स्टार्ट कर देगा। इस युग में जहां पे एआई और डिजिटल सब चीजों पे चल रहा है, वहां पे लिखना तो मतलब अगर आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो, रोज रात को सोने के पहले एक किताब ले लेना और दिन भर क्या क्या हुआ सिर्फ स्क्रिबल करना, लिखना ऐसा फटाफट, ये हुआ
1: डायरी लिखने की बात,
0: डायरी लिखनी सिर्फ लिख देना, ऐसा देखो ऐसा लिख देना 5 मिनट में लिखने सो जाओगे, तो इतना शांति मिलती है, तुम लिखते हो नहीं
1: जी। कुछ लोग हैं कि अपने हाथों से नहीं लिख पाते हैं, वो पैरों की अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनके बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं?
0: तो हम कहने के लिए इसको हैंडराइटिंग कहते हैं, लेकिन ये हैंडराइटिंग नहीं है, ब्रेन राइटिंग है। जो ब्रेन में है वो ही आएगा,
1: वही
0: तो
1: आएगा।
0: जिनके पास हाथ नहीं वो पैर से लिखेंगे, सो तो ब्रेन राइटिंग है ना, तो ब्रेन के अंदर की परिभाषा है, सबकॉन्शियस जो है
1: जी। ब्रजेश जी, क्या करियर काउंसिलिंग और व्यक्तित्व विकास या शिक्षा के क्षेत्र में भी इसमें कुछ किया जा सकता है?
0: जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो बड़ा हैंडराइटिंग एक्सट्रोवर्ट है, छोटे हैंडराइटिंग इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट वाले लीडरशिप में जाएंगे, स्मॉल हैंडराइटिंग वाले रिसर्च में जाएंगे।

0: ऐसे तीन चार पैरामीटर्स हैं जिसमें हम हैंडहेडिंग से करियर एंड रिक्रूटमेंट, मतलब
1: जी
0: लोगों को जॉब पे रखना है।
1: जी
0: उसने एमबीए इन फाइनेंस करके आया है, एमबीए इन मार्केटिंग, वो तो डिग्रियां मिल जाती हैं।
1: जी
0: वो कितना भी मेरे सामने टाई वाई पहन कर प्रेजेंट कर ले, मैं इसकी हैंडहेडिंग देता हूं, उसको कितना मार्केटिंग आएगा, कर पाएगा कि नहीं,
1: जी
0: हमको पता चल जाता है।
1: राजेश जी, आजकल क्या सबको एक सिग्नेचर की आवश्यकता है, तो सिग्नेचर भी क्या वही उस माइंडसेट को दर्शाता है उसके?
0: ग्राफोलॉजी में हमेशा कहते हैं, जब मैं सिखाता हूं ये साइंस, तो हैंडराइटिंग एक समंदर है और सिग्नेचर आपका समंदर का एक ग्लास है, लेकिन वो ग्लास में जो मैंने पानी लिया है वो समंदर का ही पानी है, यानी कि आप ही है, लेकिन सिग्नेचर जो है आपकी पब्लिक इमेज है, पब्लिकली आप अपने आप को कैसा दर्शाना चाहते हैं। देखो, हमको बचपन से बहुत गलत बात बताई गई है कि सिग्नेचर ऐसा करो ताकि लोग रीड ना कर सके, पहचान ना सके, इसके लिए हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन ये तो ग्राफ है, तुमने इधर कॉम्प्लिकेशन किया तो जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन है, और ये पब्लिक इमेज है। अगर आपका सिग्नेचर कोई पढ़ नहीं पा रहा है, वो इंसान आपको कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएगा, और आप बोलते रहेंगे अरे इंसान समझ ही नहीं रहे, लोग मुझे समझते ही नहीं, तुमने कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है, तो वो दुनिया की तो समझेगी आपको कि क्या है। देखो, सिग्नेचर में सिर्फ आपने नाम लिखा तो बट ऑब्वियस तुमको तुम्हारे बारे में ही दिमाग में ख्याल आता, मैं हूं, आप समझे, यानी कि मेरे इर्द गिर्द में जिंदगी में मेरे से बढ़कर और मैं जो सोचता हूँ, माई वे और हाई वे कहते हैं हम लोग, ऐसा होता है।
1: जी, क्या ग्राफोलॉजी का जो इस्तेमाल है नौकरी के चयन में किया जाता है और किसी व्यक्ति की ट्रस्ट को, विश्वसनीयता को जांचने में किया जाता है, तो क्या वैज्ञानिक रूप से ये उचित है?
0: देखो, अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये साइंस ही है, ये साइंस है, इसको बहुत विस्तार में स्टडी की गई थी। जैसे कि कोई चीट करता है, एग्जाम्पल, ये कहां से पता चला ना, तो बहुत सारे चीटर्स लोग की हैंडराइटिंग ली गई थी, अभी हजार के सैंपल में अगर मैंने देखा तो कुछ पैटर्न्स उसके अंदर कॉमन थे, तो वो पैटर्न्स को स्टडी किया गया, फिर दूसरों के अंदर चेक किया गया, तब जाके ये साइंस, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल साइंस है, कोई थियोरेटिक है ही नहीं इसके अंदर।
1: अभी आपने चीटिंग की बात की, तो कई बार किसी को लेटर लिखा जाता है, धमकाया जाता है, तो उसकी भी अलग से स्टडी होती है और उनकी हैंडराइटिंग पहचानी जाती है, हैंडराइटिंग के बारे में पता किया जाता है कि ये किस माइंडसेट का व्यक्ति है, क्राइम में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
0: क्रिमिनोलॉजी करके विशेष टॉपिक है कि आपकी हैंडराइटिंग से हम टेररिस्ट हो, सीरियल किलर हो, या एकदम क्रिमिनल माइंडसेट वाला हो, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा जो दबाव करके लिखते हैं, कुछ लोग इस तरीके से दबा के लगते हैं कि पेज ही फट जाता है,
1: जी जी,
0: तो वो काफी सारी चीजें जिससे हमको क्रिमिनल मेंटालिटी, सुइसाइडल मेंटालिटी पता चलती है।
1: क्या ग्राफोलॉजी और फॉरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस में कोई अंतर है?
0: देखो, फॉरेंसिक का हिस्सा है ग्राफोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस का मतलब ही होता है कि किसी का डेथ हुआ तो उसके शरीर में क्या केमिकल से लेके सब वो सब स्टडी करके, कभी मरा, कैसा मरा, क्या है, और समझो उसने कुछ लिख कर गया है कहीं पे, उसकी किताब पढ़ी है, कुछ है, उसने सुइसाइडल नोट डाल दिया या किसी कुछ ऐसा, तो पता चलता ना कि व्यक्तित्व में क्या था, इसने खुद ने किया क्या है, तो हैंडराइटिंग उसका एक हिस्सा बनता है कि उससे हम स्टडी कर सकते हैं पूरा का पूरा।
1: तो क्या हम इसे अंतिम सत्य मान सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है लिखावट देख करके, सिग्नेचर देख करके, उसे हम सच मान सकते हैं?
0: कल सुबह उठकर आपकी जिंदगी में कोई घटना घटी, बहुत ही बड़ी घटना घटी, तो आपका विचार बदल जाएगा, तो आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर बदलने के चांसेस बहुत हाई है। तो हम ये कभी नहीं कहते कि इंसान ऐसा ही रहेगा,
1: जी
0: कल कुछ घटना घटी तो उसका पैटर्न चेंज हो सकता है।
1: जी राजेश जी, कई बार कहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, आप इसे सुधारिए, तो वो लिख लिख करके प्रैक्टिस कर हैंडराइटिंग सुधर जाती थी, तो उसे आप क्या कहेंगे?
0: तो इसे हम ग्राफोथेरेपी कहते हैं, थेरेपी का मतलब सुधार लाना। तो अगर कुछ लिखावट से हमको नेगेटिव पैटर्न पता चलते हैं, तो कुछ तो लिखावट होगी जिससे पॉजिटिव चीजें पता चलती हैं, है ना, दोनों व्यक्तित्व तो दोनों तरफ है। तो अगर हमने ये एग्जिस्टिंग पैटर्न को चेंज करवाया प्रैक्टिस करके और वो पॉजिटिव पैटर्न उसमें डालना स्टार्ट किए, सिंपल है, सिंपल अगर हम बताएंगे, जो भी लोग सिग्नेचर सीधा करते हैं
1: जी
0: वो स्टेबल रहते हैं, एवरेज रह जाते हैं
1: जी।
0: अगर यही सिग्नेचर को मैंने ऐसा 30 डिग्री ऊपर की तरफ प्रैक्टिस करवाया तो ग्रोथ है, तो ग्राफ चेंज किया
1: जी,
0: जो सीधा ग्राफ था उसको मैंने चेंज करवाया, लेकिन प्रैक्टिस लगता है
1: जी,
0: जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो व्यक्तित्व वैसा बदल जाएगा। तो एक है कि विचार बदलो, हैंडराइटिंग बदलेगा, एक घटना घटी आपका विचार बदल गया, हैंडराइटिंग बदला, और दूसरा है कि हैंडराइटिंग बदलो तो विचारधारा बदलेगी।
1: राजेश जी, अपने काम को सही दिशा देने के लिए, उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: हमेशा कहते हैं कि सक्सेस मंत्र क्या है, टैलेंटेड पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, स्मार्ट पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, पीपल दोज हू मैनेज देयर टाइम, मतलब जो भी अपने समय को सही तरीके से सदुपयोग करता है वही सक्सेसफुल होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, थिंक इट,
1: डू इट एंड रिव्यू इट।
0: तो रोज रात को सोचना है कि मुझे क्या क्या करना है, तो उसको थिंक करके उसको

0: इंक करो, लिखो, तो यहां से जब वो कागज पे उतरता है तो हमारा ब्रेन खाली हो जाता है
1: जी,
0: और हमको मालूम पड़ता है फिर अगले दिन उठना है और क्या क्या लिखा है, भाई ये काम है, ये काम है, ये काम है, इसको कर लो, और शाम को बैठ कर रिव्यू करो यार क्या हो गया और क्या बाकी है
1: जी,
0: उसको अगले दिन में डाल दो।
2: हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो श्रोता हैं, इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस हैंड राइटिंग के विषय में, झुकाव के विषय में, दबाव के विषय में?
0: देखो, हम इंग्लिश में कहते हैं कि यू आर व्हाट यू राइट, यू कैन राइट व्हाट यू वांट टू बी, मतलब आप जो लिखते हो वो आप हो, जो भी लिखा है, तो आप जो बनना चाहते हो वो लिख लिख कर बदल सकते, पॉजिटिव पैटर्न्स पता लगाकर उसको प्रैक्टिस करना
2: स्टार्ट करो, आपने बताया।
0: हाँ, तो आपका पैटर्न चेंज होना स्टार्ट होगा
2: जी। ग्राफोलॉजी की जो दुनिया है बहुत ही अद्भुत है, जहां हमारी लिखावट को, हमारे व्यक्तित्व को समझने में आसानी होती है, एक संभावित संकेत के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति के स्वभाव या मानसिक स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वैज्ञानिक प्रमाण, संदर्भ और विशेषज्ञ की सलाह हमेशा महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए सलाह लेते रहिए, अपनी हैंडराइटिंग सुधारते रहिए। राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ग्राफोलॉजी के विषय में इतनी सारी जानकारियां दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
0: धन्यवाद।
3: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

आदाब अर्ज है, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का अब आगाज होता है।

हम नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर में सुबगाही प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे भजन। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा। खबरें 9:50 पर नशर होंगी और 10 बजे शर्मी फरोजा प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 10:05 पर उसने गजल प्रोग्राम में सुनिएगा गैर फिल्मी गजलें। 10:30 पर पूर्वोत्तर डायरी नशर होगी और 11 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे वीएम आनंद का तहरीर करदा एक ड्रामा पैसा ही पैसा। दिन में 12 बजे खबरें नष्ट होंगी और 12:10 से आप सुनेंगे प्रोग्राम मिले सर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम 12:30 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। आज का मौजू है चंपारण की तारीख। 12:45 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में आलमी खबरें 1 बजे नष्ट होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। यदि एक नजर इस मजलिस में नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुबह का ही। आज सुनिए दीप्ति भल्ला से भजन।

0: सुबह का ही प्रोग्राम में अभी आप शब्द सुन रहे थे और अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिक्र करने का। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने मित्र राष्ट्र के साथ अपने युद्ध विराम की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। आज ही के दिन वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में हिंदी में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भाषण दिया था। वहीं 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पुनर्निर्मित कर्तव्य पथ, जिसे पूर्व में राजपथ कहा जाता था, उसका उद्घाटन किया। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज के हमारे सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जिसमें हम याद करेंगे कि आज के दिन किन महान विभूतियों की जन्मदिन है, कब उनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के महान संगीतकार, गीतकार, गायक और फिल्म निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को। आज उनकी जन्म शताब्दी है। वे एक ऐसे कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और खुद ही गाते थे। खास बात यह है कि भूपेन दा का संगीत सिर्फ मनोरंजन का नहीं था, बल्कि वह समाज का आईना था। उनके गीतों में शोषितों का दर्द भी था और मानवता की पुकार भी। जब वे गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात ब्रह्मपुत्र नदी गा रही हो। आइए सुनते हैं फिल्म महात्मा और उनके गैर फिल्मी एल्बमों का यह कालजयी गीत, जो आज भी हर भारतीय की आत्मा को झकझोर देता है।

एक शब्द सीधे दिल में उतर जाता है। श्रोताओं, भूपेन दा ने असमिया संगीत को वैश्विक पहचान तो दी ही, साथ ही हिंदी सिनेमा को भी अपनी धुनों से समृद्ध किया। फिल्म रुदाली में उनके द्वारा संगीतबद्ध किया गया एक गीत आज भी विरह और दर्द की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति माना जाता है।

कला और संस्कृति में भूपेन हजारिका जी के अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। कहा जा सकता है कि उन्हें कला जगत के लगभग सभी सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया। आज ही जयंती है सुरों की मलिक का, वर्सेटाइल क्वीन और सदाबहार पार्श्व गायिका आशा भोसले जी की।

आशा भोसले जी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने कभी खुद को किसी एक दायरे में नहीं बांधा। उन्होंने चुलबुले गानों से रोमांटिक गीतों और शास्त्रीय संगीत तक हर विधा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जब संगीतकार खयाम ने उन्हें फिल्म उमरा जान के लिए चुना तो उन्होंने गजल गायकी को एक नया मुकाम दे दिया। आइए सुनते हैं उनकी मखमली आवाज में सजी यह अमर गजल।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह भी करेंगे। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। लक्ज़मबर्ग ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग में अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी के सतनिकेतन इलाके में गिर जाने वाली इमारत के मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। और आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। गुजरात में वज़ीर-ए-आज़म वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी बारबरदारी के लिए मखसूस मगरबी कॉरिडोर के 3 अहम सेक्शन भी मुल्क के नाम मुनवन करेंगे। इस तरह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इधर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि यह बड़ा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह मुकम्मल हो गया है और इसे वज़ीर-ए-आज़म बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान 326 किलोमीटर पर मुश्तमिल बारबरदारी के मखसूस मगरबी कॉरिडोर के 3 सेक्शन को मुल्क के नाम वक्फ किया जाना बड़ी अहमियत का हामिल होगा। इसकी तामीर पर 20,700 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म न्यू सानंद, न्यू मकरपुर, न्यू उमरगांव और न्यू JMPT से मालगाड़ियों के साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो अलीराजपुर के दूरदराज के कबायली इलाकों को रेलवे के कौमी निजाम से जोड़ेगी। इसके अलावा जनाब मोदी गुजरात और मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की खातिर 9,700 करोड़ रूपये मालियत के 3 रेलवे प्रोजेक्ट और तकरीबन 1,780 करोड़ रूपये मालियत के 3 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। उकादना डैम पर 110 मेगावाट के शमसी प्लांट और PMAY हाउसिंग यूनिट समेत 2,600 करोड़ रूपये मालियत के गुजरात हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म BJP के AI से आरास्ता और हाईटेक दफ्तर के इफ्तिताह के लिए नवसारी भी जाएंगे। महाराष्ट्र में वज़ीर-ए-आज़म मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे और वहां मौजूद लोगों से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू इम्कानात से असरात तक

कंपनी फाइनेंस के लिए एजेंटिक एआई क्वांटम भरोसेमंद बहु मुंसलिक आलमी निजाम। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होने वाले तबादले ख्याल में इस बात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी कि किस तरह एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और दीगर अहम नीज उभरती हुई टेक्नोलॉजियां आलमी सतह पर शहरियों, कारोबारी इदारों और मईशतों के लिए भरोसेमंद, जामे और ठोस नतीजे पैदा कर सकती हैं। साल 2020 से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामनगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। इन तजवीजों में भारतीय फौज के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नीज न्यूक्लियाई प्रोब लेने वाली गाड़ियों, हाई मोबिलिटी गाड़ियों, जदीद तर्ज के हल्के हेलीकॉप्टरों, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज निजाम की सरकारी खरीद के तजवीजें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुधर राडार की सरकारी खरीद और मरीन गैस टर्बाइन की डिजाइन और तैयारी नीज इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज को भी मंजूरी दे दी गई है। अरुधर रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नस्ब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की इदारों पर इन्हिसार कम हो जाएगा। उधर भारतीय फिजाइया के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ तजवीजों को मंजूरी दी गई है। कसर मकसदी जैमर की सरकारी खरीद और दिफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निजाम नस्ब करने की भी मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दिफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनअतों से की जाएगी। लक्जमबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेवियर बेटेल ने अक्वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की कोशिश की ये कहते हुए हिमायत की है कि आलमी इदारे में इसलाहत की जानी चाहिए ताकि मौजूदा आलमी निजाम के हकाइक की अक्कासी हो सके। एक खबरसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में जनाब बेटेल ने कहा कि भारत के वसी वारिज होने और इसके आलमी अहमियत के मद्देनजर तौसे शुदा सलामती काउंसिल में इसका शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने भारत और ब्राजील का हवाला देते हुए कहा कि यूएन सलामती काउंसिल में उन बड़े मुल्कों को शामिल करके तौसी की जा सकती है जिनका सरे दस्त कोई मुस्तकिल रोल नहीं है। जनाब बेटेल ने मौजूदा वीटो निजाम पर नुक्ताचीनी भी की और इसे दूसरी आलमी जंग के वाकयात से ताबीर किया। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग के मकसद से अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ बैन अलाक्वामी पहल में शामिल हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका के कॉमर्स के महकमे ने कहा है कि इस कोशिश का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि नए सिलसिले के नेटवर्क से मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात की अक्कासी हो, मुसाबिकत मुस्तहकम हो और इख्तिलाफ को बढ़ावा मिले। अमरीका के मियामी में G20 के इख्तराई वजीरों की कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीका के कॉमर्स के वजीर हॉवर्ड लुटनिक के साथ कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र प्रसाद की मुलाकात के बाद ये ऐलान सामने आया है। दोनों रहनुमाओं ने 6G तकनीक के मुस्तकबिल और नए सिलसिले का टेलीमौसलाती नेटवर्क तैयार करने में बैन अलाक्वामी इश्तराक की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। ईरान ने ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए सदर मसूद पेजिश्कियान के नई दिल्ली के दौरे से कबल एक अहम सिफारती मरकज के तौर पर भारत के रोल को उजागर किया है और ये उम्मीद जाहिर की है कि ये ग्रुप दो तरफा तजारती और क्लियरेंस इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। जनूबी लेबनान के एक गांव में इसराइली फिजाई हमलों में 12 लोग हलाक हो गए। रात के वक्त एक हमले में कफर रोनान ने एक रिहायशी इमारत में 2 बच्चे और 4 खवातीन समेत 12 अफराद की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढह जाने के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और अपनी तहकीकात तेज कर दी है। इस वाकये में 7 अफराद की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस वाकये के सिलसिले में इमारत के मुबैना मालिकन, उनके शौहर और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बारिश होने और बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से उत्तर प्रदेश के 25 अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान औसत से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी

0: महिला सीरीज में भारतीय खिलाड़ी चार फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पैरा रिकर्व खवातीन की टीम गोल्ड फाइनल में भारत की भावना और पूजा का मुकाबला चीन के खिलाड़ियों से होगा। इधर मर्दों के पैरा रिकर्व टीम गोल्ड फाइनल में भारत के हरविंदर सिंह और विजय सुंडी स्लोवाकिया के खिलाड़ियों से मुकाबला करेंगे। इसके अलावा भारत मर्दों के पैरा कंपाउंड टीम फाइनल में भी सोने का तमगा जीतने की कोशिश करेगा, जहां श्याम सुंदर स्वामी और तुमन कुमार का मुकाबला इराक के खिलाड़ियों से होगा। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह भी करेंगे। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक कौंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। लक्जमबर्ग ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग में अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। और दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी के सत्यनिकेतन इलाके में ढह जाने वाली इमारत के मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब पेश है अखबार जरी का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: जहद के लुगवी माना है दुनिया से किनारा कश होना, दुनिया से बेरगबती जाहिर करना। तकवा के लुगवी माना है बचना। इस्तिलाह शरा में इसकी आसान तशरीह इस तरह की जा सकती है कि ज़ोहद व तक्वा अखलाक की जान और ईमान का कमाल है। ज़ोहद व तक्वा की असास शरीयत इस्लामी है और कुरान व हदीस ज़ोहद व तक्वा का सरचश्मा है। खुदा ताला ने ज़ोहद व तक्वा इख्तियार करने के कुरान मजीद में बहुत से फजाइल इरशाद फरमाए हैं। ज़ोहद के मुतालिक इरशाद है, लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला मा असाबकुम। तर्जमा, ताकि तुम अपनी फौत शुदा चीजों पर मायूस न हो और ना ही हासिल शुदा चीजों पर खुश हो। यानी ज़ोहद की खसूसियत यह है कि ज़ाहिद का दिल पुर उम्मीद और शुक्र गुजार होता है, चुनाचे जब उससे कोई चीज फौत हो जाती है तो वो दिल शिकस्ता नहीं होता, क्योंकि उसका ज़ोहद इन फानी चीजों की हकीकत को कुछ इस तरह से उसके सामने खोल कर रख देता है कि वो उसके नजदीक काबिल एतबार ही नहीं होती हैं। इसी तरह हासिल शुदा चीजें भी उसके सामने इस लायक नहीं होती हैं कि वो उनकी खुशी में मस्त हो जाए और नवाजने वाले की शुक्रगुजारी से गाफिल हो जाए। ज़ोहद के माना इस्लाम में तारीक दुनिया होकर रहबानियत इख्तियार करने या जोगी बन जाने के कतान नहीं है, बल्कि इस्लाम का नजरिया एक जाहिद के सिलसिले में यह है कि जाहिद दुनिया में रहकर एक मुआशरती जिंदगी गुजारे, शरीयत की हुदूद में रहकर दुनियावी मामलात को अंजाम दे, बअल्फाज दीगर मकसूद से जुड़कर गैर मकसूद से अपने आप को दूर रखे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तक़वा के मुतालिक इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बिलाशुबा तुम में से अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज्ज़ज़ वो है जो ज्यादा परहेजगार है। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तकवा क्या है? हजरत उबई बिन काब ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी पुरखार रास्ते से गुजरे हैं? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्यों नहीं? उबई बिन काब ने कहा, फिर आपने उस वक्त क्या किया? फारूक आजम ने जवाब दिया, मैंने दामन बचा बचा कर कदम रखे, कांटों से बचने के लिए अपनी तमाम तर जद्दोजहद कर डाली। उबई बिन काब ने कहा, बस यही तकवा है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने के लिए अपनी पूरी कुव्वत को सर्फ कर दे। तकवा का मतलब यह है कि इंसान इस शऊर के साथ दुनिया में जिंदगी बसर करे कि मेरा एक परवरदिगार है और मुझे एक दिन उसे जवाब देना है। ये जो एहसास है

0: कि मुझे एक दिन अपने रब के सामने जवाबदेह होना है, ये इंसान के अंदर एक खौफ और अंदेशा पैदा करता है। इसी खौफ और अंदेशे का नतीजा तकवा है। जब हम इस खौफ और शऊर के साथ जिंदगी बसर करते हैं तो हम बेलगाम, बेखौफ और आजाद नहीं होते, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। तकवा को इस तरह भी समझा जा सकता है कि इंसान इस दुनिया में लोगों के साथ मामलात करता है, मामलात में लोगों के हुकूक भी तल्फ हो सकते हैं, किसी के साथ ज्यादती हो सकती है, इंसान कारोबार करता है, कारोबार में मिलावट से बचना है, धोखा दही से बचना है। गर्ज जहां कोई दुनियावी कानून नहीं पहुंच रहा, जहां किसी की नजर नहीं पहुंच रही, वहां भी ये महसूस करना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है पर खुदा तो देख रहा है, जिसे मुझे जवाब देना है, इसी का नाम तकवा है। इसीलिए नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा के मुतालिक अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अत्तकवा हाहुना, तकवा यहां है, यानी असल तकवा दिल से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में अपनी नफ्स की इसलाह की दुआएं भी होती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा से आरास्ता फरमा और इसका तज़किया फरमा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुत्तकी वो है जो बाज़ जायज चीजों को नाजायज होने के खौफ से छोड़ दे, यानी नाजायज से इतना डरे कि बाज़ जायज चीजों को तर्क कर दे।
1: अभी आप सुन रहे थे अकवाले ज़रीन का प्रोग्राम शमी फरोजा। आज का मौजू था ज़ुहद व तक़वा इख्तियार करना। पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद नवेद। मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेशो खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। आज के प्रोग्राम में पहले समाप्त फरमाइए कमल हंसपाल की आवाज में दाऊद दहलवी और डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम।

0: और जगदीश सहगल से आपने सुना शाद फिदाई का कलाम। इसके साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब पेश है पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। और बीते दिनों ताल कटोरा स्टेडियम पूर्वोत्तर भारत के युवाओं की प्रतिभा से सराबोर हुआ। पूर्वोत्तर भारत के युवाओं ने यहां पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति और अपनी रचनात्मकता का बेहद खूबसूरत प्रदर्शन किया। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं के साथ संवाद किया। तो आइए एक खास रिपोर्ट सुनते हैं, जिसमें हम इस खास आयोजन के बारे में विस्तार से जानेंगे।
3: संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने महोत्सव के 9वें संस्करण में भाग लिया और विद्यार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के युवा विकसित भारत 2047 की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
4: The capability to take India forward, from coders to creators to entrepreneurs to musicians like Lily, who enthrall us. The capability to athletes, Lolina Borugen, Mirabai Chanu. What does not my Northeast have? And this is the power we need to unleash. And this is the power that Prime Minister Narendra Modi aims to unleash. By calling the Northeast our Ashtalakshmi, our 8 forms of Lakshmi, my young friend.
3: उन्होंने खेल, संगीत, शिक्षा, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में क्षेत्र के युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही अवसर और मंच उपलब्ध कराने की। कार्यक्रम में माई होम इंडिया की भूमिका का भी उल्लेख किया गया। सिंधिया ने कहा कि 21 साल पहले पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों को दूसरे शहरों में अपनेपन का एहसास कराने के उद्देश्य से शुरू हुई यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को जोड़ने वाला मंच बन चुकी है। महोत्सव में विद्यार्थियों ने अपनी कला और संस्कृति की खूबसूरत झलक पेश की। नृत्य प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों और विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी दी गई। केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट ने पूर्वोत्तर की संस्कृति के साथ वहां के युवाओं की प्रतिभा और उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर सामने लाने का काम किया। यह महोत्सव विविधता में एकता और युवा शक्ति के संदेश के साथ सम्पन्न हुआ। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार।
2: श्रोताओं, आर्थिक सहायता किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। मेघालय सरकार ने भी मेघालय के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान करके उनके आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए रास्ता तैयार किया और करीब 87,000 ऐसे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गयी। तो किस तरह से मेघालय सरकार की इस पहल से विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिल रही है और वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं।
5: मेघालय सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 87,691 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी की है। इसके लिए करीब

0: 91 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि इस बार छात्रवृत्ति का भुगतान तय समय से पहले पूरा हुआ। सरकार के अनुसार 27 अगस्त को राशि जारी किए जाने के बाद विद्यार्थियों के खातों में पैसा 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर पहुंच गया। पहले इसके लिए 5 से 6 दिनों का समय बताया गया था। इस तेज और सीधे भुगतान के पीछे स्नेह स्पर्श व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके जरिए राशि को सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया गया। इस वर्ष छात्रवृत्ति के लिए कुल 96,812 आवेदन सत्यापित किए गए थे। इनमें से 87,691 विद्यार्थियों को भुगतान मिल चुका है। वहीं करीब 9,121,000 विद्यार्थियों का भुगतान बैंक खाते और आधार लिंकिंग से जुड़ी समस्याओं के कारण लंबित है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इन विद्यार्थियों के लिए निर्धारित राशि रद्द नहीं होगी। बैंक विवरण ठीक होने के बाद भुगतान किया जाएगा। छात्रवृत्ति मिलने से विद्यार्थियों को फीस, पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने में आर्थिक मदद मिलेगी। ये पहल राज्य में आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मेघालय की ये पहल बताती है कि समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता विद्यार्थियों की शिक्षा के सफर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार।
1: मिजोरम न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत बल्कि हमारे भारत का एक खूबसूरत राज्य है और राज्य की इसी खूबसूरती को देश दुनिया में सबके सामने लाने के लिए लगातार मिजोरम सरकार ने प्रयास भी किए हैं। विंटर फेस्टिवल एक ऐसा ही अवसर होता है जब पर्यटक मिजोरम आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को निहारते हैं, यहाँ की कला संस्कृति से अवगत होते हैं और खासतौर पर जो वहाँ का आतिथ्य है उसका भी लाभ लेते हैं। तो मिजोरम सरकार ने अब विंटर फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी हैं और किस तरह से पर्यटन आकर यहाँ के आकर्षण का लाभ ले सकते हैं, इस मामले में इंतजाम किए जा रहे हैं। तो विंटर फेस्टिवल की तैयारियों पर मिजोरम सरकार की जो परियोजनाएं हैं, इस संबंध में आइए ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं।
2: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा की अध्यक्षता में विंटर फेस्टिवल 2026 की आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों और विभिन्न गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को भारत की विंटर कैपिटल के रूप में पहचान दिलाने के लिए विंटर फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय कारोबार और उद्यमिता को भी सामने लाया जाएगा। महोत्सव में कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। मत्स्य विभाग की ओर से एंगलिंग यानी मछली पकड़ने की प्रतियोगिता, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से बांस से जुड़े नए उत्पादों की प्रदर्शनी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर सड़कों की सजावट, क्रिसमस परेड और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मिजोरम में पर्यटन को भी इस पहल से नई गति मिलने की उम्मीद है। राज्य में इस साल जनवरी से जून के बीच 5,37,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार बैराबी रांग रेल लाइन शुरू होने के बाद राज्य में पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। विंटर फेस्टिवल के जरिए मिजोरम अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक खूबसूरती को देश दुनिया के सामने रखने के साथ स्थानीय उत्पादों और उद्यमियों के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार।
1: श्रोताओं, आज हम त्रिपुरा का जो आधुनिक स्वरूप देख रहे हैं उसमें कई ऐसे व्यक्तित्वों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिनसे आज आधुनिक त्रिपुरा की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। ऐसे ही एक शख्सियत थी महाराजा वीर विक्रम। उन्होंने त्रिपुरा का एक अच्छा आधुनिक स्वरूप हम सभी के सामने प्रस्तुत किया और त्रिपुरा के बुनियादी ढांचे, यहाँ के विकास को लेकर एक नई तस्वीर हम सभी के सामने प्रस्तुत की। तो आइए महाराजा वीर विक्रम की त्रिपुरा के विकास में योगदान की इस कहानी को सुनते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
3: के इतिहास में कुछ ऐसे शासक रहे हैं जिनकी दूरदर्शी सोच का असर आज भी राज्य के विकास में दिखाई देता है। इनमें महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता माना जाता है। 19 अगस्त 1908 को जन्मे महाराजा वीर विक्रम ने कम उम्र में त्रिपुरा की राजगद्दी संभाली। उनका शासनकाल भले ही लंबा नहीं रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसे

0: उठाए जिन्होंने त्रिपुरा के आधुनिक विकास की नींव रखी। त्रिपुरा के शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत किशोर देववर्मन ने बताया कि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य और महारानी कंचन प्रभा देवी के प्रयासों से ही त्रिपुरा को भारतीय संघ का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इसी वजह से आज हम गर्व से खुद को भारत का नागरिक कहते हैं।
1: वो सिर्फ महाराजा नहीं थे, सिर्फ जनजाति के लिए या बंगालीज के लिए या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए वो एक देश प्रेमी थे। आज हम लोग हिंदुस्तान में हैं क्योंकि कंचन प्रभा देवी जानते थे कि महाराजा का सपना है कि हम एक हिंदुस्तान में रहे ना कि पाकिस्तान में, और उस सपने को पूरा महाराजा तो जिंदा नहीं रहे थे लेकिन मेरी ग्रैंड मदर राजमाता कंचन प्रभा देवी, जब महाराजा का देहांत हुआ कंचन प्रभा देवी वॉज ओनली 35 ईयर्स ओल्ड। उस समय उनके ऊपर कितना दबाव था, कितना प्रेशर था, तभी भी 3 बच्चे उनके पास, मेरा पिताजी सिर्फ 14 साल, तभी भी उनका एक डिसीजन आज हमें हिंदुस्तानी बोलने का अवसर देता है।
0: महाराजा वीर विक्रम ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में महाराजा वीर विक्रम कॉलेज की स्थापना हुई जो आज भी त्रिपुरा के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल है। उन्होंने राज्य में स्कूलों के विस्तार और आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनका योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, शहरों के सुनियोजित विकास पर जोर दिया, सड़कों और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाया और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत किया। उनके प्रयासों से अगर तला को एक व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ। अगरतला एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराना भी उनके प्रमुख योगदानों में शामिल था। आज महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। शाही परिवार की एक अन्य सदस्य राजकुमारी प्रज्ञा देव बर्मन ने भी महाराजा वीर विक्रम के योगदान को याद करते हुए उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता बताया।
2: उन्होंने जो भी कुछ किया अभी हम लोग पूरा अपना त्रिपुरा में हम देख सकते हैं, जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, MBB कॉलेज हो या आपके धर्मनगर में कॉलेज है, उसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाना, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना त्रिपुरा में, वोटिंग राइट्स, उसको छोड़ के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाना, अगरतला टाउन प्लानिंग, और सबसे जो बड़ा उनका जो विजन था वो था आपका लैंड रिजर्वेशन, जो आज का जो TTADC है इट इज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ जो महाराजा ने इन्विजन किया था ताकि हमारे लोगों को बचाकर अपना लैंड राइट्स दे सके। तो ये सबका जो भी महाराज ने हमारे सबके लिए किया, धर्म जाति ये सब नहीं देखा महाराजा ने कभी भी, और आजकल के जमाने में लोग वोट्स लेने के लिए, पावर में आने के लिए ये सब छोटे छोटे चीजों को लेकर हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों के बीच में बहुत कुछ पैदा किए हैं। महाराजा के अंदर में जितना प्यार था अपने लोगों के लिए, ये हमको दोबारा कल्टीवेट करना चाहिए।
0: भारत की आजादी से पहले ही महाराजा वीर विक्रम ने एक आधुनिक और प्रगतिशील त्रिपुरा का सपना देखा था। शिक्षा, बुनियादी ढांचे, शहरों के विकास और प्रशासन के क्षेत्र में उनके फैसले अपने समय से काफी आगे थे। त्रिपुरा के विकास में उनके योगदान की छाप आज भी दिखाई देती है। उनकी दूरदर्शी सोच और विकास की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष

श्रोताओं, सिक्किम की खेल प्रतिभाओं के बारे में हम तो पहले ही आपके साथ बातें करते रहे हैं इस कार्यक्रम में, और आज फिर आपके साथ हाल ही में आयोजित हुई एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ के बारे में बात करते हैं।

0: जहां सिक्किम के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है, तो स्पीति अल्ट्रा मैराथन में किस तरह से सिक्किम की खेल प्रतिभाओं ने अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत किया, आइए इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं।
1: भारतीय सेना और फिटिजन इंडिया LLP के सहयोग से आयोजित इस ऊंचाई वाले मैराथन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के काजा और आसपास के इलाकों में किया गया। इसका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में फिटनेस, साहस और सहन शक्ति को बढ़ावा देना था। इस प्रतियोगिता में 77 किलोमीटर की कुंजुमला चैलेंज सबसे कठिन स्पर्धाओं में शामिल रही, जिसमें प्रतिभागियों को ऊंचाई वाले चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ा। सिक्किम की ओर से टीका एम मंगल ने 77 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन सफलतापूर्वक पूरी की और 21 किलोमीटर की आयु वर्ग स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। मीना कुमारी सुब्बा ने 77 किलोमीटर की ओपन श्रेणी में दूसरा रनर अप स्थान प्राप्त किया। वहीं सुष्मिता राय ने 77 किलोमीटर में ही अपने आयु वर्ग में पहला और 42 किलोमीटर स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। सन माया सुब्बा ने 77 और 42 किलोमीटर दोनों स्पर्धाओं में अपने आयु वर्ग में पांचवा स्थान प्राप्त किया। बिनिता कामी ने 42 किलोमीटर में अपने आयु वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। वहीं शोभा राय ने 21 किलोमीटर की सूर्या स्पीति चैलेंज में अपने आयु वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। वर्ग में गंगा हॉन्ग सुब्बा ने 77 किलोमीटर की ओपन श्रेणी में दूसरा रनर अप स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने 42 किलोमीटर की स्पर्धा में अपने आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। सिक्किम के इन खिलाड़ियों की उपलब्धि ने राज्य का गौरव बढ़ाया है और कठिन परिस्थितियों में उनकी मेहनत और जज्बे को भी सामने रखा है। मोइनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी।
0: अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताक्सिंग और आसपास के गांवों के लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSC में तैनात भारतीय सेना के जवानों तक भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने का कार्य शुरू किया। वोटर योगी सड़क संपर्क उपलब्ध न होने तथा कठिन और दुर्गम पहाड़ी इलाकों की चुनौतियों का सामना करते हुए ग्रामीण अपने सिर पर सामान ढोकर आवश्यक वस्तुएं पहुंचा रहे हैं। दुर्गम भूभाग और सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण आवश्यक सामान पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है, फिर भी ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात सैनिकों के समर्थन में अपने स्वैच्छिक प्रयास लगातार जारी रखे हुए हैं। ये पहल स्थानीय लोगों के देश और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सशस्त्र बलों के प्रति मजबूत राष्ट्रभक्ति और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वे भारतीय सेना को अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। उनका मानना है कि कठिन सीमावर्ती क्षेत्र में सेवा दे रहे सेना के जवानों के प्रति सहयोग करना उनका दायित्व होने के साथ ही उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का भी एक माध्यम है। ताक्सिंग के इन स्वैच्छिक प्रयासों से स्थानीय आबादी और भारतीय सेना के बीच मजबूत संबंध उजागर होते हैं। ये संबंध विशेष रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण इस सीमावर्ती क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है। ऊंचे और कठिन पहाड़ी रास्तों से आवश्यक सामग्री पहुंचाने में आने वाली परेशानियों के बावजूद ग्रामीणों ने सैनिकों के साथ मजबूती से खड़े रहने और अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्र की सेवा में योगदान देने की तत्परता दिखाई है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
0: श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में हमने इस कार्यक्रम में बार बार चर्चा की भी है। पूर्वोत्तर राज्यों के एक रोचक सफर पर आपको लिए चलते हैं। इस रोमांचक सफर में आपको निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत की सैर का एक अनुभव मिलेगा, तो आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, कौन से वो प्रमुख स्थल हैं जो हमेशा हमें खींचते हैं अपनी ओर, तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
3: आज हम भारत के उस हिस्से की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे प्रकृति ने भरपूर सौंदर्य प्रदान किया है। उत्तर पूर्वी भारत, ये क्षेत्र अपने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, रहस्यमय गुफाओं, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है।

यहाँ का तवांग मठ न केवल भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है बल्कि पूरी दुनिया में भी अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मठ बौद्ध संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आकर मानव मन को एक अलौकिक शांति मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक और खास जगह है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो जैव विविधता के लिए मशहूर है। ये देश के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां बाघ, तेंदुआ और हिमालयी भालू एक ही जंगल में देखे जा सकते हैं। जंगल प्रेमियों और वन्य जीव फोटोग्राफरों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब बढ़ते हैं असम की ओर, जिसे इसकी चाय बागानों की सुगंध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है।

असम का कामाख्या मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर अम्बुबाचे मेले के दौरान यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ सफारी के दौरान हाथी, जंगली भैंसे, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अपनी अनूठी संस्कृति और सत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैलियाँ और सरल जीवन शैली पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अब हम मणिपुर की ओर रुख करते हैं, जिसे आभूषणों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की लोकटक झील उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसकी खासियत इसके तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। इस झील के बीचों बीच स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ दुर्लभ संगाई हिरण पाए जाते हैं। इम्फाल का इमा किथेल या महिला बाजार भी बेहद अनोखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। करीब 500 साल पुराना ये बाजार न केवल खरीदारी के लिए बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता के मिसाल के तौर पर भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं बादलों के घर मेघालय की ओर, जहाँ की हरियाली, झरने और गुफाएं प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। यहाँ का नोहकलिकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई करीब 1115 फीट है। मानसून के दौरान जब ये झरना पूरे वेग से बहता है तो इसका नज़ारा अविस्मरणीय होता है। चेरापूंजी और मासिनराम क्षेत्र में स्थित लिविंग रोड ब्रिज भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। ये पुल स्थानीय खासी और जयंतिया जनजातियों ने पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़कर तैयार किए हैं और ये सैकड़ों वर्षों तक मजबूती से टिके रहते हैं। प्रकृति और मानवीय कौशल का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब हम मिजोरम पहुंचते हैं, जिसे पहाड़ों के लोगों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का फवंगपुरी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। यहाँ के पहाड़ों की चोटियों से दिखने वाला दृश्य मन मोह लेता है। अब चलते हैं नागालैंड, जो अपनी अनूठी संस्कृति और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव पूरे उत्तर पूर्व की संस्कृति का उत्सव माना जाता है। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला ये महोत्सव नागा जनजातियों की समृद्ध परंपराओं, नृत्य, संगीत, कला और खानपान को प्रदर्शित करता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा भी

ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का कोहिमा युद्ध स्मारक और संग्रहालय स्थित है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। अब हम चलते हैं त्रिपुरा की ओर, जो भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत बेहद

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित उज्जैनता पैलेस राजसी वैभव का प्रतीक है। ये महल अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां त्रिपुरा की कला, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित किया गया है। इसे राज्य में स्थित नीर महल रुद्र सागर झील के मध्य स्थित एक भव्य महल है, जिसे त्रिपुरा के महाराजा बीरेन्द्र किशोर माणिक्य ने बनवाया था। ये महल झील के शांत पानी में तैरता सा प्रतीत होता है और इसकी रोशनी रात में झील पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य बनाती है। श्रोताओं, उत्तर पूर्वी भारत केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर पर्वत और हर त्योहार एक कहानी कहता है, चाहे वो अरुणाचल की आध्यात्मिकता हो, असम के चाय बागानों की महक हो, मणिपुर की झीलों का सौंदर्य हो, मेघालय की गुफाओं का रहस्य हो, मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियाँ हो, नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता हो या त्रिपुरा के महलों का शाही वैभव, ये क्षेत्र प्रकृति और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। अगर आपने अभी तक उत्तर पूर्व की यात्रा नहीं की है तो एक बार जरूर जाइए और इस अद्भुत भूमि की सुंदरता को अपनी आँखों से देखिए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं कनकलता।

श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। उत्तर डायरी।
2: अब हम सुन रहे थे पूर्वोत्तर डायरी। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे आशा

घोंसले के गए हुए नव में आज है उनका यौम पैदाइश। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की जानिब से हम पेश कर रहे हैं एक खराज अकीदत।

आशा भोसले की आवाज में ये नगमा अभी आपने सुना, फिल्म थी लाजवंत। अब सुनिए कश्मीर की कली फिल्म का नगमा।

ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म में आपने आशा भोसले को सुना। आज की मेरी पसंद प्रोग्राम में आशा भोसले के यौम पैदाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं के गाए हुए कुछ सोलो नगमे। अगली पेशकश फागुन फिल्म से है।

उमराव जान फिल्म की इस गजल के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के प्रोग्राम में आपने आशु भोसले के गाए हुए नगमे सुने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए जनाब वी एम आनंद का तहरीर करदा ड्रामा पैसा ही पैसा।

0: अरे भाई आप एक स्टॉक एक्सचेंज से बोल रहे हैं? हाँ, अरे भाई मल्होत्रा, मल्होत्रा, मैं मनचंदा बोल रहा हूँ। हाँ। क्या निजार भाई आए थे? शेयर मार्केट का क्या हाल बताया उन्होंने? क्या ब्रिटेन एंड ब्रिटेन कंपनी के शेयर तेजी पर हैं? अरे वाह वाह वाह वाह वाह। अरे मैंने तो पहले ही कहा था भाई कि ये कंपनी सबके वादे के न्यारे कर देगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने उसके शेयर पहले ही खरीद लिए थे। यस यस यस। हाँ, अब और खरीद लो मेरे लिए 1,000 शेयर। हाँ, 1,000। ये कंपनी अभी और ऊपर जाएगी। ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। और हाँ सुनो सुनो सुनो सुनो, वो टेक्सटाइल का क्या हाल है? क्या यानी कि गोइंग अप एंड अप? वाह वाह वाह वाह, 140 और 150 के आसपास। वेरी गुड वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। ऐसा करो मल्होत्रा कि बेच दो हमारे 500 शेयर, 500 शेयर बेच दो। व्हाट, डमडम केमिकल्स के 50 रुपए? 50 रुपए? अच्छा, ठीक है ठीक है, मुबारक हो मुबारक। यू करो बेच दो मेरे 600 शेयर। हाँ हाँ भाई, 600 शेयर बेच दो, कहा जो है मैंने। मल्होत्रा, लगता है कि सारी मार्केट मेरे ही फेवर में जा रही है। यस, यानी कि ऊपर ही ऊपर। और बताओ वो के वो सीसीजी, वो भी ऊपर जा रही है ना? गुड
1: साहब, बीबी जी नीचे आ रही हैं।
0: आए, अरे और राधे लाल, मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ, बीच में टांग मत अड़ाओ। हाँ हेलो हेलो हेलो
1: साहब, आप देखिए तो सही, बीबी जी नीचे आ रही हैं।
0: ओ नौलायक के बच्चे, बीबी जी नहीं, सीसीजी।
1: सीसीजी?
0: हाँ, सीसीजी। और सीसीजी नीचे नहीं आ रही, ऊपर ही ऊपर जा रही है
1: जी। ऊपर जा रही है
0: सीसीजी, ऊपर जा रही है।
1: नहीं सर, आप देखिए तो
0: सही। ओ नालायक, जब सारी मार्केट आग की लपटों की तरह ऊपर जा रही है तो सीसीजी कैसे नीचे जा सकती है? सीसीजी अब और ऊपर ही ऊपर जाएगी, ऊपर ही ऊपर।
1: सीसीजी नहीं सरकार, बीबी जी।
0: अरे बीबी जी नहीं, सीसीजी,
1: सरकार,
0: सीसीजी।
2: आग लगे तुम्हारे शेयर मार्केट को, हर वक्त कोई शेयर नीचे कोई शेयर ऊपर।
0: वीना की मम्मी तुम भी।
2: अरे मैंने कहा तुम्हें।

0: होश भी है? तुम्हें पता है वीना
1: वो देखो ऊपर जा रही है।
2: वीना नहीं, टीना कहो, टीना।
0: अरे मैं कहती हूँ वीना ऊपर जा रही है, वीना।
2: वीना नहीं, टीना, टीना। अरे वीना नाम की तो कोई कंपनी ही ऊपर नहीं जा सकती।
0: ओफ ओह, बेड़ा गर्क हो इन शेरों का, जिसने तुम्हारा दिमाग ये खराब करके रख दिया। मैं कह रही हूँ तुम्हारी बेटी वीना।
2: मेरी बेटी वीना? क्या हुआ मेरी बेटी वीना को? क्या?
0: अरे तुम्हें फुर्सत मिले इन शेरों से तो तुम्हें पता चले।
2: लेकिन मैं पूछता
0: हूँ, जवान बेटी है, सवेरे घर से गई थी, अब शाम को वापस घर आई है।
2: क्यों
0: से पूछो तो सही कि वो कहाँ रही दिन भर।
2: पूछ लूंगा, पहले शेर बाजारी तो कर ले दो। पूछ लेता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ कि मैं ही पूछ के क्या करूंगा, वो तो तुम क्यों नहीं पूछ लेती?
0: कभी ये भी सोचा है? जवान जहान बेटी घर में बैठी है, मैं तो तुम्हें कह कह कर थक गई हूँ, उसके लिए कोई लड़का तलाश करो, उसकी शादी कर दो। पर तुम्हें मुई शेयर मार्केट ने इतना पागल कर डाला है कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं है।
2: वीना की मम्मी, तुम वीना के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हो? तुम्हें मालूम है कि आजकल के लड़के ब्लू चिप कंपनी के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनके रेट इतने ऊंचे जा चुके हैं कि नीचे आने का नाम ही नहीं लेते।
0: फिर वही शेयर, फिर वही डिबेंचर।
2: लेकिन वीना की मम्मी, तुम परेशान मत हो, जो मार्केट अप जाती है वो डाउन भी आती है। वो दिन दूर नहीं है वीना की मम्मी जब इन लड़कों की मार्केट भी रातों रात लुढ़क कर नीचे आ जाएगी। फिर मैं वीना के लिए मन चाहा लड़का, मेरा मतलब है, तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा।
0: हे भगवान, ना जाने वो दिन कब आएगा, जहां बात चलती है वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि तुम चाहते हो लड़का अमीर घराने का हो, पैसे वाला हो, चाहे वो कैसा भी हो।
2: वीना की मम्मी, मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ हमारी बेटी जाए वहाँ पैसा ही पैसा हो, पैसा ही पैसा।
0: नहीं तो, मैं ये कई बार सुन चुकी हूँ, तुम्हें तो हर वक्त एक ही रचाती है, पैसा पैसा पैसा, और इसी इंतजार में वक्त निकलता जा रहा है।
2: अरे रहने दो, कोई बात नहीं। हेलो, हेलो, यस, जी हाँ, यहाँ मैं मनचंदा बोल रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, क्या हाल है गिरधारी लाल जी, बड़े दिनों बाद याद किया आपने। हाँ, आजकल तो मार्केट बहुत गर्म है, गर्म, मजा आ रहा है, मजा। आपने कौन कौन से शेयर खरीद रखे हैं? अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं कुछ

0: बेचना चाहता हूं। ठीक है ठीक है, और बताइए। हाँ कहिए कहिए कहिए, याद कैसे याद किया? हाँ हाँ हाँ हाँ, मैंने आपसे वीना के लिए लड़के की तलाश करने के लिए कहा था, मुझे याद है याद है। जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ, एक लड़का आपने देखा है? वेरी गुड, वाह वाह वाह, व्हाट, लड़के का कारों का बहुत बड़ा बिजनेस है? हाँ फिर तो वो लोग अमीर भी बहुत होंगे। ये तो सोने पर सुहागा है गिरधारी लाल जी, पैसा पैसा पैसा। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बस फिर हमारी तरफ से तो आप हाँ समझो गिरधारी लाल जी, ये लड़का मैं मार्केट से किसी भी रेट पर उठा लूंगा, उसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। ना ना ना ना ना, जी जी जी हाँ हाँ, वो लड़का मेरे पास आ रहा है अभी थोड़ी देर में। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा वो कुछ शेयर खरीदना चाहता है, आने दो आने दो। हा, हा, हा, हा, इसी बहाने वो हमसे मिल भी लेगा और वीना से भी मिल लेगा। आपने उसे हिंट दे दिया, वेरी गुड गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ उसके जाने के बाद मैं आपको टेलीफोन पर सब बातें बता दूंगा। यस ओके। देखा वीना की मम्मी, तुम अभी कह रही थी कि वीना के लिए लड़का ढूंढो लड़का ढूंढो लड़का ढूंढो, लड़का हाजिर है। मैं तो आज ही यहां कर दूंगा।
1: अब इतनी जल्दी भी मत करो, पहले लड़का देख लो, उसका घर बार देख लो, पता कराओ उसके माँ बाप कौन है, लोग कैसे
0: बस, हैं। बस बस बस बस बस, मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ समझ लिया है वीना की मम्मी। जब लड़की का कारों का बिजनेस है, इतना पैसा है, तो हमें पता क्या करना है? तुम जाओ ऊपर और जाकर बंदोबस्त करो, बंदोबस्त मेरा मतलब है वो लड़का आने वाला है, इस मौके का फायदा उठाओ। यस यस, अरे जाओ ऊपर।
1: अव्वल तो तुम्हें लड़का ढूंढने की फिक्र ही नहीं थी, और अब अमीर लड़का देखा तो आसमान सतह उठा लिया है। हाँ, जा रही हूँ।
0: जाओ जाओ जाओ जाओ, नाराज ना हुआ करो ऐसे मौके पर।
2: हेलो स्पीड मोटर सर्विस, देखिए मैं मनचंदा साहब के घर से बोल रही हूँ, उनकी लड़की वीना, जी हाँ A12 सिविल लाइन से, आपके आदमी ने मुझे कार ड्राइविंग सिखानी शुरू करनी थी, अभी तक कोई नहीं आया। हाँ मैं कल भी इंतजार करती रही, कब आएगा आपका आदमी और कब शुरू होगी मेरी कार ड्राइविंग जी। हेलो हेलो हेलो, ओहो फिर कट गया फोन।
3: छोटी बीबी जी, बड़े साहब ने आपको नीचे बुलाया है।
2: मुझे बुलाया है
3: जी?
2: अच्छा मैं आ रही हूँ।
0: हाँ बेटा, हाँ हाँ
2: आपने मुझे बुलाया डैडी।
0: हाँ हाँ बेटा, हाँ मैंने बुलाया। बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो
2: डैडी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं।
0: हाँ बेटा, बात ही ऐसी है, तुम्हारे लिए बेटा एक लड़का ढूंढा है हमने।
2: जी मेरे लिए लड़का ढूंढा है?
0: हाँ बेटा, उस लड़की का कारों का बिजनेस है, बहुत अमीर है, और वो अभी हमारे घर आने वाला बेटा।
2: लेकिन डैडी मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी।
0: क्या तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी?
2: नहीं, मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिसे मैं मोहब्बत करती हूँ।
0: खबरदार, जो फिर तुमने मोहब्बत का नाम लिया तो।
2: क्यों डैडी?
0: क्योंकि हमारे खानदान में मोहब्बत करने का रिवाज नहीं, ना मैंने मोहब्बत की, ना तुम्हारी मम्मी ने मोहब्बत की, और ना हमारे बुजुर्गों ने मोहब्बत की। ये मोहब्बत का रिवाज हमारे खानदान में ना कभी हुआ है और ना होगा।
2: लेकिन डैडी, ना मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, या फिर कुछ खाकर मर जाऊंगी।
0: अगर तुम्हें मरना ही है तो फिर खाने पीने की क्या जरूरत है?
2: हाँ?
0: खाने में क्यों वक्त बर्बाद करती हो, मर जाओ भी कोई।
2: हाँ, हाँ, डैडी।
0: इसीलिए तुम घर से सवेरे सवेरे चली जाती थी और शाम को वापस आती थी। आज मुझे पता चला है कि तुम मोहब्बत में बिजी थी। कान खोलकर सुन लो, तुम मोहब्बत भी उसी लड़के से करोगी और शादी भी उसी लड़के से करोगी जो आ रहा है।
2: लेकिन डैडी कुछ तो सोचो, जिस लड़के से मैं पिछले 2 साल से मोहब्बत कर रही हूँ उसे क्या जवाब दूंगी?
0: उसे

0: एक महीने का नोटिस देकर मोहब्बत टर्मिनेट कर दो, वो भी किसी और लड़की से मोहब्बत करनी शुरू कर देना।
1: दादी ये आप क्या कह रहे हैं, आप कुछ तो सोचिए, उस बेचारे के दिल पर क्या
0: बीती। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, एक कंपनी के शेयर बेचो और दूसरी कंपनी के खरीद लो।
1: डैडी
0: अरे बुलाकर आ गया राधेलाल। अरे वो राधेलाल
2: सरकार,
0: अरे मेहमान आए हैं, दरवाजा खोलो जाकर और उन्हें अंदर ले आओ।
2: बहुत अच्छे सरकार, अभी आया।
0: हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ।
3: वीना अब ये आंसू बहाना बंद करो बेटा, अरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, वरना ये लड़का क्या सोचेगा, वो देखते ही अंदाजा लगा लेगा कि ये कंपनी घाटे में जा रही है। अरे मुस्कुराओ बेटा मुस्कुराओ,
0: शाबाश मेरी लाली मुस्कुरा।
3: हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे।
4: गुड इवनिंग सर।
3: गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बैठो बेटा बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो। ये है मेरी बीवी और ये है मेरी दुख्तर नेक अख्तर वीना
4: जी। आदाबर से
5: ठीक रहो बेटा
4: जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं।
3: पहचाना क्यों नहीं बेटा, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, ये तो सुना होगा तुमने।
4: जी मेरा मतलब है कि टेलीफोन पर बात
3: हुई थी। हाँ, टेलीफोन पर बात हुई थी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बैठ जाओ बेटो। ऐसे बैठो बैठो बैठो
5: बेटा, चाय पियोगे या ठंडा?
4: चाय या शायद आपने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। मैं जी वो
3: बेटा मैंने तुम्हें पहचान लिया है, खूब पहचान लिया है, तुम्हारा कारों का।
4: जी हाँ जी हाँ, मैं आपकी दुख्तर वीना को।
3: हाँ बेटा हाँ मालूम है, दरअसल तुम वीना से ही मिलने आए हो ना।
5: ये लो बेटा पहले ठंडा पियो, फिर चाय बाद में पी लेना।
4: ठंडा लेकिन लेकिन जी सर आप
5: जी,
4: मैंने कहा लड़का बहुत शर्माता है।
3: शरीफ खानदान का लड़का शर्मेगा क्यों नहीं है।
5: पियो बेटा इसे अपना ही घर समझो बेटा।
0: लो जाओ बेटा जाओ, तुम और वीना ऊपर चले जाओ।
5: ऊपर ऊपर किस लिए?
3: अरे बेटा तुम आपस में पहली बार मिल रहे हो ना,
0: जाओ आपस में
3: मेरा मतलब है आपस में प्यार की बातें करो।
4: लेकिन मैं तो वीना जी को सिखाने आया हूँ।
5: What? आप मुझे सिखाएंगे प्यार कैसे किया जाता है? मुझे 2 साल का तजुर्बा है प्यार करने का, मुझे आप क्या सिखाएंगे?
3: नहीं बेटी बेटी बेटी, वो गुस्सा नहीं किया करते बेटा, बुजुर्गों ने कहा है ना कि वन लर्न थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि इंसान सारी उम्र सीखता है।
4: मिस वीना आई एम सॉरी, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मेरा मतलब है कि मैं
5: बार बार अपनी घड़ी क्यों देख रहे हैं?
4: जी बात यह है कि मैंने आपकी तरह एक और लड़की को भी टाइम दे रखा है।
3: यानी कि आपने किसी और लड़की को भी टाइम दे रखा है?
1: दादी
3: बेटा
1: आप मुझे इसके पल्ले बांध रहे हैं, जो और लड़कियों को भी टाइम देता है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी
4: शादी? किसकी शादी?
3: किसकी शादी?
4: किससे शादी?
3: किससे शादी?
5: अब हम लोगों से और ना छुपा।
3: हाँ।
5: हम सब जानते हैं बेटा।
3: और मजाक ना करो मेरे लाल, मान भी जाओ, मेरा मतलब है कि शादी।
4: लेकिन वो टेलीफोन पर।
3: हाँ, हाँ, टेलीफोन पर सब बात हो गई है बेटा, इसीलिए तो
4: लेकिन सर मैं भी कार।
3: हाँ, हाँ, हमें सब मालूम है कि तुम्हारा काम कारों का है, इसीलिए तो हमने बिना सोचे समझे पहले ही हाँ कर दी थी।
5: हम तो ऐसे लड़के की तलाश में थे बेटा, आप शादी के लिए हाँ कर दो ना बेटा।
4: शादी के लिए हाँ कर दो? किससे शादी जी?
5: अरे बेटा हमारी बेटी वीना से शादी
4: है। मेरी शादी वीना जी से? आप क्या कह रहे हैं, मेरा तो सर चकरा रहा है, मेरा काम कार होता है और शादी आपकी लड़की से?
3: क्यों बेटा क्यों नहीं हो सकती, हमारी बेटी की शादी तुमसे क्यों नहीं हो सकती? क्या कमी है हमारी बेटी में? तुम्हारा काम कारों का है तो हम भी कम नहीं है, हमें भी किसी चीज की कमी नहीं है।
4: लेकिन मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को किसी चीज की कमी है, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि
3: बस अब हम और कुछ नहीं सुनेंगे। इतनी मुश्किल से तो हमने अपनी बेटी को तुम्हारे साथ शादी के लिए मनाया है, और वो भी उस वक्त जब हम लोगों ने तुम्हें देखा भी

0: जी।
1: अब बेटा और अब तो तुमने हमें देखा है, वीना को भी देखा है।
2: आप मुझे सोचने का मौका तो दीजिए।
0: ठीक है ठीक है,
2: फिलहाल आप वीना जी को मेरे साथ भेज दीजिए, कार बाहर खड़ी है।
0: ठीक है, आप जाओ, दोनों कार में घूम कर आओ, आपस में बातें करो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। आखिर तुम दोनों ने सारी उम्र इकट्ठे गुजारनी है। वीना
1: जी, दादी
0: बेटी तुम जाओ ना इनके साथ।
1: नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अगर इन्हें अपने पैसे का इतना घमंड है कि शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे, तो मैं भी शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी।
0: ना ना ना ना ना ना बेटी, ना ना ना, जिद नहीं करते हैं। जाओ जाओ जाओ जाओ, उठो उठो उठो उठो बेटे। हाँ ऐसे, अब देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों हंसते और मुस्कुराते हुए कैसे वापस आते हो, और फिर हम समझेंगे कि तुम दोनों ने हमारी तरह से हाँ कर दी है। ओके बाय बाय। ये लड़का ना जाने क्यों घबराया हुआ सा लग रहा है। मेरा मतलब है कि हाँ क्यों नहीं कर रहा है।
1: अजी मैं कहती हूँ, जब तुम मुझे देखने पहली बार आए थे ना, तो तुमने कौन सी एकदम हाँ कर दी थी।
0: वो
1: कितने दिन तक तुम नखरे दिखाते रहे थे।
0: वो
1: अरे ये तो लड़कों की आदत होती है।
0: सच? अच्छा अब समझा, तो ये लड़का खामोखा हिचकिचा रहा है।
1: हाँ, अभी देखना जब दोनों वापस आएंगे ना, तो हाँ कर देंगे।
0: अच्छा। राधेलाल
3: जी सरकार,
0: देखो तो कौन आया है।
3: अभी देखती हूँ सरकार। आइए आइए सरकार, आइए आइए।
4: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते। अब मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।
4: जी
0: हाँ,
4: आपने मुझे नहीं पहचाना
0: ना।
4: आपसे टेलीफोन पर बात हुई थी ना।
0: टेलीफोन पर वो, लेकिन किस सिलसिले में भाई?
4: जी मैं स्पीड मोटर सर्विस से आया हूँ।
0: स्पीड मोटर सर्विस से?
1: अरे हाँ याद आया, वीना ने स्पीड मोटर सर्विस को टेलीफोन किया था, वो कार सीखना चाहती है। ये कार सिखाने आया है।
0: ओह अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझा, तो तुम स्पीड मोटर सर्विस से आए हो।
4: जी हाँ वही से आया।
0: हमारी बेटी वीना ने।
4: जी हाँ आपकी बेटी वीना।
0: देखो भाई बात सुनो, वीना अभी कहीं गई हुई है, तुम थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, वो आ जाए तो उसे बात कर लेना। हाँ
4: लेकिन सर मेरा मतलब है, आपसे टेलीफोन पर बात हुई थी ना वो।
0: हो भाई बात तो हो गई थी, पर वीना घर पर नहीं है। कहा ना थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, हम कोई घरेलू बातचीत कर रहे हैं।
4: लेकिन मैंने भी तो बात आपसे ही करनी है सर।
0: ओहो भाई, क्या वो क्या पैसों की बात करनी है ना। हमारी बेटी को आने दो, उसे पूरी आजादी है, अपने लिए रुपए पैसे के बारे में वो खुद फैसला कर लेगी।
4: जी रुपए पैसों के बारे में वो फैसला खुद करती है।
0: हाँ हाँ
4: मैं कुछ समझा नहीं।
0: पर तुम्हें ये सब बातें समझने की जरूरत ही क्या है, मैं कहता हूँ।
4: लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जब तक आपकी बेटी वापस ना आए मैं बाहर इंतजार करूं? आखिर हर चीज की कोई हद होती है।
0: अरे भाई अगर इंतजार नहीं कर सकते तो चले जाओ, आधा घंटे में आ जाना। जाओ बेटा जाओ, समझा करो।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं फिर बाद में आ जाऊंगा।
0: हाँ, जाओ, जाओ।

0: मैं सोचता हूँ वीना की मम्मी, हमारी वीना और वो काफी देर हो गई दोनों को गए हुए, अभी तक वापस नहीं आया। अजी अब दोनों घुल मिल गए होंगे, गप्पे मार रहे होंगे, आ जाएंगे जल्दी भी क्या है। ये लो, तुम याद कर रहे थे ना, आ गए दोनों।
1: आओ आओ बेटा, बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो बैठो अब बताओ बेटा, क्या हाँ ख्याल है तुम्हारा?
2: जी जो आपका हुक्म हो वही मुझे मंजूर है।
1: वेरी गुड। तो बेटा मैं तो कहूंगा कि मुबारक हो, मुबारक हो।
0: बेटा ये कहकर तुमने हमारी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दी।
1: इसमें कोई शक नहीं। कहो बेटी वीना, बेटा क्या इरादा है तुम्हारा?
3: दादी हमें ऊपर जा रही हूँ।
1: समझा समझा समझा, समझ गया। देखो वीना की मम्मी।

0: बेटा क्या नाम है तुम्हारा?
1: मैं तो अपना नाम बताना भूल ही गया। मेरा नाम राजेश है।
0: क्या राजेश? वाह वाह वाह, कितना बढ़िया नाम है। तो तुम बेटा ऐसा करो कि हमें अपने घर का पता दे दो, हम कल ही तुम्हारे माँ बाप से मिलने आएंगे। क्यों, ठीक है ना?
1: एक्सक्यूज मी, दीनू जी आ गई क्या?
0: तुम फिर आ गए। ठीक है ठीक है, वीना तो आ ही गई है। वीना बेटी, वीना बेटी।
1: अरे राजेश, तुम यहाँ?
2: सर, आप यहाँ कैसे?
1: पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
2: जी जी जी, मैं तो कार सिखाने आया था सर।
1: अच्छा, तो ये तुम कार सिखा रहे हो, वहां से 2 घंटे से गायब हो और यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो?
2: जी जी जी, जी, जी बात ये है सर कि
1: अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुमने उस लड़की का हाथ अपने हाथों में ले रखा था।
2: नहीं सर, आप यकीन करिए, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ रखा था, बल्कि उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था।
1: अरे इडियट, कार का स्टीयरिंग अपने हाथों में पकड़ो, गियर का हैंडल अपने हाथ में पकड़ो, इंडिकेटर का हैंडल अपने हाथ में पकड़ो। लड़की का हाथ पकड़ने का प्रोसीजर कहां से अडॉप्ट किया तुमने?
2: सर आई एम सॉरी सर, मैं मजबूर था।
0: अरे रे रे रे रे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, आखिर तुम कौन हो? क्यों डांट रहे हो हमारे होने वाले दामाद को?
1: जी

0: अबे नालायक, कार चलाना सिखाओ या मोहब्बत करो, दोनों काम एक साथ करने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट कर बैठोगे।
1: लेकिन सर ये तो दिल है, इसमें किसी का क्या जोर, जब इश्क कर ही बैठा तो अब क्या हो सकता है।
0: मेरे साथ बहस मत करो, आज के बाद अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर किसी से इश्क किया तो मैं तुम्हें चार्जशीट कर दूंगा।
1: ठीक है सर, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, और आइंदा मैं किसी भी लड़की से मोहब्बत करने से पहले आपसे बाकायदा इजाजत ले लूंगा। लेकिन लेकिन अब जहां इश्क हो चुका है वहां तो रहने ही दीजिए सर।
0: खामोश, इस इश्क पर ब्रेक लगाओ और गाड़ी को रिवर्स करो।
1: लेकिन सर इश्क की गाड़ी का रिवर्स गियर काम ही नहीं कर रहा।
0: अबे तो धक्के देकर इश्क की गाड़ी को रिवर्स करो, कैसे भी हो रिवर्स करो, क्योंकि
1: क्योंकि
0: अरे मैं नजदीक आऊ, कान में बात सुनो, क्योंकि मैं इस लड़की से इश्क करता हूँ।
1: यानी कि आप कैरी ऑन सर, कैरी ऑन, ये लीजिए इश्क की गाड़ी की चाबियां, चलाइए खूब चलाइए, मैं जा रहा हूँ सर, आइए खूब इश्क।
0: थैंक यू थैंक यू। बस चला गया।
2: अच्छा हुआ बेटा, बेटा तुमने तो हमें बचा लिया, वरना हम तो बर्बाद हो जाते, हमारी लड़की की शादी कहाँ सिखाने वाले के साथ हो जाती, हम तो किसी को मुंह दिखाने लगना रहते। तो बेटा गिरधारी लाल जी ने तुम्हारे बारे में बात की थी।
0: जी हाँ जी हाँ, तभी तो मैं आया हूँ सर।
3: भगवान का शुक्र है बेटे कि तुम ऐन वक्त पर आ गए, वरना हम कहीं के ना रहते।
2: मीना बेटी, मीना।
4: आई डैडी।
2: हाँ बेटी, हाँ हाँ हाँ
4: डैडी।
2: बेटी मीना, बेटी ये है।
4: लेकिन वो कहाँ है?
2: वो कौन?
4: राजेश, जिनके साथ मैं कार में गई थी।
2: वो?
0: अरे वो तो हमारी कंपनी में कार ड्राइविंग सिखाता है, अब वो किसी और

0: राजेश, जिनके साथ मैं कार में गई थी।
1: वो, अरे वो तो हमारी कंपनी में कार ड्राइविंग सिखाता है, अब वो किसी और लड़की को कार सिखाने गया है।
2: ये तो हमें एन वक्त पर पता चल गया, वरना तुम तो जानते।
0: चाहे वो कार चलाना सिखाता है, चाहे वो ठेला चलाना सिखाता है, मैं तो अब उसी से मोहब्बत करने लगी हूँ।
2: नहीं बेटी नहीं, उससे मोहब्बत नहीं करो
0: जी।
2: हाँ,
0: यानी कि उससे

0: रहे होगी मेरे लाल।
1: प्रॉमिस डैडी।
0: आई प्रॉमिस बेटे।
1: किशोर।
0: वीना।
1: किशोर।
0: वीना, भगवान का शुक्र है तुम्हारे डैडी ने हाँ कर दी। क्या क्या?
1: थैंक गॉड।
0: क्या क्या क्या क्या? इसका मतलब है कि तुम, यानी कि तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो?
2: ये सर, लेकिन सर एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि मैं स्पीड मोटर सर्विस का मालिक नहीं हूँ, मैं तो वहाँ का मैनेजर हूँ।
0: क्या कहा? यानी कि तुम वहाँ के मालिक नहीं हो, मैनेजर हूँ?
2: जी हाँ, मेरे पास सब कुछ है, बस इतना पैसा नहीं है।
0: पैसा नहीं है तो तुमको
3: तो क्या हुआ बीना के डैडी? खबरदार, जो अब तुमने टांग अड़ाई।
0: लेकिन बीना,
3: इसी से करो अब बीना की चट मंगनी और पट ब्याह।
0: लेकिन
3: अरे अब क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
3: हाँ कर दो ना। अजी ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा हमें?
0: ओके ओके
2: ओके, थैंक यू।
4: अभी आप सुन रहे थे जनाब वी एम आनंद का तहरीर करदा ड्रामा पैसा ही पैसा, पेशकश प्रेम बोहरा की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे राजेश्वर नाथ, कमल कुमार वर्मा, गिरीश माथुर, सरोज भार्गवा, अर्चना और एस के बैचलर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात आप सबके लिए दस्तयाब है। आप ट्यून कर सकते हैं मीडियम वेव्स के लिए 1071 किलो हर्ट्ज। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उर्दू सर्विस सुनी जा सकती है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
5: आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक

से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि वो श्रीलंका की कयादत के साथ नतीजा खेज बातचीत के मुंतजिर हैं। वजीर दिफा अपने दौरे के दौरान श्रीलंका में भारतीय बिरादरी के लोगों से भी बातचीत करेंगे। नवंबर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेवियर बैटल ने अकवाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की कोशिश की, ये कहते हुए हिमायत की है कि आलमी इदारे में इस्लाहात की जानी चाहिए ताकि मौजूदा आलमी निजाम के हकायक की अक्कासी हो सके। एक खबर रसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में जनाब बैटल ने कहा कि भारत के वसी अरीज होने और इसकी आलमी अहमियत के मद्देनजर तौसीशुदा सलामती कौंसिल में इसका शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने भारत और ब्राजील का हवाला देते हुए कहा कि यूएन सलामती कौंसिल में उन बड़े मुल्कों को शामिल करके तौसी की जा सकती है जिनका सरदर्द कोई मुस्तकिल रोल नहीं है। जनाब बैटल ने मौजूदा वीटो निजाम पर नुक्ताचीनी भी की और इसे दूसरी आलमी जंग के बाकियात से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि किसी एक मुल्क को उन फैसलों को रोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए जिनकी हिमायत वसीतर बैन अल-अक़वामी बरादरी ने की हो। लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम भारत के तीन दिन के सरकारी दौरे पर आए हुए हैं। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग के मकसद से अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ बैन अल-अक़वामी पहल में शामिल हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका के कॉमर्स के महकमे ने कहा कि इस कोशिश का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि नए सिलसिले के नेटवर्क से मुश्तरक सिक्योरिटी मफादात की अक्कासी हो, मुसाबकत मुस्तहकम हो और इख्तिला को बढ़ावा मिले। अमरीका के मायामी में G20 के इख्तराई वजीरों की कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीका के कॉमर्स के वजीर हॉवर्ड लोटनिक के साथ कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद की मुलाकात के बाद ये ऐलान सामने आया है। दोनों रहनुमाओं ने 6G तकनीक के मुस्तकबिल और नए सिलसिले का टेली मुवासलाती नेटवर्क तैयार करने में ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिवाफ ने कहा कि आप हमारे असासों पर हमला करेंगे तो आप पर भी हमला होगा। उनका यह बयान हफ्ते के आखिर में जहाजरानी पर अमरीका और ईरान के नए हमलों के बाद आया है जिनके सबब तेल की कीमतें तकरीबन 6 हफ्ते की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी इस तनाजे में सिफारती सतह पर किसी बड़ी कामयाबी और खलीज से तवानाई की फराहमी मामूल पर बहाल होने के वाज़े इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान इतवार के रोज ईरान के सिक्योरिटी से मुतालिक आला अहदेदार मोहसिन रिजाई ने कहा कि ईरान जल्द ही खलीज में बंदिशों वाले एक मखसूस इलाके का ऐलान करेगा और आबनाए हुर्मुज में जहाजरानी के एक नए कॉरिडोर का आगाज करेगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके की हद वहां से शुरू होगी जहां से अमरीका की तरफ से ईरान की बहरी नाकाबंदी की हद शुरू होती है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में दाखिल होने वाले जहाज

0: कश्मीर सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत ने इस सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग में अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। ईरान ने तंबीह की है कि उसके असासों पर अमरीका के मजीद हमले होने पर खलीज के खत्ते में तवानाई के बुनियादी ढांचे के
1: हाय हाय काहे को बुला।

हमशक्ल फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सच्चा झूठा फिल्म का नगमा।

83 शाम फिल्म का नगमा भी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। अब सुनिए मुकेश के साथ लता को, फिल्म है तीसरा कौन।

0: मोहम्मद रफी के साथ ये थी लता मंगेशकर, उनके गेटवे ऑफ इंडिया। फिल्मी दो गाने आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से एयर हो रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है चंपारण की तहरीक की अहमियत।
1: हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह को जबरदस्त तारीखी अहमियत हासिल है। इस सत्याग्रह को हिंदुस्तान की तहरीक आजादी का नुक्ते आगाज या पेश खेमा भी कहा जा सकता है। ये पहली इंतहाई मुनज्जम सिविल नाफरमानी तहरीक थी जिसे महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों पर जुल्म जबर और उनके माशी इस्तेहसाल के खिलाफ चलाई थी, जो अंजामकार बेहद नतीजा खेज और कामयाब रही। अंग्रेजों के दौर हुकूमत में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बिहार के जिला चंपारण में भी जमींदाराना निजाम राज था, जिसमें जमीन के मालिक राजे महाराजे नवाब और जमींदार हुआ करते थे। ये लोग अपनी जमीनें पट्टे पर मुजारीन को दे दिया करते थे और उनसे मालगुजारी वसूल किया करते थे। चंपारण जिला की जमीन नील की खेती के लिए बड़ी साजगार थी। ये नील बरतानिया भेजी जाती थी जिससे बालों पर कलर बनने की डाई बनती थी, इसलिए नील की फसल एक मुनाफा बख्श पैदावार बन गई थी। लेकिन इसमें दो जबरदस्त खराबियां भी थीं। एक तो इसकी खेती के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी और दूसरी खराबी ये थी कि नील की फसल जमीन को बंजर बना देती थी, इसलिए किसान नील की खेती करने से गुरेज करते थे। दूसरी तरफ जमींदारों ने अपनी जमीन पट्टा पर देने के लिए शर्त रख दी थी कि फी बीघा 5 लट्ठे पर नील की काश्त करनी होगी। इस नील जमींदार अपनी मनमानी कीमत देके ले लिया करते थे, इसलिए नील की काश्त जमींदारों के लिए नफा बख्श और किसानों के लिए घाटे का सौदा थी। नील की खेती से हिंदुस्तानी जमींदारों के वारे नारे देखकर यूरोपी लोग भी जमीनें खरीद के नील की काश्त के लिए किसानों को पट्टे पर देने लगे।

0: क्योंकि नील की काश में जमींदारों के लिए मुनाफा ही मुनाफा था। इन्हें जमींदार नील की काश के लिए किसानों को मजबूर करते थे और जो लोग ऐसा करने से इनकार करते थे उनको डराते धमकाते थे और हर तरह के जायज और नाजायज हथकंडे इस्तेमाल करते थे। अपनी कुव्वत, ताकत और असर नफूज़ के बलबूते पर सारे झगड़ों पर और मुकदमात का निपटारा भी यही जमींदार किया करते थे। इसलिए ये मजबूर और बेसहारा किसान जाते तो किसके पास जाते। कहा जाता है कि जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और मजलूमों की मदद के लिए गैब से सामान मुहैया करती है। चुनांचे किसानों की मदद के लिए कुछ मकामी लीडर आगे बढ़े। इन मकामी लीडरों में शेख गुलाब, हरबंस सहाय, पीर मोहम्मद मुंशी, संत रावत और सुमरा सिंह ने किसानों पर जुल्म ज्यादती के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया और सिलसिले में बरतानवी हुकाम के पास अर्जदाश्तें भी भेजी। इन अर्जदाश्तों में किसानों की लाचारी और जमींदारों के जुल्म सितम को अच्छी तरह उजागर किया गया था। मकामी लीडरों की कोशिशों का नतीजा ये निकला कि जमींदारों ने 5 लट्ठा नील उगाने की शर्त को नर्म करके 3 लट्ठा कर दिया और नील की कीमत भी कुछ बढ़ा दी। इससे कबल किसानों से नील लेने की कीमत भी वो खुद ही मुकर्रर करते थे, लेकिन ये थोड़ी सी रियायत से ना तो किसान खुश थे और ना ही मकामी लीडरान। उन्हें अब भी ना तो नील के मुताबिक कीमत मिल रही थी और ना ही वो इन खेतों में अपनी मनमानी फसल उगाने के लिए आजाद थे। चंपारण के एक सामाजिक कारकुन राजकुमार शुक्ला इस सूरत हाल से बहुत आजूदा थे। इसी घटना में उनकी मुलाकात पटना के 2 मुमताज वकला ब्रिज किशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद से हो गई, जिन्होंने उन्हें गांधी जी से मिलने का मशवरा दिया। इसके साथ ही उन्हें ये भी बताया कि गांधी जी अभी कुछ ही दिनों पहले जनूबी अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ कामयाब तहरीक चलाने के बाद हिन्दुस्तान वापस लौटे हैं। इत्तेफाक से उस वक्त गांधी जी कांग्रेस के 31वीं इजलास मुनाकदा 26-30 दिसंबर 1916 में शिरकत के लिए लखनऊ में मौजूद थे। राजकुमार शुक्ला ने संत रावत की मैयत में लखनऊ आके गांधी जी से मुलाकात की और उनको चंपारण के किसानों की जबूहाली से आगाह किया और हालात का बचश्मे खुद मुशाहदा करने के लिए उन्हें चंपारण आने की दावत दी। महात्मा गांधी ने उनकी दावत कबूल कर ली और 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँच गए। चंपारण में उन्होंने संत रावत के घर अमवा गांव में काम किया। यहीं पर बिहार के मुमताज वकीलों की एक टीम जिनमें ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुगरा नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद और जेपी कृपयानी जैसे लोग शामिल थे उनसे मुलाकात की और इस जद्दोजहद में उन्हें भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। जैसे ही गांधी जी ने चंपारण पहुंच के अपनी सत्याग्रह का ऐलान किया तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नब्जे अमन का खतरा बता के उन्हें फौरी तौर से चंपारण छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें अदालत में तलब किया और कहा कि अगर वो फौरी तौर से चंपारण छोड़ दें और दोबारा न आने का वादा करें तो उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। गांधी जी ने कहा कि वो चंपारण में इंसानी खिदमत अंजाम देने के लिए आए हैं और यहीं पर रह के मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करेंगे और किसी भी हाल में चंपारण नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद गांधी जी आजाद के कमरे से बाहर निकले जहां पर हजारों लोग उनसे इजहार यकजहती के लिए जमा हुए थे। लोगों की इस भीड़ से मुखातिब होकर गांधी जी ने कहा, अगर आप लोग मेरे वफादार हैं और मेरे काम से मुतमईन हैं तो आप लोग पुरअमन रहें। अगर हुकूमत मुझे हुक्म अदूली के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज देती है तब भी आप लोग पुरअमन रहेंगे, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करेंगे क्योंकि तशद्दुद हमारी जद्दोजहद के लिए नुकसानदेह साबित होगा। गांधी जी के मुंह से अल्फाज सुनकर पूरी भीड़ मुंतशिर हो गई और फिर गांधी जी पूरे इत्मीनान सुकून के साथ अदालत में हाजिर हो गए। मजिस्ट्रेट ने मंजर देख के अपना हुक्म वापस ले लिया और उन्हें चंपारण में रहने की इजाजत दे दी। इस वाकया के बाद गांधी जी बिटिया गांव के हजारी मल धर्मशाला में मुंतकिल हो गए। यहां से उन्होंने चंपारण के तूल अर्ज का दौरा करके किसानों के मसाइल का बजात खुद मुशाहदा किया। उन्होंने तकरीबन 8,000 नींद उगाने वाले किसानों से मुलाकात की, उनके मसाइल और मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया, जमीनी हकायक का गहराई से जायजा लिया। इस तरह किसानों के जुमला मसाइल पर गौर खोज करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि किसानों का इस्तेसाल सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि वो नाखादा और तालीम से महरूम हैं। चंपारण में अपने कैंप के दरमियान महात्मा गांधी जी ने किसानों के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कई स्कूल कायम किए और फिर मकामी और यूरोपीय जमींदारों के खिलाफ अपने सत्याग्रह तेज कर दिया। बिलाखिर इस सत्याग्रह के सामने बरतानवी हुकूमत और उसके हाशिया नशीन जमींदारों को झुकना पड़ा। जून सन 1917 में मरकजी हुकूमत ने सूबे बिहार की हुकूमत को हिदायत दी कि किसानों के मसाइल के बारे में एक कमेटी की तश्कील करें। इस कमेटी ने सूबे बिहार और खास तौर पर चंपारण के नील उगाने वाले किसानों के बारे में अपनी पूरी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी। इस कमेटी की सिफारिशात के नतीजे में चंपारण एग्रीगियन एक्ट बना, जिसमें किसानों को बड़ी राहत दी गई, उन्हें मालगुजारी में काफी छूट दी गई और अपनी मनपसंद फसल उगाने की आजादी दे दी गई। इसी सत्याग्रह के दौरान संत रावत ने गांधी जी को बापू और फिर महात्मा कहकर पुकारना शुरू किया। अपनी तभी इनकसारी की वजह से गांधी जी बापू कहलाने पर तो राजी हो गए, लेकिन महात्मा कहलाने जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जबान खल्क तो खुदा का नकारा होती है। आज वो सिर्फ हिन्दुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में बापू भी हैं और महात्मा भी हैं।
1: प्रोग्राम तारीख साज आपने सुना। आज का मौजू था चंपारण की तारीखी अहमियत। पेश कर रहे थे जनाब मतलूब अहमद। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

0: से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।
1: सरफरोश फिल्म का नाम अभी आप सुन रहे थे, आमिर खान और अलका याग्निक का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मेरी सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेशे खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
1: नौवां बेंगलुरु स्पेस एक्सपो BSX 2026 7 से 9 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है, जिसका थीम है हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस इनोवेशन पॉलिसी एंड ग्रोथ। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2026 में कहा कि नासा ने आधिकारिक तौर पर इसरो को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: इंडिया इज अ प्राउड सिग्नेटरी ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड्स एंड नासा हैज ऑफिशियली इनवाइटेड इसरो टू जॉइन अस इन द मून बेस प्रोग्राम। मेक नो मिस्टेक, वी आर गोइंग बैक टू द मून एंड वी वांट इंडिया बाय आवर साइड ऑन द लूनर सर्फेस। द मून मे बी आवर डेस्टिनेशन, but the engine of this journey is ground level innovation right here in our labs, startups and commercial markets. India's bold space sector reforms ignited a commercial awakening.
1: इसमें जो चर्चा हो रही है उसमें स्पेस इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, वर्तमान आकार और लक्ष्य। बीएसएक्स के अनुसार भारत का स्पेस सेक्टर लगभग 8.4 बिलियन का है और वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में इसकी हिस्सेदारी करीब 2 से 3% है और 2033 तक इसे लगभग $44 बिलियन तक ले जाने और करीब 11 बिलियन एक्सपोर्ट हासिल करने का लक्ष्य माना गया है। पर प्रश्न जनरल भट्ट यहां पे ये है कि क्या भारत 8 से 10% ग्लोबल स्पेस मार्केट शेयर हासिल कर सकता है?
3: मेरा जवाब ये होगा कि 8 से 10 नहीं हो सके, और अगर सब चीजें ठीक से चलेंगी तो ये 10 से ज्यादा भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आगे आ रही हैं रॉकेट लॉन्च में, सैटेलाइट्स में और एप्लीकेशंस में, मेरा तो ये विश्वास है कि ये 10% फैसिलिटी से भी ज्यादा बढ़ेगा।
1: हम इसरो की बात यहाँ पे करते हैं, इसरो और इंडस्ट्री ने साथ मिलकर, अभी आपने प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की, इसरो को R&D स्ट्रेटेजिक मिशन और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का भी नेतृत्व हासिल है, जबकि रूटीन मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल एक्टिविटी में प्राइवेट इंडस्ट्री की भूमिका बढ़ रही है। आपने भी अभी चर्चा की कि उसकी भूमिका और भी अधिक होने वाली है। प्राइवेट पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में?
3: भारत की अगर स्पेस का इतिहास देखा जाए तो जब से इसरो बना और तब से 2020 तक सिर्फ इसरो ही सब स्पेस एक्टिविटीज में भारत में लीड कर रहा था, चाहे वो लॉन्च व्हीकल बनाना हो, चाहे वो सैटेलाइट्स करना हो, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, ये इसरो के ही द्वारा किया जाता था। हाँ, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अपने सब असेंबली और कंपोनेंट्स के वेंडर्स के तरीके से इस्तेमाल करते थे, पर प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता था। 2020 में हमारी सरकार ने यह निश्चय लिया कि अब समय आ गया है जबकि प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस में सारी एक्टिविटीज करने की अनुमति दी जाए, और इस डिक्लेरेशन के बाद 2023 में नई स्पेस पॉलिसी बनाई गई जिसमें कि इसरो का एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इन स्पेस, NSIL, जिसका मतलब है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसरो की पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब उनका कमर्शियल काम करने के लिए, और साथ ही नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, जिसका मतलब प्राइवेट सेक्टर, इन सब के रोल काम को डिफाइन किया गया है। और उसमें ये कहा गया कि इसरो आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लानिटरी साइंस, यानी कि मंगलयान, शुक्रयान और ऐसे मिशन, गगनयान जैसी अगर यात्रियों को भेजना, अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, चांद में जाना, ऐसी कार्रवाइयां इसरो करेगा, और जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, जो काबिलियत जिनको कमर्शियल करना है, उनको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। तो जैसे कि इसरो के पुराने चेयरमैन के शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं तो उनका कहना था कि स्पेस जो कि सिर्फ इसरो लीड करता था, अब स्पेस एंटरप्राइज बन गया है, और स्पेस एंटरप्राइज में कौन कौन है? लीड में इसरो, साथ में एकेडमिया, साथ में स्टार्टअप्स, साथ में प्राइवेट सेक्टर, ये सब मिलकर अब आगे के स्पेस को आगे बढ़ाएंगे। और ये एक जरूरी भी इसलिए हो गया क्योंकि सैटेलाइट बनाने की जरूरत

0: एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की जरूरत, सिर्फ इसरो में न सीमित करके इसको और बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर को पूरा खोल दिया गया।
1: जनरल भट्ट, 2026 तक भारत में लगभग 400 से अधिक प्राइवेट स्पेस कंपनीज और स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम विकसित हो चुका है। लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट की बात आपने की, प्रोपल्शन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें इनमें समावेशित हैं। तो लॉन्च इकोनॉमी की अभी आपने भी चर्चा की, लॉन्च इकोनॉमी की आपने बात की, और एक तरह से भारत को लॉन्च प्रोवाइडर से भी आगे जाना होगा लॉन्च इकोनॉमी बनने के लिए। पीएसएलवी, LVM3 की विश्वसनीयता भारत की ताकत है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अगला अवसर लो कॉस्ट लॉन्च, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स और हाई लॉन्च, इसके इकोसिस्टम में है। कैसे देखते हैं? लक्ष्य केवल दूसरे देशों को सैटेलाइट लॉन्च करना ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्पेस लॉजिस्टिक्स मार्केट में भी बड़ा हिस्सा हासिल करना होना चाहिए। कैसे देखते हैं इसे आप?
0: तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि लॉन्च इकोनॉमी नहीं, मतलब इतनी अहम नहीं है। क्यों अहम नहीं है? क्योंकि जो पूरा ओवरऑल स्पेस सेक्टर की इकोनॉमी में है उसमें लॉन्च की परसेंटेज बहुत ही कम है। यानी कि लॉन्च से जो पैसा मिलता है वो और चीजों के वनस्पत, एप्लीकेशन के वनस्पत काफी कम है। ज्यादा पैसा, ज्यादा कमाई सैटेलाइट से डेटा जो आता है उसकी एप्लीकेशन में है, न कि लॉन्च व्हीकल में। पर हाँ, अगर किसी भी देश को ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का हिस्सा बनना है तो उनके पास लॉन्च की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और हम गर्व से कह सकते हैं कि इसरो के होने की वजह से हमारे पास पीएसएलवी, एसएसएलवी और LVM3 होने के कारण ये काबिलियत है। पर एक चीज और हुई है दुनिया में और वो है रियूजेबल रॉकेट्स। आज के दिन में रियूजेबल रॉकेट्स ने स्पेस लॉन्च की कीमत को काफी कम कर दिया है। उसमें एक दो कंपनी नहीं है दुनिया में जिसमें से लीड कंपनी स्पेसएक्स है और ज्यादातर दुनिया की सैटेलाइट आज उनसे लॉन्च हो रही है। तो फ्यूचर में अगर हमको लॉन्च में ग्लोबल पार्टनर बनना है तो हमको सिर्फ LVM3 तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, हमको रियूजेबल रॉकेट बनाना है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये ऐसा भी होगा।
1: अभी आपने वो लॉन्च इकोनॉमी की आपने बात की कि सिर्फ लॉन्च इकोनॉमी तक ही नहीं सीमित रहना है, इससे आगे भी बढ़ना है। तो भारत की अगली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रॉकेट्स होंगे या सैटेलाइट्स होंगे या स्पेस डेटा आधारित सर्विसेज होंगे, इसके बारे में इसरो या ऐसी एजेंसीज और क्या आगे काम कर रही हैं? आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे इस पे?
0: देखिए, अगर आज के दिन में भी ग्लोबल मार्केट देखा जाए पूरा की भाई जितना भी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? सबसे ज्यादा पैसा है सैटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके अलावा लोकेशन बेस्ड सर्विसेज पर और सैटेलाइट्स के डेटा के एप्लीकेशंस जो कि एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एजुकेशन में, मेडिसिन में, अनेक अनेक जगह उनका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास एक फायदा है कि जैसे कि जब IT रेवोल्यूशन हुआ तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारी सिस्टम एजुकेशन में इतने स्टूडेंट्स हैं कि हम उस बूम का इस्तेमाल कर पाए। तो इसी प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि एप्लीकेशंस ही भारत की स्ट्रेंथ होगी। ये जरूरी है कि लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट बनाने की काबिलियत तो होनी होनी है, पर जहां पैसा है, जहां पर ज्यादा ग्लोबल मार्केट में हम कॉम्पिटेटिव होंगे वो है मल्टीपल एप्लीकेशन।
1: अभी आपने थोड़ी देर पहले गगनयान, चंद्रयान की बात की, तो गगनयान के आगे स्पेस स्टेशंस, लूनर एक्सप्लोरेशन और डीप स्पेस मिशंस भारत के लिए केवल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि नई इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज के तौर पर भी उभर कर आई हैं और हाईटेक सप्लाई चेन्स के भी काफी अवसर हैं यहाँ पे। अभी ये BSX में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी प्रमुख विषय बनाया गया है, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, एक तो बहुत ही अच्छी चीज हुई है कि भारत की सरकार ने और इसरो ने ये डिफाइन किया है कि 2040 तक हमने क्या करना है और उसमें सबसे पहले अपने गगनयात्री मतलब ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेजना है जिसकी शुरुआत इस साल के आखिरी में होगी, जब हो सकता है पहला रोवर गगनयात्री जाए, 2-3 अनक्रूड फ्लाइट होने के बाद में क्रूड फ्लाइट आएंगी और हो सकता है अगले साल के आखिर और यह 2028 तक हमारा पहला गगनयात्री स्पेस में होगा। पर बहुत अहम है कि साथ ही भारत अंतरिक्ष स्टेशन 2028 और 2035 के बीच में बनेगा और 2040 में भारत से लॉन्च हुई हुई लॉन्च व्हीकल्स में पहला इंडियन चांद पे जाएगा। नाउ ये सब जो मिशन हैं ये सिर्फ साइंटिफिक मिशन नहीं है, पूरी दुनिया में ये फ्यूचर में अगर देखा जाता है स्पेस का, और ये कहा जाता है कि अगले 30-40-50 साल में स्पेस

0: क्या होगा? तो जैसे आप कह रहे हैं अर्थ की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्पेस में बहुत सारी एक्टिविटी रहेगी, वो होंगी एस्ट्रॉइड माइनिंग की, वो होंगी पावर एनर्जी को नीचे, सोलर एनर्जी को नीचे अर्थ में भेजने के लिए, डाटा सेंटर्स के स्पेस में बनने के लिए। तो बहुत सी जो इकोनॉमी की एक्टिविटीज हैं, अर्थ के लिए जो एक्टिविटीज हैं, वो स्पेस में की जाएंगी और उसको करने के लिए क्षमताएं अभी से शुरू हो जाएंगी। और उसी में पहला गगनयात्री जाना है, अंतरिक्ष स्टेशन बनना है और चांद में जाना है, उसके आगे चांद में कॉलोनी और उससे आगे मंगल पे जाना। इस सब एक्टिविटीज सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए नहीं, बल्कि नई फ्यूचर की इकोनॉमी का हिस्सा रहने के लिए। और जैसे इसरो ने हमें आज हाई टेबल पे रखा हुआ है स्पेस के, हम कुछ ही देशों में से हैं जिन्होंने साउथ पोल पर चांद के लैंड किया है। तो ये काबिलियत इसरो हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा, बनाता रहेगा।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर देश को अपनी सॉवरेनिटी बरकरार रखने और उसे और मजबूत करने का पूरा हक है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। और तो ग्लोबल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें जनरल भट्ट, तो भारत को यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों के साथ टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन और ज्वाइंट मिशन में सहयोग करते हुए देखा जा सकता है। हाल में ही कई देशों के साथ हमने ऐसे पैक्ट और ट्रीटी और डील भी किए हैं। और बीएसएक्स 2026 में यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ डेडिकेटेड इंटरनेशनल सेशंस भी रखे गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसे?
0: देखिए, स्पेस की एक डोमेन है दुनिया में जहां की हमेशा ही ग्लोबल कोऑपरेशन रहा है। और अगर हम अपने स्पेस के इतिहास को देखें तो जब पहला स्पेस रॉकेट हिंदुस्तान में भेजा था, वो स्पेस रॉकेट हमको अमेरिका ने दिया था, उसको थोड़ा तक पहुंचाने की काम एक रशियन हेलीकॉप्टर ने किया था और उसके ऊपर जो रॉकेट साउंडिंग का जो वो था वो फ्रांस से आया था
1: जी।
0: तो हमारी भारत की फ्रांस के साथ में, जापान के साथ में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में और अमेरिका के साथ में और साथ में रशिया के साथ में भी हमेशा स्पेस में कॉपरेशन रहा है। और दूसरा, आज के दिन में जैसे बीएसएक्स में इतने विदेशी देश इसलिए आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ क्षमता और काबिलियत है, यहाँ ऐसे को प्रोडक्शंस, ऐसे को फ्यूचर के लिए ऐसे चीजें, कार्रवाइयां हमारे स्टार्टअप्स और हमारी कंपनियों के साथ कर सकती हैं जिससे कि ग्लोबल पार्टनरशिप्स बन पाए। और इसरो ने पहले से शुरू किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब किसी देश में जाते हैं तो स्पेस रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा होता है और ये कोऑपरेशन दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है।
1: जनरल भट्ट, अभी आपने काफी उभरते हुए क्षेत्रों की बात की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि कोई भी आज के डेट में स्पेस वो अनछुआ नहीं रह सकता है और होना भी नहीं चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें या कुछ और भी ऐसे जो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं इसकी बात करें, तो इसमें स्पेस मिशन या स्पेस इकोनॉमी या हमारा जो प्रोग्राम है स्पेस का, वो कैसे किस हद तक मदद कर सकता है?
0: देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जिसने सबसे बड़ा चेंज लाया वो है मिनिएचराइजेशन। सैटेलाइट जो कि एक बड़ी कोठी के बराबर होती थी, छोटी इतनी एक फ्रिज से भी छोटी हो जाती है, जो कि एक बहुत मिनिएचराइजेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। साथ ही एआई और एमएल का इस्तेमाल काफी आगे तक।
1: जनरल भट्ट, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: अभी आपने सुना प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह आज से श्रीलंका का 3 दिन का सरकारी दौरा शुरू कर रहे हैं।

हमला होगा। उनका ये बयान हफ्ते के आखिर में जहाजरानी पर अमरीका और ईरान के नए हमलों के बाद आया है, जिनके सबब तेल की कीमतें तकरीबन 6 हफ्ते की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गईं। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी इस तनाजे में सिफारती सतह पर किसी बड़ी कामयाबी और खलीज से तवानाई की फराहमी मामूल पर बहाल होने के वाज़े इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान इतवार के रोज ईरान के सिक्योरिटी से मुतालिक आला ओहदेदार मोहसिन रिजाई ने कहा कि ईरान जल्द ही खलीज में बंदिशों वाले एक मखसूस इलाके का ऐलान करेगा और अबनई हुरमुस में जहाजरानी के एक नए कॉरिडोर का आगाज करेगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके की हद वहां से शुरू होगी जहां से अमरीका की तरफ से ईरान की बहरी नाकाबंदी की हद शुरू होती है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में दाखिल होने वाले जहाजों को ईरान की तरफ से लगाई जाने वाली बंदिशों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। ईरान ने ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए सदर मसूद पेजश्कियां के नई दिल्ली के दौरे से कबल एक अहम सिफारती मरकज के तौर पर भारत के रोल को उजागर किया है और ये उम्मीद जाहिर की है कि ये ग्रुप दोतरफा तजारती और कलीदी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने का एक मजबूत प्लेटफार्म फराहम करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस बात को उजागर किया कि ईरान भारत के साथ तवील अरसे से कायम अपने ताल्लुकात को किस कदर अहमियत देता है। ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस में सदर पेजश्कियां की शिरकत के ताल्लुक से जनाब बकाई ने यह एतमाद जाहिर किया कि कसीर रुखी सिफारतकारी से दो तरफा ताल्लुकात में और तेजी के साथ पेशरफ्त होगी। ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली है। जनूबी लेबनान के एक गांव में इसराइली फजाई हमलों में 12 लोग हलाक हो गए। रात के वक्त एक हमले में फार रोमेन में एक रिहायशी इमारत में 2 बच्चे और 4 खवातीन समेत 11 अफराद की मौत हो गई। एक गाड़ी पर हुए हमले में एक तिब्बी कारकुन हलाक हो गया। इसराइली फौज ने कहा कि उसने ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्ला ग्रुप हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे समेत कई दहशतगर्दों को निशाना बनाया था जो हथियार ले जा रहे थे। उसका कहना है कि ये हमले उसने मुल्क के मकबूजा इलाके में फौजियों पर किए गए एक ड्रोन हमले के जवाब में किए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के माहिरीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बलोच शहरी इमरान अली की ताकत के बल पर मुबैना गुमशुदगी और गैर कानूनी हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस हलाकत के वाक़े की आजाद मुनसिफाना और गहरी तहकीकात करें। अली को पिछले साल अगस्त में सिक्योरिटी एहलकार मुबैना तौर पर अपने साथ ले गए थे और 1 साल के बाद भी उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली थी। पाकिस्तानी हुकाम ने बाद में बताया कि मई 2026 में एक मुबैना इनकाउंटर में वो हलाक हो गए थे। आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पैरा रिकर्व खवातीन के टीम गोल्ड फाइनल में भारत की भावना और पूजा का मुकाबला चीन की खिलाड़ियों से होगा। इधर मर्दों के पैरा रिकर्व टीम गोल्ड फाइनल में भारत के हरविंदर सिंह और विजय संडी स्लोवाकिया के खिलाड़ियों से मुकाबला करेंगे। इसके अलावा भारत मर्दों के पैरा कंपाउंड टीम फाइनल में भी सोने का तमगा जीतने की कोशिश करेगा, जहां श्याम सुंदर स्वामी और तमान कुमार का मुकाबला इराक के खिलाड़ियों से होगा। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह आज से श्रीलंका का 3 दिन का सरकारी दौरा कर रहे हैं। लग्जमबर्ग ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत ने इस सिलसिले की 6G नेटवर्क के फरोग में अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। ईरान ने मुबैना तौर पर तंबीह की है कि उसके असासों पर अमरीका के मजीद हमले होने पर खलीज के खित्ते में तवानाई के बुनियादी ढांचे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। और आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज श्रीलंका का 3 दिन का सरकारी दौरा शुरू कर रहे हैं। लग्जमबर्ग ने अक़वामे मुत्तहदे सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग में अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। ईरान ने तंबीह की है कि उसके असासों पर अमरीका के मजीद हमले होने पर खलीज के खत्ते में तवानाई के बुनियादी ढांचे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। और आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
1: आपने याद दिलाया।
2: जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फणी मजूमदार के निर्देशन में बनी

फिल्म आरती के बारे में। अगर हम इस फिल्म के कलाकारों की बात करें तो मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, अशोक कुमार और शशिकला जैसे मंझे हुए कलाकारों से सजी हुई ये खूबसूरत फिल्म। और ये फिल्म दरअसल एक नाटककार प्रफुल्ल देसाई के गुजराती नाटक संसार सेनानी पर आधारित थी। और इस फिल्म की जो कहानी थी वो निस्वार्थ प्यार, पारिवारिक उलझनों के इर्द गिर्द घूमती है। और इस फिल्म में हम बात करें तो ये वो एक ऐसी फिल्म जिसने मीना कुमारी जी के करियर को एक ऐसा ऐतिहासिक साल बना दिया कि उनकी लाइफ का सबसे कहीं ना हैपनिंग ईयर था वो, क्योंकि ये वो साल था जब उनकी फिल्म आरती, साहबीबी और गुलाम और ये जो फिल्में हैं स्टारडम के शिखर पर उन्हें पहुंचा दिया था इस फिल्म ने। इस फिल्म से जुड़ी और भी बातें, और भी किस्से हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं लता जी और रफी जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गीत।

0: अलग मोड़ लेती है, क्योंकि आरती की जो सगाई होती है वो डॉक्टर प्रकाश यानी कि अशोक कुमार जी से तय होती है, लेकिन प्रकाश के अहंकार को देखकर वो रिश्ता तोड़ देती हैं और चुनती हैं अपने लिए एक गरीब लेकिन ईमानदार और काफी ज्यादा स्वाभिमानी एक युवक दीपक यानी कि प्रदीप कुमार को। वो उनसे शादी करती हैं, गरीब होते हैं तो उनकी फैमिली में भी वो आती हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह से दीपक की भाभी के साथ उनके झगड़े होते हैं, जिस तरह से उनकी भाभी जो उन्हें परेशान करती हैं, और उस उन स्थितियों में किस तरह से आरती अपने आप को ढालती है, किस तरह से अपने परिवार को संभाल कर एक करके आरती आगे चलती है, उन्हीं पूरे जो झंझावत है उन्हीं में दिखा करके ये कहानी को बनाया गया है। और यही फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी ने एक ऐसे महिला का दर्द दिखाया है जो उस सादगी को पर्दे पर उतारा जो कि बिल्कुल उन्होंने बखूबी उतारा है। और ये वो फिल्म थी जो कि मीना कुमारी जी की जिंदगी में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वही दौर था जब मीना कुमारी जी अपने करियर में अपने अभिनय के शिखर पर थी, और उस दौरान 1963 में जब फिल्म फेयर पुरस्कारों के नॉमिनेशन हुए तो उस वक्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के 3 नॉमिनेशन ऐसे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी जी का नाम लिखा गया था। और ये अपने आप में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक अनोखा नामांकन है, क्योंकि फिल्म आरती, साहब बीवी और गुलाम और मैं चुप रहूंगी, इन तीनों फिल्मों के लिए मीना कुमारी जी को नॉमिनेशन मिला था, लेकिन लास्ट में उन्हें जो अवार्ड मिला वो साहब बीवी और गुलाम के लिए मिला। लेकिन ये फिल्म ऐसी है जो कि उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित रही। तो दोस्तों लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज में।
1: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं, चलो मुझे घर पहुंचा दो।

दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म आरती के बारे में। फिल्म आरती, जिसमें हमने बताया कि आरती जो कि है वो एक डॉक्टर का किरदार उन्होंने निभाया है और उनकी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो आते हैं जसवंती से मिलने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, जसवंती वो किरदार जिसे निभाया शशिकला ने इस फिल्म में, जो कि उनके पति दीपक यानी कि प्रदीप कुमार की के बड़े भाई की वाइफ हैं, यानी कि उनकी भाभी हैं। और जसवंती का जो किरदार दिखाया इस फिल्म में, एक लालची और बहुत कड़वा बोलने वाली, बात बात पर ताने मारने वाली एक स्वार्थी भाभी का किरदार उन्होंने निभाया। और जब डॉक्टर आरती यानी कि मीना कुमारी शादी करके इस गरीब

परिवार में आती हैं, तो जसवंती उन्हें नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। और उनका जो किरदार था वो इतना नेगेटिविटी लिए हुआ था और पूरा जो फैमिली ड्रामा था वो पूरा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता था। और आरती ने जिस तरह से सहनशीलता के साथ में इस मतलब जसवंती की कड़वाहट को लिया है और जिस तरह से उस पूरे फिल्म में उन दोनों के बीच में दिखाया गया ना, वो बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को एक इमोशनल रूप दे देती है। और जहाँ अगर हम बात करें इस फिल्म में शशिकला की एक्टिंग की, तो भाई शशिकला ने जिस तरह से अदाकारी की है, जिस तरह के एकदम खतरनाक टाइप के डायलॉग्स बोले हैं और जिस तरह की भाव भंगिमा या कहें कि हाव भाव उनके थे, उसे देखकर वाकई में दर्शकों को उनसे नफरत होने लगी थी। और यही उनके एक्टिंग की सबसे बड़ी जीत थी, यानी कि वो पूरी तरह से और किरदार में डूब गई थी। और शायद यही वजह थी कि इसी नेगेटिव रोल में उनकी इस एक्टिंग के लिए जो फिल्म फेयर के अवार्ड था 1963 में, उसमें उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और इस किरदार के बाद में वो टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हुई।

दोस्तों जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म आरती के बारे में। हमने इस फिल्म की कहानी उसके कलाकारों के बारे में बात की, लेकिन अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात ना करें तो वाकई में बात अधूरी रहेगी, क्योंकि रोशन साहब का जो संगीत है उसने वाकई में कमाल किया है इस फिल्म में। और एक तरह से हम कहेंगे कि 1960 का जो शुरुआती दशक है वो रोशन साहब को एक बहुत ही गंभीर और क्लासिकल जो म्यूजिशियन था, जो संगीतकार थे, वो माना जाता था। लेकिन आरती फिल्म जब आई और उसके गानों ने जिस तरह से धूम मचाई, तो उसके बाद में ये साबित हो गया कि जो रोशन साहब हैं वो आम जनता के लिए सुरीले और कॉमर्शियल जो हिट गाने हैं वो भी बना सकते हैं। और इस फिल्म के संगीत ने उनके करियर को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, और जिसके बाद उन्होंने ताजमहल जैसी एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्में को दी। तो लीजिए सुनते हैं उन्हीं के संगीत से सजा एक और खूबसूरत संगीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हम आज बात कर रहे हैं फिल्म आरती के विषय में। और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन शाह जी, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी के साथ। और इन्होंने ये संदेश भेजा है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से हमारे पास अगला संदेश आया है और उसको भेजने वाले हैं गुजरात वीरगांव से अजित भावसर जी। और इन्होंने इस फिल्म से जुड़ी काफी अच्छी जानकारी हम तक दी है और लिखते हैं कि प्रफुल्ल देसाई के नाटक संस्कार लक्ष्मी पर यह आधारित है और डॉक्टर आरती गुप्ता का किरदार इन्होंने निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया वीर अजित जी, आपने खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाई। अगला संदेश हम तक आया मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताई, संचित वयाल, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख का ये संदेश है। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनाराम कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। गुरमीत सिंह मीता जी जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से जुड़े हैं। अशोक कुमार सहगल जी, संदीप मकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से। मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून जुड़े हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और ये अगला संदेश हम तक एक बार फिर से आया है और इसको पहुंचाने वाले हैं अजीत भावसर जी। और इन्होंने और भी बहुत सारी जो जानकारी है हमें इस फिल्म से जुड़ी हुई दी है और लिखते हैं कि सदाबहार अभिनेता अशोक कुमार जी नॉर्मली एक पॉजिटिव किरदार निभाया करते थे लेकिन इस फिल्म में उन्होंने निगेटिव प्रेमी का किरदार निभाया है। बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। और भी बहुत सारी उन्होंने जानकारी दी है लेकिन वक्त की कमी के चलते हम पूरा संदेश नहीं ले पाएंगे। ग्राम नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्य साहू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, इश्फाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ, नीरोफा, फातिमा हमारे साथ जुड़े हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर जी का। और ये अगला संदेश छत्तीसगढ़ भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश देवांगन जी का हम तक ये संदेश आया। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार और ईशान छीपा का हम तक ये संदेश आया। इन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक दी है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। ये अगला संदेश वीरगांव गुजरात से अजीत भावसर, प्रमिला भावसर जी का है और ये वापस इन्होंने बहुत सी जानकारी हम तक दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पॉल, विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों जो अगला संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं राजकुमार डूडी जी, प्रमोद कुमार डूडी के साथ गांव फरासी जिला हिसार से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन मुखी हमारे साथ जुड़े, शांतिनगर सोनीपत से, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। हीरामणि वर्मा, दतरेंगी भट्टापारा से हम तक जुड़े हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। डीबी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं नेहरू विहार दिल्ली से। और प्रेम सागर शुभलता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संदेश इन्होंने अमृतसर से हम तक पहुंचाया है। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी श्रोता हम तक जुड़े और कार्यक्रम में आज हमने बात की आरती के अनसुने किस्से सुरीले नगमों के बारे में। तो चलते चलते मैं आप सभी के लिए रोशन साहब का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए छोड़े जाती हूँ मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। फिर हम आपसे कभी फिर मिलेंगे। अभी मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति लेकिन जाएगा कहीं नहीं क्योंकि 2:30 पर आपके साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी रेनू लेकर कार्यक्रम एक ही कलाकार। तो अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति छोड़े जाती है खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, अब से कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: दिल्ली केंद्र तो
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा विच 35,000 करोड़ रुपए तो वादे वक्फ विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रख्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज तो श्रीलंका के 3 दिन सरकारी दौरे ते होणगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस संसद मैंबर राहुल गांधी ने 2019 के मानहानि मामले विच जारी किया गया समन रद्द करने तो इनकार किया। अज अंतरराष्ट्रीय साखरता दिवस है। सिक्ख्या मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साखरता ज्ञान मौकों ते बेहतर भविख का राह खोलती है। भारतीय जूनियर हाकी टीम ने एशिया कप

0: धन वापस लेने से इनकार कर दिया है। आईएमडी ने बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आज अहमदाबाद में भारत ने 2026 आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के दो तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी लागत 35,000 करोड़ रूपये से ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने माल लाने ले जाने वाली मखसूस मगरबी राहदारी के 3 अहम हिस्सों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू सनंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव और न्यू GNPT से मालबरदार रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई पैसेंजर ट्रेन का भी आगाज किया। ये ट्रेन अलीराजपुर के दूरदराज के कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। वज़ीर आज़म मोदी ने एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स शोबे को तेजी से तब्दील करने की बात भी उजागर की। उन्होंने मालबरदारी की मखसूस राहदारियों की तकमील के लिए कहा, जिनकी तवालत 2,800 किलोमीटर से ज्यादा है, जो 21वीं सदी के भारत की एक तारीखी हुसूलियाबी है और मुल्क के कामकाज के बदलते हुए कल्चर का एक सबूत है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न दिल्ली के फ्रीक्वेंट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: वज़ीर आज़म ने इशारा दिया कि अगरचे इस प्रोजेक्ट का तसव्वुर 2006 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर कई साल तक कार्रवाई न हो सकी। इसके बरक्स पिछली दहाई में इस पर तेजी से काम शुरू हुआ और इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स के कौमी इको निज़ाम में पूरी तरह तब्दीली आ गई। आज ये मालबरदारी की राहदारी तेजी से तरक्की करते हुए भारत के लिए अशद जरूरी हो गई है। बाद में वज़ीर आज़म नवसारी का दौरा करेंगे और वहां बीजेपी के नए एआई से लैस हाईटेक दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। मुंबई में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुअस्सर सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंसेस में होता है। 4 रोजा ये फेस्ट 11 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का ये 7वां एडिशन है, जो आज मुंबई में शुरू हो रहा है। इस फेस्ट का आगाज 2020 में किया गया था। GFF कायदाना प्लेटफॉर्म का एक बैन अलावी तस्वुर बनकर उभरा है, जहां पॉलिसी साज, जाब्तकार, मरकजी बैंकों से वाबस्ता शख्सियतें, माली इदारे, फिनटेक टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनियों से वाबस्ता शख्सियतें, सरमायाकार तालीमी इदारों से वाबस्ता शख्सियतें और दीगर आलमी मुतालिका फरीकैन मुस्तकबिल की मालियात को शक्ल देने के लिए यकजा होते हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी को जारी किए गए समन को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया है। ये समन 2019 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की रायजनी पर हतक-ए-इज्जत के एक केस में जारी किया गया था। जस्टिस NR बोरकर की इन्फिरादी बेंच ने जनाब गांधी की यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें मैजिस्ट्रेट की एक अदालत के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू की गई थी। हाईकोर्ट ने अलबत्ता मैजिस्ट्रेट की अदालत में इस समाअत को 6 हफ्ते तक मुलतवी करने की 2021 की हिदायत को बरकरार रखा। इस तरह जनाब गांधी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मोहलत मिल गई है। इस केस का ताल्लुक राफेल सौदे के बारे में जनाब गांधी की 2018 की रायजनी पर एक हतक-ए-इज्जत की शिकायत से है। उनके वकीलों ने इसे एक बेजा शिकायत करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मशहूर गुलूकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका के 100वें यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डॉ हजारिका की आवाज ने आसाम और शिमाल मशरक की रूह को पूरे मुल्क तक पहुंचाया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मशहूर गुलूकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका को उनके यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। दिफाई साजो सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के

0: ये 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। आज खानगी का बैनुल अक्वामी दिन है। ये दिन अफराद, बिरादरियों और मुआशरों के लिए खानगी की अहमियत की याद दहानी कराने के लिए हर साल 8 सितम्बर को मनाया जाता है। इस साल खानगी के बैनुल अक्वामी दिन का मौजू है अवाम के लिए खानगी, कुर्राए अर्ज और खुशहाली। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 1966 में अपने आम इजलास के दौरान यूनेस्को ने बैनुल अक्वामी यौम खानगी का आगाज किया था। ये दिन तेजी से बदलती हुई दुनिया में खानगी में इजाफा, मौजूदा और उभरते हुए चैलेंजों की गहरी समझ और मुस्तकबिल के एजेंडों का जायजा लेने का मौका फराहम करता है। बैनुल अक्वामी यौम खानगी 2026 मनाने के लिए यूनेस्को मैक्सिको की हुकूमत के साथ मिलकर मैक्सिको में अवाम के लिए खानगी, कुर्रा अर्ज और खुशहाल के मौजू पर एक आलमी तकरीब का इनेकाद कर रही है। इस प्रोग्राम में यूनेस्को बैनुल अक्वामी खानगी इनामात भी पेश किए जाएंगे। 2015 से खानगी में इजाफा, पायदार तरक्की और अमन कायम करने में इसके तआवुन का जायजा लेना आलमी इजलास का अहम मकसद है। पीएस विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के माहिरीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बलोच शहरी इमरान अली की ताकत के बल पर मुबैना गुमशुदगी और गैर कानूनी हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस हलाकत के वाक़े की आजाद, मुनसिफाना और गहरी तहकीकात करे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 दिन के दौरान भारत के शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में आज इसी तरह का मौसम रहेगा। उधर अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, ओडिशा, मगरबी बंगाल के हिमालयाई इलाके, सिक्किम और तेलंगाना में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं चलने के इम्कान हैं। आज अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में भारत ने सोने के 2 तमगे जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय संधी ने मर्दों के पैरा रिकर्व डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में अपना लगातार 3रा टाइटल जीता। इधर खवातीन के पैरा रिकर्व डबल्स में पूजा और भावना को चांदी का तमगा मिला। वो फाइनल में चीन की खिलाड़ियों से 6-0 से हार गईं। कंपाउंड डिवीजन में तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने इराक के खिलाड़ियों को 139 के मुकाबले 152 पॉइंट से हराकर मर्दों का डबल्स का टाइटल हासिल किया। हॉकी में भारत की मर्दों की जूनियर टीम आज चीन के शहर मोकी में एशिया कप सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब है। उसने जनूबी कोरिया को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2800 किलोमीटर के बारबर्दारी के लिए मखसूस कॉरिडोर की तकमील को 21वीं सदी के भारत के लिए एक तारीखी हुसूलयाबी बताया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में आलमी फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का इफ्तिताह करेंगे और खिताब करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान के ताल्लुक से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर 2019 के एक हतके इज्जत मामले में समन वापस लेने से इनकार कर दिया है। IMD ने बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आज अहमदाबाद में भारत ने 2026 आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के 2 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat. Says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest, GFF 2026, in Mumbai this evening. Bombay High Court refuses to quash summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in 2019 deficit.

0: और देश के उत्तर पूर्व हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न दिल्ली के फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: मुंबई फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। JFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। JFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। JFF ने इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का

0: amazon.aiar.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। यह मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 के टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
2: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया

0: और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
1: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहा सुनी हुई शोर शराबे के ऊपर, उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
3: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडे ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार 3री बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद

0: सांसद राहुल गांधी के टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आदाब सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी दोस्त और लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर का प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। और हाजिर हूं हर बार की तरह आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार को लेकर। जी हाँ, कहते हैं ना कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो हर भाषा, हर एहसास और हर दौर की आवाज बन जाती है। कभी शौक अदाओं की आवाज, तो कभी दर्द में डूबी हुई आवाज, कभी मोहब्बत की शरारत, तो कभी जिंदगी को खुलकर जीने का एहसास। जी हाँ, आज हम आपके इस कार्यक्रम में उस महान गायिका की आवाज को दस्तक दे रहे हैं जिनकी आवाज के बॉलीवुड के संगीत को अपने कई रंगों में रंग दिया था और जिनका नाम हमेशा हमारे जुबां पर रहता है, जिनका आज जन्म दिवस भी है। जी हाँ, तो हमारा इशारा हमारे सुनने वाले श्रोताओं तक तो पहुंच ही गया होगा। जी रहना है तो कुछ तो आपको कहना है, जल्दी से फोन उठाएं सही जवाब के साथ। जो हमें सबसे पहले जवाब देगा वो हमारे इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा। और हमें मैसेज करने के लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, iprediodelhi@gmail.com iprediodelhi@gmail.com। और आज जिस गायिका की हम बात कर रहे हैं उन्हीं की आवाज का एक खूबसूरत नगमा हम सुनाने जा रहे हैं, तो जल्दी से गेस कीजिए और फटाफट सबसे पहले जो भेजेगा, समझ गए ना, तो जल्दी भेजिएगा।

जी हाँ, हमने भी आपका इम्तिहान ले ही लिया और बहुत सारे मैसेज हमें आए और सही जवाब जिसने सभी ने दिया है वैसे तो, लेकिन सबसे पहले जिसने जवाब हमें सही दिया है वो है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार हुडी, प्रमोद कुमार हुडी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। वैसे तो हमारे सभी श्रोता फेवरेट हैं, ये तो एक बहाना है आपसे जुड़ने का और आपसे कुछ तो करवाना है। जी हाँ, सही जवाब है आशा भोसले जी। और हमें इसी तरीके से अनीता जी ने भी मैसेज किया है और बताया है कि आशा जी हैं, और हीरामणि जी ने भी बताया हमें छत्तीसगढ़ से, और ताज मोहम्मद जी ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी ने जो बताया सबका जवाब एकदम सही है। और हम आज बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की, जिनका जन्म आज ही के दिन 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक मराठी परिवार में हुआ। प्रसिद्ध गायक पिता दीनानाथ मंगेशकर से उन्होंने और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी ने बचपन से ही अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली। आशा जी 9 वर्ष की ही थी जब पिता का स्वर्गवास हो गया। परिवार की आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने और उनकी बहन लता जी ने गाना और फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया, जिसके कारण वो पुणे से मुंबई आ गई। लेकिन दोस्तों, आशा जी का फिल्मी सफर शुरू से ही ग्लैमरस नहीं था। उस दौर में कुछ चुनिंदा आवाजों का ही दबदबा था, और कहते हैं ना कि कभी कभी चीजें होती हैं वो कही जाती हैं कि भाई हम ही करेंगे, तो वो दौर था और उस दौर में कुछ चुनिंदा आवाज ही थी जो गाई जाती थी। लेकिन आशा जी ने हार नहीं मानी, उन्होंने हर तरह के गाने गाए, गजल हुई, भजन हुए, कव्वाली हुई, रोमांटिक क्लासिकल कंपोजिशन, फिर क्या था, धीरे धीरे इतनी वर्सेटाइल, कहते ना एक आवाज होती है जिसमें खूबसूरती होती है, हर तरह की अदाकारी होती है, उनकी ताकत बन गई। शायद यही वजह है कि आशा जी को किसी भी जोनर में बांधना नामुमकिन था। उन्होंने 14 से ज्यादा भाषाओं में भी गीत गाए हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई कुछ इस तरह, और चुरा लिया सभी का दिल।

बिल्कुल दिल चुरा लिया इस गाने ने सभी का। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो श्रोता है ना वो पक्का पक्का अपने घर बैठकर मस्त गाने सुनकर खुश हो रहे होंगे और उनको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा। और आपने जब हमें मैसेज भेजते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों एक समय था जब प्रसिद्ध गायिकाओं का दौर था, वहां आशा जी का गाने का मौका नहीं मिल पाता था। उनके करियर को बनाने में ओपी नैयर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ओपी नैयर और आशा जी की जोड़ी ने हिंदी फिल्म जगत में एक ऐसी एनर्जी पैदा कर दी कि आशा जी की प्लेबैक क्वालिटी और नैयर साहब की कॉम्पोजिशन में रिदम और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का तालमेल बेहद शानदार रहा इस खूबसूरत नगमे के जैसे।

जी हाँ, ये गाना हम सुनते हैं तो हमेशा लगता है ना कि हमारा अभी अभी का ये गाना है। कितनी खूबसूरत आवाज, मीठी आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। और ये एक फिल्म है नया दौर, लेकिन ऐसा लगता है ना कि अभी का दौर है, क्योंकि ये ऐसे गाने हैं जो हमेशा दिलों में छा जाते हैं। जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना लाइव रेडियो कार्यक्रम एक ही कलाकार आज रैना तंवर के साथ। श्रोताओं, आज आशा भोसले जी के करियर की अगर हम बात करें तो एक और बेहद खास अध्याय शुरू हुआ जब आर डी बर्मन साहब यानी हमारे अरे पंचम दा के साथ जब इनकी जर्नी शुरू हुई। पंचम दा के साथ आशा जी की जो म्यूजिकल केमिस्ट्री थी वो हिंदी फिल्म संगीत का एक नया मॉडर्न स्टैंड एक साबित हो गया। उनके सॉन्ग्स में जैज, वेस्टर्न, इंडियन क्लासिकल और कंटेम्परेरी का खूबसूरत मिलन देखने और सुनने को मिलता था। निजी जीवन की अगर हम बात करें तो हर तरफ से उनकी लाइफ, कहते हैं ना, सबकी परफेक्ट नहीं होती, तो ऐसा उनके साथ भी हुआ। 16 वर्ष की उम्र में गणपतराव भोसले के साथ उनका विवाह हुआ था मगर वो विफल रहा। और पंचम दा से मिलने के बाद दोनों की जो प्रोफेशनल जुगलबंदी थी ना, उसके साथ साथ निजी जुगलबंदी भी खूबसूरत हो गई। तो 1980 में दोनों ने विवाह किया, लेकिन आज हम उनके रिश्ते से ज्यादा बात करेंगे उनके संगीत की, जिसने जनरेशन को डांस फ्लोर पर लाकर खड़ा कर दिया।

वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

जी हाँ, क्या एनर्जी थी इस गाने में। और यही आशा जी की खासियत थी कि वो हर सुर में इस तरह की जान डाल देती थी, एक एटीट्यूड डाल देती थी कि वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाता था। क्या आप जानते हैं कि आशा जी एक अच्छी मिमिक्री अदाकारी भी थी, और कहा जाता है कि कुकिंग उनका पसंदीदा शौक रहा है। एक बार एक द टाइम्स ऑफ इंडिया के साक्षात्कार ने पूछा कि अगर आप गायिका ना होती तो क्या करती। आशा जी ने जवाब दिया कि मैं एक अच्छी रसोईया बनती, बॉलीवुड के सारे लोग उनके हाथों से बना कढ़ाई गोश्त और बिरयानी कहते हैं ना, बेहद पसंद करते हैं। और इसके चलते वो कई रेस्टोरेंट की संचालिका भी रही। और कुछ लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल की ही गायिका हैं ये, लेकिन थी रही, मगर ऐसा नहीं है। गजल और बहुत सारे कव्वाली गजल जो है उनकी नजाकत भरे गीतों का को गाकर उन्होंने ये बात भी झूठी साबित कर दी कि वो सिर्फ वेस्टर्न ही गा सकती हैं। उमराव जान की जो ये गजल है एक छोटा सा उनकी आवाज का एक उदाहरण है कि देखिए कितनी खूबसूरत आवाज है, और हर तरह की आवाज, हर तरह के नगमे ये गा सकती हैं।

जी हाँ आशा जी की हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे मैसेज हमें आए हैं। गुरमीत सिंह जी का मैसेज हमें आया है और उसी तरीके से धर्मेंद्र छिप्पा जी का मैसेज आया भोपालगढ़ राजस्थान से, कपिल, ईशान पूजा और तुलसी मस्कीन जी का, होस्ट रैना दवर जी, आशा भोसले जी हैं ये और आप प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम देवांगन जी का जवाब भी आया, भवूर बसना राधेश्याम जी, और इसी तरह मसूर हसन जी, अनिल मोहन जी ने शानदार प्रस्तुति के लिए आप बधाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, उषा और टिल्लू मधु जी, धर्मेंद्र छिप्पा जी का हमें मैसेज आया है उसी तरीके से, मस्कीन दादा और उन्होंने लिखा है कि मस्कीन जी ने लिखा है कि नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी, और गाने उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। प्रकाश वर्मा जी का मैसेज आया है, गुरमीत सिंह जी का आया है, असलम खान जी का आया है, धर्मेंद्र छिप्पा, संजय ढींगिया जी का, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए। और आज कहते हैं ना कि हमारे बीच वो नहीं रही लेकिन उनके गीत किसी न किसी का प्यार, किसी के कॉलेज के दिन, दोस्तों के साथ बिताए शान और रेडियो की आवाज बनकर हमेशा दिलों में उतर जाते हैं। जाते जाते बस यही कहूंगी कि खुश रहें, कुछ करें ऐसा जो दिल को दे सुकून और दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट। एक अच्छा नागरिक बने मगर उससे पहले एक अच्छा इंसान बने। सुनते रहे आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। तो सुनना ना भूले आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, और मुझे यानी रैना तंवर को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और एक अच्छे नागरिक बनिएगा और दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद कीजिएगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप असलम बेग से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने 2800 किलोमीटर के बारबरदारी के लिए मखसूस कॉरिडोर की तकमील को 21वीं सदी के भारत के लिए एक तारीखी हसूलिया भी बताया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में आलमी फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का इफ्तिताह करेंगे और खिताब करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के माहिरीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में मुबैना गुमशुदगी और गैर कानूनी हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और आज अहमदाबाद में भारत ने 2026 आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के दो तमगे जीते हैं। मुंबई में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मौसर सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंसेज में होता है। 4 रोजा यह फेस्ट 11 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का यह 7वां एडिशन है जो आज मुंबई में शुरू हो रहा है। इस फेस्टिवल का आगाज 2020 में किया गया था। GFF कायदाना प्लेटफॉर्म का एक बैन अलावामी तस्वर बनकर उभरा है, जहां पॉलिसी साज, जाब्ताकार, मरकजी बैंकों से वाबस्ता शख्सियतें, माली इदारे, फिनटेक टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनियों से वाबस्ता शख्सियतें, सरमायाकार, तालीमी इदारों से वाबस्ता शख्सियतें और दीगर आलमी मुतालिका फरीकें मुस्तकबिल की मालियात को शक्ल देने के लिए यकजा होते हैं। GFF 2026 का मौजू इम्कानात से असरात तक आलमी निजाम की शमूलियत के लिए एजेंटिक AI टोकन का निजाम क्वांटम काबिले भरोसा मरबूत आलमी निजाम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिनकी लागत 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर आजम ने माल लाने ले जाने वाली मखसूस मगरबी राहदारी के 3 अहम हिस्सों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने न्यू सनंद, न्यू मकरपुरा, न्यू अंबरगांव और न्यू GNPT से मालबरदार रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई पैसेंजर ट्रेन का भी आगाज किया। ये ट्रेन अलीराजपुर के दूरदराज के कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। वजीर आजम मोदी ने एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स शोबे को तेजी से तब्दील करने की बात भी उजागर की। उन्होंने मालबरदारी की मखसूस राहदारियों की तकमील के लिए कहा, जिनकी तवालत 2800 किलोमीटर से ज्यादा है, जो 21वीं सदी के भारत की एक तारीखी हसूलियाबी है और मुल्क के कामकाज के बदलते हुए कल्चर का एक सबूत है। वजीर आजम ने इशारा दिया कि अगरचे इस प्रोजेक्ट का तस्वुर 2006 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर कई साल तक कार्रवाई न हो सकी। इसके बरक्स पिछली दहाई में इस पर तेजी से काम शुरू हुआ और इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स के कौमी इको निजाम में पूरी तरह तब्दीली आ गई। आज ये मालबरदारी की राहदारी से तेजी तरक्की से करते हुए भारत के लिए अशद जरूरी हो गई है। बाद में वजीर आजम नवसारी का दौरा करेंगे और वहां BJP के नए AI से लेस हाईटेक दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी को जारी किए गए समन को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया है। यह समन 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की राजधानी पर हत्या के जब्त के केस में जारी किया गया है। जस्टिस NR बोरकर की इंफरादी बेंच ने जनाब गांधी की यह दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें मैजिस्ट्रेट की एक अदालत के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू की गई थी। हाईकोर्ट ने अलबत्ता मैजिस्ट्रेट की अदालत में इस समाअत को 6 हफ्ते तक मुलतवी करने की 2021 की हिदायत को बरकरार रखा। इस तरह जनाब गांधी को सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की मोहलत मिल गई है। इस केस का ताल्लुक रफाल सौदे के बारे में जनाब गांधी की 2018 की राजधानी पर एक हत्या के जब्त की शिकायत से है। उनके वकीलों ने इसे एक बेजा शिकायत करार दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मफाद आम्मा की दरखास्त पर फौरी समाप्त करने से इनकार

0: कर दिया। इस दरखास्त में दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत सभी कॉलेजों में हॉस्टल सहूलियात फराहम करने के लिए कहा गया है। अदालत ने पूछा है कि आया यह हिदायत आरजी तौर पर जारी की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि यह दरखास्त कल उन दरखास्तों में शामिल कर ली जाए जिन पर खुद बखुद समाप्त की जाएगी। वजीर दफा राजनाथ सिंह आज से श्रीलंका के 3 दिन के सरकारी दौरे पर रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि देरीना शराकतदारी नीज गहरे तारीखी और तहजीबी ताल्लुकात के अलावा श्रीलंका पड़ोस पहले और महासागर पहल के तहत भारत के अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि वह श्रीलंका की क्यादत के साथ नतीजा खेज बातचीत के मुंतजर हैं। वजीर दिफा अपने दौरे में श्रीलंका में भारतीय बिरादरी के लोगों से भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मशहूर गुलकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉ भूपेन्द्र हजारिका के 100वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जहां मोदी ने कहा कि डॉ हजारिका की आवाज ने आसाम और शिमाल मशरक की रूह को पूरे मुल्क तक पहुंचाया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मशहूर गुलकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुलबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेवियर बेटल ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की कोशिश की ये कहते हुए हिमायत की है कि आलमी इदारे में इस्लाहात की जानी चाहिए ताकि मौजूदा आलमी निजाम के हकायक की अक्कासी हो सके। एक खबरसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में जनाब बेटल ने कहा कि भारत के वसीओ अरीज होने और इसकी आलमी अहमियत के मद्देनजर तौसी शुदा सलामती काउंसिल में इसका शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने भारत और ब्राजील का हवाला देते हुए कहा कि यूएन सलामती काउंसिल में उन बड़े मुल्कों को शामिल करके तौसी की जाती है जिनका सरदस्त कोई मुस्तकिल रोल नहीं है। अक़्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के माहिरीन ने पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे में बलोच शहरी इमरान अली की ताकत के बल पर मुबैना गुमशुदगी और गैर कानूनी हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस हलाकत के वाकई की आजादाना मुनसिफाना और गहरी तहकीकात करे। अली को पिछले साल अगस्त में सिक्योरिटी एहलकार मुबैना तौर पर अपने साथ ले गए थे और एक साल के बाद भी उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली थी। पाकिस्तानी हुकाम ने बाद में बताया कि मई 2026 में एक मुबैना एनकाउंटर में वो हलाक हो गए थे। माहरीन ने दीगर नामालूम लाशों की रिपोर्टों पर भी तशवीश का इजहार किया है और बलूचिस्तान में ताकत के बल पर गुमशुदगियों का टॉर्चर और गैर कानूनी हलाकतों के बारे में खबरदार किया है। 28 अरब कैनेडियन डॉलर्स की कीमत की अमरीकी अशिया पर कनाडा के जवाबी टैरिफ आज से लागू हो जाएंगे और उन पर 50% तक ड्यूटी लगाई जाएगी। स्टील फर्नीचर और कपड़े जैसी अशिया इन टैरिफ से मुतासिर होंगी जबकि कनाडा की समुद्री गजा से मुतालिक सनक के दबाव की वजह से ताजा मछली और झींगे को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। आज खानगी का बैन अलावामी दिन है। यह दिन अफराद बिरादरियों और माशरों के लिए खानदगी की अहमियत की याद दहानी कराने के लिए हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल खानदगी के बैन अलावामी दिन का मौजू है अवाम के लिए खानदगी कुर्रे अर्ज और खुशहाली। 1966 में अपने आम इजलास के दौरान यूनेस्को ने बैन अलावामी यौम खानदगी का आगाज किया था। यह दिन तेजी से बदलती हुई दुनिया में खानदगी में इजाफा मौजूदा और उभरते हुए चैलेंजों की गहरी समझ और मुस्तकबिल के एजेंडों का जायजा लेने का मौका फराहम करता है। बैन अलावामी यौम खानदगी 2026 मनाने के लिए यूनेस्को मैक्सिको की हुकूमत के साथ मिलकर मैक्सिको में अवाम के लिए खानदगी कुर्रे अर्ज और खुशहाली के मौजू पर एक आलमी तकरीब का इनेकाद कर रही है। आज अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में भारत ने सोने के 2 तमगे जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय सुंदी ने मर्दों के पैरा रिकर्व डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में अपना लगातार तीसरा टाइटल जीता। इधर खवातीन के पैरा रिकर्व डबल्स में पूजा और भावना को चांदी का तमगा मिला, वो फाइनल में चीन की खिलाड़ियों से 6-0 से हार गई। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में आलमी फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का इफ्तिताह करेंगे और खिताब करेंगे। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के माहिरीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में मुबैना गुमशुदगी और गैरकानूनी हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज अहमदाबाद में भारत ने 2026 आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के 2 तमगे जीते। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं आशा भोसले की आवाज में, जिनका आज यौम पैदाइश है। आशा भोसले 8 सितम्बर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में पैदा हुई। 10 साल की उम्र से ही आपने अपने फन का जादू जगाना शुरू कर दिया था। बहुत छोटी उम्र में एक तरसकार है तो गाने का शौक तो उनको विरासत में मिला था, क्योंकि वालिद भी एक मौसीकार थे, पंडित दीनानाथ मंगेशकर। फिर उनकी शादी जनप्रसाद भोसले से हो गई तो उन्होंने अपने नाम के साथ भोसले लगा लिया, जो आखिर वक्त तक उनके नाम का हिस्सा रहा। आज के प्रोग्राम में हम आपको उन्हीं के गाए चंद फिल्म नगमे सुनवा रहे हैं।

0: इसका भी आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेशे खिदमत प्रोग्राम अदब नुमा।
1: सामीन की खिदमत में आदाब अर्ज है। अदब नुमा का एक और शुमारा लेकर सामीन हम हाजिर खिदमत हैं, जिसमें आप सुनते हैं कलाम शायर के तहत किसी शायर का ख्याल या उसका कलाम, और साथ ही साथ हम आपको एक कहानी भी सुनवाते हैं अफसाने की शक्ल में। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम शायरी से करते हैं और आपको कुछ खूबसूरत गजलें और नज्में सुनवाते हैं। समीर, हमारी आज की जो शायरा हैं वह हैं डॉक्टर जोया जैदी। तो जोया जैदी से हम सुनेंगे उनके अशार, और हम उनको बुलाते हुए या उनका तारुफ कराते हुए सिर्फ यही कहेंगे, किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी गए दिनों में।

0: तो हम आने वाली नस्ल को दस्तकारी सिखा देंगे। उनमें से एक शख्स ने शुबा जाहिर किया, कहीं ऐसा ना हो सिंबाद के पास दवा का जखीरा महदूद हो, जो पहले जाएगा पाएगा। ये सुनते ही सारे लोग सिंबाद के जहाज की तरफ दौड़ पड़े। बस्ती में यह खबर आग की तरह फैल गई। बस्ती का हर शख्स अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए सिंबाद की तरफ भागे जा रहा था। एक दूसरे को धकेलते हुए कुचलते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। किसी का बूढ़ा बाप गिर जाए तो जवान बेटे को इतनी फुर्सत नहीं कि वह अपने बाप को सहारा दे दे। मां की गोदों से बच्चे छूट कर गिरते रहे, लेकिन उन्हें इतना होश नहीं कि उनकी तरफ मुड़कर भी देखे। सिंबाद खुशी खुशी बस्ती वालों के कटे हुए हाथ लेकर उनके एवज में उन्हें एक डिब्बा देने लगा। यह बड़ा तिलिस्माती डिब्बा है, इसमें ऐसे अजीब और गरीब नजारे दिखाई देंगे कि तुम जागते रहोगे। सिंबाद सबको तरकीब इस्तेमाल समझाता रहा। देखते ही देखते सिंबाद के पास बस्ती वालों के कटे हुए हाथों का अंबार लग गया। सिंबाद अपनी इस तिजारत से बहुत खुश दिखाई दे रहा था। जिंदगी में पहली बार उसको बगैर किसी मेहनत तो मशक्कत की इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी। बस्ती वाले भी मुतमईन हो गए, चलो हाथ गए तो क्या, हम जिंदा तो रहेंगे। सिंबाद खुशी से झूम रहा था और सौदागरी के फन में अपनी मशाकी पर नाजा था। बेशक मैं दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर हूं। एक अरसा बीत गया। बस्ती के लोग उस डिब्बे के नजारों से ऊबने लगे। अब उन नजारों में इतनी कशिश बाकी नहीं रही कि उन्हें जागते रहने पर मजबूर होना पड़े। उन पर नींद का गलबा तारी होने लगा। बस्ती के बहुत से लोग गहरी नींद सोने लगे। बस्ती में फिर बेचैनी बढ़ने लगी। लोगों ने सिंबाद की तलाश शुरू कर दी। मुमकिन है कि उसके पास कोई और दवा हो जो हमें मजीद जगाए रखे। सिंबाद बस्ती के बाहर अपने जहाज में उन लोगों का मुंतजिर था। उसे यकीन था कि कुछ अरसे बाद उन लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी। लोगों को अपनी तरफ आता देख कर सिंबाद ने कहा, मैं तुम लोगों का दर्द समझता हूँ, आओ। मेरे पास पहले से भी ज्यादा कारगर एक और चीज है जो तुम्हें मजीद जगाए रख सकती है। ये मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है। इसके अवज तुम मुझे अपनी आंखें दे दो। और लोग खुशी खुशी अपनी आंखें सिंबाद को पेश करने लगे और सिंबाद उन लोगों के कानों में आला लगाकर उन्हें रुखसत करने लगा। लोग कटे हुए हाथ और बगैर आंखों के जिस्म लिए आले की मशहूर कुन मौसीकी में झूम झूम कर बस्ती की गलियों में घूमने लगे। आंखें नहीं तो क्या, हम जिंदा तो हैं। सिंबाद की तजारती मुहिम अभी खत्म नहीं हुई थी। उसको बस्ती वालों का फिर इंतजार था। उसे यकीन था कि बस्ती वालों को फिर एक बार उसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर यही हुआ कि कुछ अरसे बाद बगैर हाथों और बगैर आंखों के लोग सिंबाद की तरफ एक बार फिर उमड़ पड़े। सबकी जबान पर इल्तिजा थी, ऐ सिंबाद हमारे मसीहा, हमें इस बीमारी से छुटकारा दिला कि हमें फिर नींद सताने लगी है और हम अभी मरना नहीं चाहते। सिंबाद के होंठों पर फातिहा ना मुस्कुराहट थी। तो फिक्र न करो, अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसको पाकर नींद कभी तुम्हारे पास तक भी नहीं आएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए नींद के खौफ से आजाद हो जाओगे। सबने एक जुबान होकर कहा, हाँ सिंबाद, हम भी यही चाहते हैं कि हम नींद के खौफ से हमेशा के लिए आजाद हो जाएं, क्योंकि हम अभी जीना चाहते हैं और नींद हमें मौत की आगोश में सुला देगी। हम जिंदा रहे तो अपने आने वाली नस्लों को अपने फन से रूशनास कराएंगे और हमारी बस्ती एक बार फिर दस्तकारों पर नाश करेगी। सिंबाद कुछ देर तक खामोश रहा। सबने मिलकर फिर उससे एक बार कहा, सिंबाद क्या बात है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हम तुम्हारी हर शर्त पूरी करने को तैयार हैं। हम जीना चाहते हैं, इसके आवाज मांगो, हम तुम्हें हर चीज देने को तैयार हैं। सिंबाद ने अपनी खामोशी तोड़ी और बेनियाजाना अंदाज में कहा, मैंने बड़ी जाफिशानी से तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज तैयार की है कि जिसको पाकर तुम हमेशा ही जागते रहोगे। इसके बदले में तुम सब मुझे अपनी शर्मगाहें दे दो। अपने जागते रहने की यह कीमत सुनकर सभी पर सत्ताताई हो गया। हर तरफ खामोशी छा गई, गहरा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें मुस्तकबिल दफन हो जाते हैं, आने वाली नस्लों के गले रुंध जाते हैं और ख्वाबों के इर्तका पर नेस्त नाबूद की मोहरें लग जाती हैं। सिंबाद बहुत गौर से उन सब की तरफ देख रहा था, उनकी हरकत और सकनात का जायजा ले रहा था। उसने एक नजर अपने जहाज पर डाली, उसके कलपुर्जों का अच्छी तरह मुआयना किया, सब अपनी जगह ठीक थे। फिर मजमे में हलचल हुई, बस्ती के सभी मर्द और औरत भारी भारी कदमों से सिंबाद की तरफ बढ़ने लगे। सिंबाद का चेहरा खौफ और खुशी के मिले जुले जज्बात से तमतमा उठा। उसके चेहरे पर जिंदगी की आखिरी और सबसे अहम ख्वाहिश पूरी हो जाने की चमक पैदा हुई। उसको महसूस हुआ कि उसके जहाज की खुदकार मशीनों ने काम करना अचानक शुरू कर दिया। सिंबाद को अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसी तरह जब वो बच्चा था और अपनी जिंदगी के पहले सफर के दौरान अचानक समंदरी तूफान में घिर जाने पर उसने घबराहट महसूस की थी। बस्ती के लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो अपने जहाज की तरफ, और जहाज अपने अंदर दुनिया का सबसे अजीब खजाना भरे हुए गहरे समंदर की तरफ तेज रफ्तारी से चला जा रहा था।
1: सामीन, अभी आपने डॉक्टर गयासुर्रहमान सैयद से उनका अफसाना सुना सौदागर। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। कुछ इस अंदाज में ताना बाना बुना गया था कि वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। चलिए, अब वक्त हो गया है कि आपसे इजाजत ली जाए। आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत सी गजल के साथ। आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।

सामने आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदब नुमा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेशे खिदमत है फिल्मी नगमे। आज के प्रोग्राम में सामने

जुल्मी फिल्म का नाम आप सुन रहे थे, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में। आज के प्रोग्राम में सामिन हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की यौम पैदाइश के मौके पर उनके साथ कुछ दीगर गुलकारों के फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मनी कोल्हापुरी की आवाजों में। जमाने को दिखाना फिल्म का नगमा, नगमानिकार मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकार आर डी बर्मन।

शहजादों की बारात इस फिल्म के नाम आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मुस्तकार थे आर डी बर्मन। और सामने जब सुनी प्रोग्राम की अगली पेशकश वक्त फिल्म का नगमा आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार साहिर, मौसीकार रवि।

और सोनी जब सुनी तलत महमूद के साथ आशा भोसले की आवाज में सोने की चोरिया फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है ओपी नैयर ने।

साथी इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे आशा भोसले के यौम पैदाइश के मौके पर उनके साथ गाए दीगर गुलकारों के कुछ फिल्मी नगमे। प्रोग्राम खराज अकीदत था उर्दू सर्विस की जानिब से मारूफ गुलकार आशा भोसले के लिए। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं। अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप हमारी गली से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने 2800 किलोमीटर के बार बर्दारी के लिए मखसूस कॉरिडोर की तकमील को 21वीं सदी के भारत के लिए एक तारीखी हसूलिया भी बताया। लग्जमबर्ग ने अकवाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। अकवाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के माहिरीन ने पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे में मुबैना गुमशदगी और गैर कानूनी हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी अशिया पर कनाडा के जवाबी टैरिफ 50% तक की ड्यूटी के साथ लागू हो गए हैं। और आज अहमदाबाद में भारत ने 2026 आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिनकी लागत 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर आजम ने माल लाने ले जाने वाली मखसूस मगरबी राहदारी के 3 अहम हिस्सों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने न्यू सानान, न्यू मकरपुरा, न्यू अम्बरगांव और न्यू JNPT से माल बर्दारी रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई पैसेंजर ट्रेन का भी आगाज किया। यह ट्रेन अलीराजपुर के दूर दराज के कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। वजीर आजम मोदी ने एक बड़े इज्तम से खिताब करते हुए भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स शोबे को तेजी से तब्दील करने की बात भी उजागर की। उन्होंने माल बर्दारी की मखसूस राहदारियों की तकमील के लिए कहा, जिनकी तवालत 2,800 किलोमीटर से ज्यादा है, जो 21वीं सदी के भारत की एक तारीखी हसूलियाबी है और मुल्क के कामकाज के बदलते हुए कल्चर का एक सबूत है। वजीर आजम ने इशारा दिया कि अगरचे इस प्रोजेक्ट का तसव्वुर 2006 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर कई साल तक कार्रवाई न हो सकी। इसके बरक्स पिछली दहाई में इस पर तेजी से काम शुरू हुआ और इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स के कौमी इको निजाम में पूरी तरह तब्दीली आ गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खवातीन और अतफाल की तरक्की के वजीर अन्नपूर्णा देवी का एक मजमून शेयर किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह मजमून, जिसका मौजू मातृ वंदना योजना और पोषण माह है, आंगनवाड़ी के निजाम को एक अवामी तहरीक बनाने के पैगाम को उजागर करता है। वजीर आजम ने इस बात को भी उजागर किया कि यह मजमून फायदों की बराह रास्त मुंतकीली की अहमियत को भी उजागर करता है। लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेवियर बैटल ने अकवाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की कोशिश की यह कहते हुए हिमायत की है कि आलमी इदारे में इसलाहत की जानी चाहिए ताकि मौजूदा आलमी निजाम के हकायक की अक्कासी हो सके। एक खबर रसान एजेंसी के साथ इंटरव्यू में जनाब बैटल ने कहा कि भारत के वसी और ईजी होने और इसकी आलमी अहमियत के मद्देनजर तोसी शुदा सलामती काउंसिल में इसका शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने भारत और ब्राजील का हवाला देते हुए कहा कि यूएन सलामती काउंसिल में उन बड़े मुल्कों को शामिल करके तोसी की जा सकती है जिनका सरदस्त कोई मुस्तकिल रोल नहीं है। भारत ने इस सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग के मकसद से अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ बैन अक्वामी पहल में शामिल हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका के कॉमर्स के महकमे ने कहा है कि इस कोशिश का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि नए सिलसिले के नेटवर्क से मुश्तरक सिक्योरिटी मुफादात की अक्कासी हो, मुसाबकत मुस्तहकम हो और इख्तरा को बढ़ावा मिले। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी को जारी किए गए समन को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया है। यह समन 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की रायजनी पर हलके इज्जत के एक केस में जारी किया गया था। जस्टिस NR बोरकर की इन्फरादी बेंच ने जनाब गांधी की यह दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें मजिस्ट्रेट की एक अदालत के उस हुक्म का चैलेंज किया गया था जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मुफाद आमा की एक दरखास्त पर फौरी समाप्त करने से इनकार कर दिया। इस दरखास्त में दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत सभी कॉलेजों में हॉस्टल सहूलियात फराहम करने के लिए कहा गया है।
अदालत ने पूछा है कि आया यह हिदायत आरजी तौर पर जारी की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि यह दरखास्त कल उन दरखास्तों में शामिल कर ली जाए जिन पर खुद ब खुद समाप्त की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मशहूर गुलकार और आसाम कानून साज असम्बली के सबक मेंबर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100वें योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर हजारिका की आवाज ने आसाम और शुमाल मशरक की रूह को पूरे मुल्क तक पहुंचाया। आज खानदगी का बैन अवी दिन है। यह दिन अफराद बरादरियों और माशरों के लिए खानदगी की अहमियत की याद दहानी कराने के लिए हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल खानदगी के बैन अवी दिन का मौजू है अवाम के लिए खानदगी कुर्रज और खुशहाली। 1966 में अपने आम इजलास के दौरान यूनेस्को ने बैन अवी योम खानदगी का आगाज किया था। यह दिन तेजी से बदलती हुई दुनिया में खानदगी में इजाफा, मौजूदा और उभरते हुए चैलेंजों की गहरी समझ और मुस्तकबिल के एजेंडों का जायजा लेने का मौका फराहम करता है। बैन अवी योम खानदगी 2026 मनाने के लिए यूनेस्को मैक्सिको की हुकूमत के साथ मिलकर मैक्सिको में अवाम के लिए खानगी कुर्रज और खुशहाली के मौजू पर एक आलमी तकरीब का इनेकाद कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अकवाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के माहरीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बलोच शहरी इमरान अली की ताकत के बल पर मुबैया गुमशुदगी और गैर कानूनी हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। माहरीन ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस हलाकत के वाकई की आजाद मुनफाना और गहरी तहकीकात करे। अली को पिछले साल अगस्त में सिक्योरिटी एहलकार मुबैना तौर पर अपने साथ ले गए थे और एक साल के बाद भी उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली थी। पाकिस्तानी हुकाम ने बाद में बताया कि मई 2026 में एक मुबैना इनकाउंटर में वो हलाक हो गए। माहरीन ने दीगर नामालूम लाशों की रिपोर्टों पर भी तशवीश का इजहार किया है। 28 अरब कैनेडियन डॉलर्स की कीमत की अमरीकी अशिया पर कनाडा के जवाबी टैरिफ आज से लागू हो जाएंगे और उन पर 50% तक ड्यूटी लगाई जाएगी। स्टील, फर्नीचर और कपड़े जैसी अशिया इन टैरिफ से मुतासर होंगी, जबकि कनाडा की समुद्री गजा से मुतालिक सनत के दबाव की वजह से ताजा मछली और झींगे को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। पिछले महीने कनाडा और अमेरिका के दरमियान तिजारती बातचीत नाकाम होने के बाद यह इकदाम सामने आया है। सऊदी अरब पर हौसियों के हमले में आज 70

मैं नीरू दुआ आप सबनु राम राम जी करेंदी हां ते आप सब दे सामने एक सिराय की लोक कहानी पेश करेंदी पईयां जिसका नाम है सोने दे धागे। गहरे घाटे जंगल दे एक पासे एक जई छोटी जई सल्तनत है। जंगल दी बहुत सारी कहानियां उत्थां दे बाशिंदे सुना के चस गिंदे हन। सल्तनत दे लोग बहु खुश रहंदे हन। सल्तनत दा एक नौजवान बादशाह है। सल्तनत विच एक गरीब आदमी अपनी धी दे नाल रांदा है। ओ धी बहु ही हसीन ते खूबसूरत है। ओ शख्स बहु बातूनी है। आवन वंजन वाले लोगों को लंबे लंबे झूठे किस्से सुनेंदा है। हूं शख्स ने कई बारी लोगों को बेवकूफ बनाया। लोग हुंदी शिकायत बादशाह सलामत को करेंदे हन। हेकड़ी बादशाह ने हूं शख्स को सबक सिखावन किते अपने दरबार विच सड़वा गिंदा। बादशाह ने अपने गुलाम को पैगाम देके गरीब शख्स दे घर पठा। गुलाम शख्स को अपने नाल घिन के दरबार च आए। गरीब शख्स ने बादशाह को सलाम पेश करेंदे वे आखा के बादशाह सलामत आप मेरे बारे विच किवें जानदे है ते मेरा फर्ज है कि मैं आप दा शुक्रिया अदा करा ते आपको अपने ते अपनी बेटी बारे दसा। बादशाह ने आखा जरूर दसा। गरीब शख्स ने बहु ही नरम अल्फाज विच बोलना शुरू किया। मेडी एक बच्ची है ते ओ दुनिया दी सब तू हसीन बच्ची है ते ओ कख विचो सोना कड्डन दा हुनर भी जान दी है। बादशाह को ए गल बहु पसंद आई। बादशाह ने आखा जेकर तेडी धी इतनी हुनरमंद है ते वल हुकू मेडे नाल महल विच घिन के आ। मैं उन्दा इम्तिहान घिनना चांदा। गरीब शख्स ने बादशाह दा हुक्म कबूल चा कीता ते दरबार विच इम्तिहान वास्ते धी को घिन के आवंदा वैदा कीता। ओ शख्स परेशान हाल विच घर गया ते सारा माजरा धी को सुनाया। धी ने नाराज थींदे वे आख्या लाला जी मैं पहले भी

रात दा पिछला पैर अजे स्वेर नहीं सी बनया जदों ओ मंजे तो उठ बैठी। ओ रोज स्वखते इंजी उठती सी, अज ते उसदा सतवां नराता सी। जाली वाली अलमारी विच उसने संघाड़ियां दा आटा पोटली विच बन के रख्या होया सी। चुल्ले विच सुक्कियां पाथियां दे दो कु चिप्पर ला के उसने पांच छे आलू उबालने रख दिते। अज उसने मुंह नूं कणक नहीं सी लाउणी। उसनूं ख्याल आया कि आउंदी पलक नूं ओ इस तों वी सवखते उठेगी। कल अष्टमी है ते उसने कंजकां बिठाणियां ने। उसने सोचा कल सवेर सार ओ सुक्के छोले बनाएगी, सुक्के आलू तड़केगी। पूरियां वास्ते उसने ब्रीक आटा छाण के वखरा रख्या होया सी ते कड़ा वास्ते उसने डाढे लिहाज नाल मंगवाई हुई सूजी किन्ने दिनां तों अडोल तरी हुई सी। ओ जोत जगावेगी, कंजकां बुलावेगी, कंजकां दे पैर धोवेगी। ओ कंजकां नूं सिंदूर दे टिक्के लाएगी। ओ कंजकां नूं मौली दियां तंदां बन्नेगी। फिर पूरियां, कड़ा, छोले ते आलूआं नूं इक इक तासी विच परोस के ते नाल पैसा पैसा टका टका रख के ओ कंजकां कुआरियां नूं मत्था टेकेगी। बीर लौंकड़े ते कंजकां कुआरियां।

चाह दा पानी खोल पिया। उसने निक्की चाहदानी विच चाह दियां पत्तियां पाईयां, पानी दी तार बन के पाई। पानी चिट्टे तो लाल ते फिर काला हो गया। कच दी प्याली नूं उसने बड़ा संभाल के चुकिया। थाल विच चाह, दुध, खंड, प्याली सारा कुछ रख के वह मालती दे कमरे विच लै गई। पलंग उत्ते लम्मी पई हुई मालती दे कोल एक निक्की मेज उत्ते उसने थाली नूं अडोल तर दिता। वो इन्हां कच दियां चीजां तो बड़ा डरदी सी। व्रता को हुचका लग्यां टुट टुट पैंदियां सन। वह तां सारी उम्र कहें दे कटोरे विच लस्सी पींदी रही सी ते चाह वह हमेशा पित्तल दे गलास विच पींदी हुंदी सी। पिछले तीन चौं वरियां तों उस नूं अम्मा कहण वाले उस दे दराणी दे पुत्तर धीआं जवान हो पए सन, कॉलेजां विच पढ़न लग पए सन। हुण गलासां विच चाह नहीं सी पींदे। उन्होंने अम्मा नूं किन्ने दिन ला के दस्या सी कि चाह दा पानी वह चीनी दे ऐस भांडे विच पा के देव्या करे ते दुध ऐस भांडे विच। नाले उन्हां दस्या कि खंड वह अपनी मर्जी दी पा के ही पिया करनगे। जिन्ना चिर ओदे हथ विच सी वह सारियां बच्चियां नूं मलाई पा के दुध पिआउंदी रही सी ते हुण वह काली शाह जी भैड़ी जी चाह जिहो जी के वह गोहा थप्पण वाली कम्मो नूं मिट्टी दे कसोरे विच पा के दिंदी हुंदी सी पीण लग पै सन। पर ओदे भी की बस सी, वह तां अजे भी उन्हां नूं मलाई वाला दुध पिआउणा चाहुंदी सी। पर वह दसदे सन कि मझ दा मोटा दुध अकल नहीं आउण दिंदा, हुण पतली चाह पीणगे।

थुड़िए किस्मत थुड़िए तेनू एना प्यार दवा अपने हिस्से दी दुनिया मैं तेथू वार दिया। दोस्तो कथा लोग दे विच तुसी सुन रहे सी कहानी कंजक और इसनू लिखिया सी अमृता प्रीतम ने। दोस्तो इस कहानी तो बाद हुण सिलसिला शुरू हुंदा है नजराना दा जिदे विच तुसी अपनियां चिट्ठियां सानू लिख भेज दिओ ते तुहाडी चिट्ठियां ते प्यार भरे गीतां नू असी अपने इस प्रोग्राम च शामिल करदे हां। अज सानू एक खत भेजिआ सी, पहला खत जिला फतेहगढ़ साहब तों रामनाथ सुखमनजीत ते सहजप्रीत। ए सुनना चाहुंदे ने सुरेंद्र शिंदा दी आवाज दे विच इक गीत ते लओ फिर पेश है नजराना प्रोग्राम दा ए पहला गीत।

बल्ले नी पंजाब दी शेर बच्चीए। लो जी इस गीत तो बाद अगले गीत वाल असीं चलदे हां और उम्मीद करदे हां कि इस गीत ने साडियां धीआं भैणां साडी बच्चियां दे दिल दे विच इक जज्बा पैदा कीता होएगा। बल्ले नी पंजाब दी शेर बच्चीए, हजे तो बहुत कुछ करके विखाणा, मल्लां मारनियां ने अपना, अपने मुल्क दा, अपने पंजाब दा ते अपने माता पिता दा नां रोशन करना है। ਮੈਕੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾ ਬਜਾਜ, ਹੈਪੀ ਕਪੂਰ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

पैन उछलना मेरे दिल नू हंस के तेली उच्ची अजी दी पाके दुर्गा भी पाके दुर्गा भी पाके दुर्गा भी नचु पतला अखियां शराबी छोड़ी उते।

लो जी, इस शरारती दे गाने तो बाद अखीरली फरमाइश इस प्रोग्राम दी आदर्श नगर मलोट तो राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश मैंडी सौरव शर्मा इस सारे सुनना चाहते ने एक बड़ा प्यारा जा गीत जिन्हों सुनते ही थानू भी उस दूरदर्शन दी ते ऑल इंडिया रेडियो दे पुराने सालां दी याद आ जानी है जो तो असी बैठ के चित्रहा देखते हुंदे सी ते गाना आंदा सी ते असी किड्डे खुश हुंदे सी। ईरीए पंभीरीए तू दिता कर केड़ा अंबा वाली कोठड़ी अनारा वाला वेड़ा।

जी दोस्तों, इस दे नाल ही अज दा प्रोग्राम देश पंजाब इत्थे खत्म करन दी इजाजत दियो। उम्मीद करदे हां तुहानू प्रोग्राम पसंद आया होगा। जे आया है तां खत जरूर लिखियो प्रोग्राम देश पंजाब मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर। बाकी दे प्रोग्राम तुसी सुनोगे आकाशवाणी जलंधर तो नवी सभा दे विच नवे प्रोग्राम लैके कल सवेरे फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई रब राखा।

0: Hold this is Unnesi, the RT program. Akashwani di Jalandhar ke andar to bol rahe hain. Actually, Satwa Shwani, Abhishek Prayojit program, Kisan Bani.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज के सप्लाई चेन पर दबाव है, तेल को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए श्रेणी में कर दिया है। प्रधानमंत्री इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: भूमिका है किसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है। मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है, उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है। अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी था।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एआई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्म युगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को

0: मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंदी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशकालिक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान पेंशन से सुरक्षित उनका घर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। रजनीश, हम सब बेहद भाग्यशाली हैं जो भारत जैसे देश में रहते हैं। यहाँ की ऋतुएं, धरती, मौसम, संस्कृति अनेक रंगों में रंगी हुई है। हर मौसम के अनुसार हम सबको फल, फूल, साग सब्जियाँ, अन्न प्राप्त होते हैं। धरती हमारी माता है तो किसान भाई बहन अन्नदाता है।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। किसान वाणी कार्यक्रम में हम अपने अन्नदाताओं यानी कि किसान भाई बहनों के लिए नित नई जानकारी लेकर आते हैं ताकि उनका उत्पादन भी अच्छा हो, आमदनी भी दुगनी हो।
3: और रजनीश, जैसा कि तुमने कहा, आमदनी भी दुगनी हो, इसीलिए आज हम नकदी फसल कपास में समेकित कीट प्रबंधन पर अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे और चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पर।
4: और इसके साथ ही हम बताएंगे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव, कृषि सलाह देंगे और मौसम की जानकारी और साथ में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पर।
3: रजनीश, जैसा कि ये नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, ये भारत सरकार का एक ऐसा अभियान है जिसमें किसान भाई बहनों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाना तथा बाजार में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से उनकी आय की रक्षा करना है।
4: जी, और प्रतिमा, इस अभियान की शुरुआत सितंबर 2018 में हुई थी और इसमें मूल्य समर्थन योजना यानी कि PSS और मूल्य घाटा भुगतान योजना यानी कि PDPS और निजी खरीद जैसे तंत्र भी शामिल हैं।
3: बिल्कुल, और हमारे किसान भाई बहनों को खासकर दलहन, तिलहन और अन्य अधिसूचित कृषि उपज किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत किसानों को बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच आने वाली परिस्थितियों में राहत देने के लिए विभिन्न मूल्य समर्थन और मूल्य स्थिरीकरण उपायों का सहारा दिया जाता है।
4: और प्रतिमा, हम अपने किसान भाई बहनों को यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि किसी भी सरकारी खरीद या योजना का लाभ लेने के लिए अपनी फसल पंजीकरण, बैंक खाते और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित जानकारी समय पर अपडेट करते रहें।
3: बहुत महत्वपूर्ण बात कही रजनीश तुमने। तो किसान भाई बहनों, याद रखें कि यदि आय सुरक्षित होगी तभी खेती मजबूत होगी और देश की खाद्य एवं कृषि

0: व्यवस्था भी मजबूत होगी। तो ये अभियान बहुत ही जरूरी है हमारे किसान भाई बहनों के लिए रजनीश, तो हमारे किसान भाई बहन इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा, और देखिए कि जब हमें सही जानकारी होती है तभी हम उसका सही लाभ ले पाते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनूप कुमार, जो कि वैज्ञानिक है NCIPM दिल्ली में।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। कपास फसल की जब भी बात होती है तो इसे महत्वपूर्ण कहा जाता है, ये किसान भाइयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
2: जैसे कि आपने अभी शुरुआत में बताया, ये नकदी फसल है, यानी किसान को स्वयं तो प्रयोग नहीं करता लेकिन इसको सीधा बाजार में बेच के सीधा सीधा कैश प्राप्त करता है, इसलिए इसको नकदी फसल कहा जाता है। और विशेष रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं होती, वहां भी इसको अच्छे से उगाया जा सकता है। और खरीफ सीजन में धान के अलावा बात करें तो कपास से अच्छा उत्पादन मिल जाता है और एक एश्योर्ड रहती है फसल की भाई इसमें हमें कुछ न कुछ इनकम होगी। तो आय के संरक्षण की जैसे बात अगर करेंगे तो कपास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: ये तो थी हमारे किसानों के लिए महत्वपूर्ण। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें भी कपास का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो अर्थव्यवस्था में कैसे ये अपना सहयोग करती है?
2: वस्त्र तो सब लोग पहनते हैं
0: जी, बिल्कुल।
2: तो वस्त्र उद्योग कपास पर निर्भर है और हमारे यहाँ से कपास बहुत से देशों को निर्यात भी किया जाता है। तो जब निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो आर्थिकी मजबूत होती है। तो आर्थिकी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा, किसान भी मजबूत होगा।
0: तो डॉक्टर साहब अगर अच्छा उत्पादन लेना है किसान भाइयों के लिए, अपनी आय भी बढ़ानी है, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है, तो कपास की फसल लगाते वक्त किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: बीज का चयन महत्वपूर्ण है। बीज जो है रेस्टेड वेराइटी, जो भी प्रतिरोधी प्रजाति है, विशेष रूप से बीटी प्रजातियां लगाती है, बीटी हाइब्रिड, क्योंकि कीटों के प्रति विशेष रूप से बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधी होती है। और वायरस के प्रति बीज रेजिस्टेंट वेराइटी है उनका ही चयन करना है। दूसरी बात होती है कि समय से बुवाई, खासकर उत्तर क्षेत्र में अगर 15 मई के बाद बुवाई करते हैं तो समस्याएं बढ़ती हैं, खासकर सफेद मक्खी की, जिसकी वजह से बहुत हानि उठानी पड़ती है किसानों को।
0: तो डॉक्टर साहब इस समय जो कपास की स्थिति है खेतों में किस तरीके की है?
2: इस समय कपास में बॉल बन रहे हैं, फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन स्टेज है, इनकी पुष्पन अवस्था है और टिंडे बनने की अवस्था में है। तो इस समय बहुत सारी बातें हैं जो किसान को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय बहुत से कीट हैं जिनका आक्रमण होता है, उनके कीट के प्रबंधन की आवश्यकता है। तो इस पे किसानों को चाहिए कि अभी खेतों की लगातार निगरानी की आवश्यकता है और IPM को अपनाने की आवश्यकता है, समेत कीटनाशी जीव प्रबंधन को।
0: तो डॉक्टर साहब कपास फसल में कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं IPM, ये क्या है?
2: IPM जिसको हिंदी में कहते हैं समेकित नासी जीव प्रबंधन, अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ बात नासी जीव की बात आती है, नासी जीव जो नाश करे, इसमें कीट भी होते हैं, इसमें फंगस भी होती है, इसमें वायरस भी होते हैं, इसमें जीवाणु भी होते हैं, इसमें नेमाटोड भी होते हैं, इसमें खरपतवार भी होते हैं, लेकिन सबका प्रबंधन ये नासी जीव प्रबंधन होता है। कैसे करना होता है? इंटीग्रेटेड तरीके से, मतलब समेकित तरीका। ये क्या होता है कि इसमें एक चीज से कंट्रोल नहीं होता किसी भी नासी जीव का, तो यानी इसमें हमें संगठित होके नासी जीव का प्रबंधन है। संगठित किस चीज का करना है? सभी तकनीकों का, जैसे रेस्टेड वेराइटी भी लेनी है और बहुत सारी सस्य विधियां हैं कि दूरी सही हो, लाइन से लाइन की दूरी, अगर फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं खाद उसका संतुलित प्रयोग होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर हमें जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना है और बहुत से मित्र कीटों का इस्तेमाल करना है, उसके बाद अंत में जब कोई आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर कोई कीट पहुंच रहा है तब जाके हमें सुरक्षित रसायनों का प्रयोग करना, ये सबको मिला के जब करते हैं तब ये IPM होता है। और साथ में हमें इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, यानी कि सब लोग मिलके करते हैं, जब तकनीकों को संगठित करना है किसान का, वैज्ञानिकों के साथ भी संगठन होना जरूरी है। जब सब मिलके एक साथ जब वार करते हैं किसी दुश्मन पर तो दुश्मन सही से नियंत्रित होता है।
0: तो डॉक्टर साहब कपास में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी पहचान किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं?
2: जी, तो वर्तमान को अगर ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो कपास में उत्तर भारत में सफेद मक्खी जिसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं, एक तेला लगता है हरा तेला जिसे जैसेट बोलते हैं, इसको देखेंगे किसान तो ये तिरछा चलता है, और थ्रिप्स जिसे जू भी बोलते हैं पंजाब में, ये एक बड़ी समस्या होता है। और सबसे ऊपर एक बड़ी समस्या है पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी। ये बॉलवर्म, बॉल का मतलब टिंडा, वर्म का मतलब सुंडी।
0: एक माहू भी होता है डॉक्टर साहब,
2: माहू है ये खासकर महाराष्ट्र के क्षेत्र, इसमें ज्यादा होता है,
0: इसमें ज्यादा
2: यहाँ पे आता है, लेकिन अक्टूबर के लास्ट में आएगा, उतना नुकसान यहाँ पे माहू से नहीं होता है। इसमें संख्या की बात करें तो सैकड़ों में कीट होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण कीट की अगर बात करें जिसका किसानों को विशेष रूप से ध्यान देना, तो इसमें पिंक बल्ब, सफेद मक्खी और हरा तेला। सेंट्रल इंडिया में जाएंगे तो वहां पे जाके माहू को भी ध्यान देना, माहू का वहां पे अटैक थोड़ा शुरुआत में होता है जुलाई के महीने में, और यहाँ पे अक्टूबर में जाके होता है। तो पिंक बॉलबम को विशेष रूप

0: से ध्यान देना है। ये पतंगा होता है छोटा सा, जैसे चावल का पतंगा होता है घर में, उसी तरह से छोटा सा पतंगा होता है। एक्टिनोफोरा गोसिपेलस का वैज्ञानिक नाम है। और ये कीट इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, किसान इसको नियंत्रण नहीं कर पा रहे, क्योंकि शुरुआत में जब बीटी कपास आया भारतवर्ष में, तो बीटी कपास जो इन कीटों के प्रति मतलब ऐसा था कि उसमें ये कीट नहीं लगते थे, लगते थे तो मर जाते थे। उसके अंदर एक बीटी जीन होता है, बीटी बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थ्रोइमियसिस। उस बैक्टीरिया का जीन इस कपास में डाला गया तो कपास टॉक्सिन प्रोटीन बनाने लगा, जिसको ये कीड़े खाएंगे तो मर जाएंगे। तो दो कीड़े हैं, जैसे एक आता है इसमें अमेरिकन बॉलबम, एक होता है स्पाइनी बॉलबम, वो तो अभी भी कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रहा पिंक बॉलबम, क्योंकि इसने उससे लड़ने की क्षमता पैदा कर ली, मतलब कीड़े ने अपने अंदर एक ऐसी क्षमता पैदा कर ली कि वो सहन कर सकता है, मरेगा नहीं।
1: तो डॉक्टर साहब, इस दिशा में हमारे वैज्ञानिक कुछ तो काम कर ही रहे होंगे।
0: इस दिशा में बहुत शोध चल रहे हैं। पहले एक चीज से कंट्रोल हो जाता था, केवल ईस्टर्न वैरायटी लगा दी कंट्रोल हो गया, अब एक चीज से नहीं हो रहा, अब आईपीएम से हो रहा है, इंटीग्रेटेड टेस्ट मैनेजमेंट। अब उसको कंट्रोल करने का एक तरीका काम नहीं करेगा, आपको कई तरीके मिला के इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब इसको आईपीएम कैसे करें ये जानने की आवश्यकता है। तो इसको अगर आईपीएम करना अच्छे से, तो सबसे पहली बात आती है इसमें, फसल जैसे आपने लगाई है और लगभग 40-45 दिन बाद जैसे उसमें पुष्पण अवस्था थे, फूल निकलना शुरू होते हैं, उस अवस्था में हमें फेरोमोन ट्रैप लगाने की आवश्यकता। फेरोमोन ट्रैप को गंध पाश भी बोलते हैं। इसमें मादा की सुगंध आती है, नर पतंगे से फंस जाते हैं, उसमें एक ल्योर लगाया जाता है गॉसिप ल्योर, तो उसमें पतंगे फंसते हैं, पता चल जाता है कि कीट आ गया है। दूसरा तरीका है, जब हमें पता चले कि इसमें कीट आ गया है, तो हम उसकी फिर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी सबसे पहले काम होता है मुखबिरी, है ना, किसी दुश्मन के, तो डिटेक्शन है एक प्रकार से, पता चल गया कीट आ गया, कीट आया तब उसके बाद हम खेत में नीम का स्प्रे कर सकते हैं। कुछ पतंगे आने लगे, में दो पतंगे चार पतंगे एक ट्रैप में आने लगे, एक एकड़ में अगर हम एक ट्रैप भी लगाते हैं, एक हेक्टेयर में दो ट्रैप भी लगाते हैं, तो भी हमारा काम चलता है। अगर पतंगे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तब इसका ही आर्थिक क्षति स्तर होता है, तब हमें फिर कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है। उससे पहले क्या है, अगर फूल की अवस्था है, मान लीजिए जिनका फेरोमोन ट्रैप भी नहीं, वो क्या करेगा, तो खेत में जाके फूल देखेगा, इसका नॉर्मल फूल खिला हुआ होता है, अगर सूढ़ी इसमें होगी, सूढ़ी चारों तरफ से उसकी पंखुड़ी को बांध देगी, सिल देगी आपस, तो एकदम गुलाब का फूल ऐसा बंद जैसा दिखेगा, तो ऐसा अगर फूल दिख रहा है समझ लो इसके अंदर सूढ़ी है, तो उस फूल को लेकर आप नष्ट शुरुआत में कर सकते। अगर किसी के पास फेरोमोन ट्रैप नहीं, तो कैसे डिसीजन लेंगे कब इसको दवाई डालनी, उसके लिए अगर 10% आक्रमण है, 10% फूलों में या 10% टिंडे में, टिंडे में भी पता नहीं चलता है कीड़े, बाहर से डंडा एकदम हरा दिखाई देगा, जब बॉल खुलती है, जब बाहर रुई निकल के आती है ना, जब उस समय देखेंगे तो रुई खराब है, कुछ दाने खा लिए इसने, मतलब जो है उसका कलर भी सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें धब्बे धब्बे से दिखाई देंगे, जिसकी वजह से कम रुई पैदा होगी, वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। अब अंदर घुस गया उसके बाद तो कुछ काम नहीं करता जाता। अगर मान लो कुछ अंदर घुस भी गया है, इससे कुछ एक आइडिया लगता है कि फील्ड में ये पॉपुलेशन है, तो किसानों को चाहिए जब बॉल बन गई है, तो खेत में अलग अलग जगह से 20 टिंडे तोड़े, तोड़ के फिर उनको खोल के चेक करें, नजर पता ही चलेगा ना, और 20 में दो टंडे में अगर सूढ़ी निकल रही है, उस दशा में एमामेक्टिन बेंजोइट 5SG, इसका जो 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अब इसका स्प्रे कर सकते हैं, 80 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे इसका किया जा सकता है, इससे अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, कीटों का जो जाल है बड़ा ही विकट है, जैसे कि आपने अभी बताया, और इस दिशा में हमारे कृषि वैज्ञानिक इनको बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, कि फसल की बुआई से पहले किसान किन निवारक उपायों को अपनाकर कीटों के प्रकोप को कम कर सकता है?
0: ये एक प्रकार से बचाव, इतने बचाव ही ज्यादा बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, हमने जो देखा है पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, किसान भाई क्या करते हैं, जब फसल कटती है, कटने के बाद कपास अपना इकट्ठा किए रखे, कुछ उसमें टिंडे भी लगे रहते हैं, वो जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो रख ही रहते हैं, वो सबसे बड़ा कारण बनता है अगले सीजन में प्रकोप बनने का। तो जो आप इकट्ठा करके कबाड़ रख रहे हैं पिछले सीजन का, उसको किसी तरह से खत्म करिए अगले सीजन से पहले, क्योंकि इसकी सुंडी नवंबर दिसंबर के महीने में सुषुप्तावस्था में चली जाती है, उसके अंदर ही रहेगी जो अवशेष है फसल के, तो उनको नष्ट करना पहले जरूरी है फसल, वो भी पूरे क्षेत्र के सभी किसान मिलकर इसको अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से पिंक बॉलवर्म पर ऐसे ही नियंत्रण मिल सकता है। जब पॉपुलेशन अगले सीजन के लिए बचेगी नहीं, क्योंकि रहती उसी में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कपास के बाद फिर लगाएंगे गेहूं, तो खेत में तो रह नहीं सकती, तो अवशेष में ही रहती, तो अवशेष को नष्ट करना या जलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मान लो कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे ईंधन के लिए प्रयोग करना, तो उस पर एटलीस्ट जाली लगा दे कोई, जैसे मच्छरदानी टाइप की, तो उसमें से अगर पतंगा निकलेगा तो उसी के अंदर फंस जाएगा, बाहर खेत में नहीं जा पाएगा। इसका अगर काम कर लेंगे तो काफी हद तक नियंत्रण मिल जाएगा
1: जी
0: इस कीट का। उसके अलावा सफेद मक्खी है, वो भी खरपतवारों पर पनपती है, कपास नहीं होती, तो अगल बगल जो खरपतवार है उनको नष्ट करें सीजन से पहले, खेत के आसपास जो खरपतवार है उनको नष्ट कर, कपास के खेत बगल में अगर कोई बगीचा है तो वहां खरपतवार होंगे, उनपे पनपती है, तो

0: पे उनको नष्ट कर देंगे तो सफेद मक्खी और पिंक बॉलबम से नियंत्रण मिल सकता है। और हरा तेला के लिए भी लगभग यही चीज लागू होती है, उसका भी पूरे आईपीएम तकनीक अपनानी पड़ती है।
1: तो डॉक्टर साहब एक और सवाल यहाँ पर आता है, ये तो हमारे शत्रु कीट थे, अगर हम बात करें कपास में मित्र कीटों की, यानी प्राकृतिक जो शत्रु होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, क्या वो बचा सकते हैं?
0: बिल्कुल बचा सकते, किसानों के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किए
1: जी,
0: सफलता भी मिली। कपास में बहुत से मित्र कीट होते हैं क्योंकि प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे की क्राइसोप्टेरा कार्निया, इसमें होते हैं लेडी बर्ड बीटल, इसमें एक होता है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा हम लैब में बना के भी खेत में छोड़ते हैं, ट्राइकोग्राम केलोनिस या ट्राइकोग्रामा बैक्टेरी, और 1.5 लाख इसके एक कार्ड पे लगभग 20 हजार लग जाते हैं। उनको अगर हम खेत में स्टेपल करते हैं सभी बॉलबम के लिए वो काम करता है, और अगर हम कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग न करें सिर्फ, उससे हमारे मित्र कीट बहुत से बच जाते हैं। जैसे कि सफेद मक्खी का एक पैरासिटॉइड होता है परजीवी, एरोटोसीरस स्पीसीज है, एनकार्सिया स्पीसीज है, तो ये उसके बच्चों के अंदर अपने अंडे दे देते हैं, तो उसके अंदर सारे सफेद मक्खी के बच्चे खत्म हो जाते हैं और मित्र कीट ही निकलते हैं। तो ऑटोमेटिक 70% तक पैरासिटाइजेशन फील्ड में कर देते हैं, बशर्ते आप बेकार में पेस्टिसाइड न डालें शुरुआत में जल्दबाजी में। नहीं, किसान भाई क्या उसको जानकारी नहीं होती, तो कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भर, उनको भी कई बार जानकारी नहीं होती, उन्हें इतनी जानकारी होती है इसके लिए दवा डालनी, बस उन्हें नहीं पता इसका ये मित्र कीट भी है। तो अंधाधुंध दवाई से बचे, जरूरत पड़ने पर कीटनाशक डालें, और खेतों के आसपास ऐसी फसल जैसे कपास के आसपास मक्का लगा दें, बाजरा लगा दें या काउपी, तो उससे भी काफी हमारे मित्र कीटों का संरक्षण होता है और कपास की फसल को मित्र कीटों द्वारा भी बचाया जा सकता है।
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, इस बात का हमारा किसान भाई बहन भी ध्यान रखें। और अंत में आपसे ये पूछूंगी कि कपास उत्पादक किसानों को समर्पित कीट प्रबंधन के संबंध में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? चलते चलते
0: एक ही सुझाव है कि आप खेत की निगरानी करें, क्यों मेयर के किनारे से न देखें, बीच में घुस के भी देखें, और जरूरत पड़ती है हर एक कीट को पहचानने के लिए हमारे संस्थान ने एक एप्लीकेशन बनाया है NPSS, उसको डाउनलोड करें, भारत सरकार द्वारा उसको रिलीज किया गया है, उससे आप पहचान भी कर सकते हो, सही कीट के लिए सही दवा का चयन कर सकते हैं। आप कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप भटकेंगे नहीं, भ्रमित नहीं होंगे, इसको अपनाएंगे आप कपास का अच्छा उत्पादन पाएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, किसान भाइयों याद रखिए, कीट प्रबंधन का मतलब केवल कीटनाशक का प्रयोग नहीं बल्कि सही समय पर सही पहचान, सही उपाय और संतुलित प्रबंधन है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन इससे पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
2: तो अभी हमने सुना कपास फसल में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में, और हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर अनूप कुमार जो कि वैज्ञानिक हैं NCIPM दिल्ली में। तो प्रतिमा, इतनी अच्छी जानकारी के बाद अब मनोरंजन भी होना चाहिए, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

और किसान भाई बहनों, ये था बहुत ही प्यारा सा लोकगीत। और रजनीश, इस तरीके के लोकगीतों को जब हम सुनते हैं ना, तो हमारी भारतीयता की एक अलग ही छाप नजर आती है हर गीत के अनुसार। तो रजनीश, हमारी जो कृषि की तमाम प्रक्रिया होती हैं, उसमें मौसम का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसान भाइयों को सही जानकारी हो मौसम की, तो वो उसके अनुसार अपना खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। तो आइए अपने किसान भाइयों को भारत मौसम विज्ञान के अनुसार जानकारी दे देते हैं। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना नहीं है। दिन के दौरान तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस

0: तक रहने की संभावना है।
1: तो ये थी मौसम की जानकारी। तो प्रतिमा, हमारे कृषि वैज्ञानिक समय समय पर किसान भाई बहनों के लिए कृषि संबंधित नित नई जानकारी लेकर आते रहते हैं, तो आइए इस वक्त उनके लिए क्या मौसम आधारित कृषि सलाह है वो भी बता देते हैं।
0: बिल्कुल रजनीश, मौसम आधारित कृषि सलाह है किसान भाइयों के लिए कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें तथा खड़ी फसलों जैसे कि दलहनी फसलों, मक्का आदि व सब्जी नर्सरियों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें। और साथ ही रजनीश, किसान भाइयों को सलाह है कि भिंडी, मिर्च तथा बैंगन की फसल में माइट, जैसिड और होपर की निरंतर निगरानी करते रहें।
1: साथ ही किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस समय आगेती मटर की बुवाई के लिए बीज की व्यवस्था करें और इसमें उन्नत किस्में हैं पूसा प्रगति, पंथ मटर 3 और खेतों को भी तैयार करें। साथ ही कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके।
0: तो ये थी जानकारी और कृषि सलाह हमारे किसान भाई बहनों के लिए। और रजनीश, किसान भाई बहनों को इंतजार रहता है आजादपुर मंडी भाव का ताकि अपने फल और सब्जियों को सही मूल्य पर, सही दरों पर खरीद सके और बेच सके। तो आइए जानते हैं आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव। अगर हम आलू की बात करें तो ये 15 से 18 रुपए प्रति किलो, प्याज का मूल्य रहा लगभग 35 से 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर का मूल्य 25 से 35 रुपए प्रति किलो और बीन्स का जो मूल्य है वो है 25 से 35 रुपए प्रति किलो और खीरे का मूल्य रहा लगभग 20 से 25 रुपए प्रति किलो।
1: और फलों के भाव इस तरह से रहे, सेब का भाव है 100 से 120 रुपए किलो, केला बिक रहा है 20 से 25 रुपए किलो, अमरूद बिक रहा है 40 से 45 रुपए किलो और पपीते का भाव है 25 से 30 रुपए प्रति किलो।
0: तो ये थी जानकारी और किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी रजनीश। और देखिए ना, किसान भाई बहनों को हमारे कार्यक्रम का इंतजार तो रहता है लेकिन हमें इंतजार रहता है उनकी प्रतिक्रियाओं का। तो किसान भाई बहनों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप अपनी फीडबैक हमें जरूर बताएं।
1: फीडबैक भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
0: तो किसान भाई बहनों, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और उत्पादन के साथ साथ आय का अर्जन कई गुना करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तीन मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की और इसी क्रम में सुनते हैं गजल कवाली के कार्यक्रम के अंतर्गत एक खूबसूरत सी गजल, आवाज है जगजीत साहब की।

0: साहब की आवाज में यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जन सुरक्षा के हित में शक्ति निकेतन दुर्घटना स्थल के पास बनी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश दिया। सरकार शक्ति निकेतन हादसे में प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार पीजी आवासों के लिए नया नियमन विधेयक लाएगी। लाइसेंस, किराया सीमा और सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को राजधानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और खाद्य विभाग ने बाजारों से 2300 किलोग्राम से अधिक खराब खाद्य सामग्री जब्त की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जन सुरक्षा के हित में सत्य निकेतन दुर्घटना स्थल के पास बनी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि अग्निशमन सेवा के कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से इन इमारतों के अंदर मौजूद छात्रों का सामान सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसके साथ ही सभी छात्रों और स्थानीय निवासियों से अधिकारियों का सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही तेज कर दी है। महापौर प्रवेश वाही और निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोनल उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों की पहचान करने, जोखिम के स्तर के आधार पर उनका वर्गीकरण करने और कानून के प्रावधानों के अंतर्गत जहां आवश्यक हो सीलिंग तथा ध्वस्तीकरण सहित तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि उपायुक्तों को पेइंग गेस्ट आवासों, स्कूलों, होटलों और स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अनिवार्य स्वीकृतियां, अनुमतियां तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध और वैध हों। आयुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
2: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ है।
1: सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इमारत का बिजली कनेक्शन हरिराम के नाम था, जबकि उसका प्रबंधन बेटा महेश देख रहा था। संपत्ति उर्मिला के नाम दर्ज थी। तीनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत जबकि महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार पेइंग गेस्ट आवास विनियमन और सुरक्षा विधेयक लेकर आएगी। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य पेइंग गेस्ट संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा, संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा ऑडिट तथा एक केंद्रीय जीओवी पीजी पोर्टल की व्यवस्था करना है। श्री सूद ने यह बात आज दिल्ली

0: सचिवालय में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। एक रिपोर्ट।
1: सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद छात्रों की जीवन स्थितियों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सीधे समझने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव, विभिन्न समस्याओं और पीजी व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परिचालन तथा बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओं के बारे में श्री सूद को जानकारी दी। छात्रों ने एक समर्पित वेब पोर्टल बनाने की मांग की, जिस पर पीजी संचालकों के लिए किराया, भोजन व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं तथा भवन की संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी जानकारी पहले से उपलब्ध कराना अनिवार्य हो। वहीं मतदाताओं से बातचीत के दौरान शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय बैठक में छात्रावासों के लिए दिशा निर्देश की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
2: अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अंतर्गत एक कमेटी जो पीजी चलने के कानूनों के बारे में बात करे, नए हॉस्टल्स के बारे में बात करें के संदर्भ में कमेटी का गठन किया है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज स्टेक होल्डर्स के साथ हमने बात की है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के तौर पर हमने ये निर्णय किया है कि कैसे उनको सुरक्षित पीजी मिल सकते हैं, क्या क्या कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से नए हॉस्टल के लिए ज्यादा एफपीआर लाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता
1: है। इसके अलावा शिशुद ने यह भी बताया कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक में दक्षिणी परिसर, मुखर्जी नगर सहित राजधानी के प्रमुख छात्र क्षेत्रों में एक सप्ताह के भीतर कड़े संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने तथा हॉस्टल के लिए फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: हालांकि द्विपक्षीय वार्ता बहुत सारे राजनेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री की होगी। रशिया और यूक्रेन की जो संघर्ष चल रही उसकी बारे बात है। ये मुद्दा भी बहुत सारे मुद्दे जब द्विपक्षीय वार्ता होंगे तो बहुत सारे मुद्दे ऊपर उठ के आएंगे और उसमें एक ये मुद्दा भी रहेगा।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल की जनता और सरकार के साथ एकजुटता और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत, बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज राजधानी में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 7:45 से रात 10 तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अकबर रोड, मथुरा रोड, अशोक रोड, बाराखंबा रोड और टॉलस्टॉय मार्ग सहित कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इसके लिए विभाग ने यातायात के लिए विस्तृत व्यवस्था की है।
4: ब्रिक्स समिट दिल्ली में 11-12-13 सितंबर को है भारत मंडपम में। इसमें बाहर से हेड ऑफ द नेशंस और फॉरेन डेलीगेट्स और कुछ और नेशंस के हेड्स का वीआईपी मूवमेंट होगा, तो इसके तहत हम लोगों ने डिटेल ट्रैफिक अरेंजमेंट बनाया है। हमने 22,000 पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग डायवर्शन देंगे। भारत मंडपम के पास जो भी आसपास के जैसे मथुरा रोड है, भैरव मार्ग है, ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे।
0: यूजीसी नेट की पुनर्परीक्षा बुधवार और गुरुवार को होगी। इस परीक्षा से ठीक पहले परीक्षा में शामिल होने जा रहे दिल्ली के अभ्यर्थियों के लिए एक सलाह जारी की गई है। निर्देश में राजधानी में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहने की संभावना बताई गई है। विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से संवाद भी किया। विद्यार्थियों ने विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर का निर्देशित भ्रमण किया तथा इसके समृद्ध स्थापत्य और संस्थागत विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग विभाग, सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इनमें प्रस्तावित दिल्ली औद्योगिक नीति 2026-2036, दिल्ली स्टार्टअप नीति 2026-2031, दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम, निर्यात संवर्धन, नवाचार पहलों के समय

0: बद्ध क्रियान्वयन और एमएसएमई सहायता जैसे विषय शामिल रहे। इसके अलावा बैठक के दौरान दिल्ली के औद्योगिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। साथ ही एमएसएमई और कारीगरों को सहयोग प्रदान करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा सरकारी सेवाओं की तेज और अधिक प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों पर भी समीक्षा की गई। उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज घरौली वार्ड 194 क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उप महापौर ने अतिक्रमण, अवैध डेयरियों तथा सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के संबंध में संबंधित विभागों को तत्काल और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक स्थानों के प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए उप महापौर ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण स्थलों को चिन्हित कर नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने तथा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: सरकार ने त्योहारों के मौसम से पहले राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत खाद्य विभाग ने 2300 किलोग्राम से अधिक खोया, धाप और मक्खन जब्त किया है। जब्त किए गए खाद्य पदार्थों को खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मजनू का टेला स्थित एमसीडी डंपिंग साइट पर नष्ट कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सामग्री दुर्गंधयुक्त और खराब अवस्था में थी और अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में लावारिस पाई गई। श्री सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभागों को निर्देश दिया है कि वो गहन निरीक्षण जारी रखें और पूरे त्योहारों के मौसम में कड़ी निगरानी रखें। कला संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल शर्मा ने आज राजधानी को पर्यटक स्थल बनाने और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पर्यटन अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक पर्यटक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटकों की सुरक्षा और सुगमता पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विभिन्न भाषाओं, विधाओं और सिनेमाई रूपों में विविधताओं का प्रतीक है। मंत्रालय ने कहा कि आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार मराठी, संथाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तुलु और गढ़वाली सहित अन्य भाषाओं और विधाओं में उत्कृष्ट फिल्मों को भी मान्यता देते हैं। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार किसी संथाली फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के गैर फीचर फिल्म वर्ग में सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करने का निर्णय लिया है। 1954 में शुरू हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। आनंद की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जन सुरक्षा के हित में सत्य निकेतन दुर्घटना स्थल के पास बनी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश दिया। सरकार सत्य निकेतन हादसे में प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार पीजी आवासों के लिए नया नियमन विधेयक लाएगी, लाइसेंस, किराया सीमा और सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को राजधानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और खाद्य विभाग ने बाजारों से 2300 किलोग्राम से अधिक खराब खाद्य सामग्री जब्त की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी हमें वक्त बता रही है ठीक 8:00, ये लीजिए पूरे हुए 20 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत पिरो कर लाए हैं हम आप सभी के लिए चंद खूबसूरत से फिल्मी नगमे, जिसकी शुरुआत करते हैं खूबसूरत सी आवाज के साथ, और ये आवाज है सोनू निगम की। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गीत मालिका कार्यक्रम के अंतर्गत चंद खूबसूरत से फिल्मी गीतों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, अंग्रेजी और फिर उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है।

0: फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026.

0: Tech Moment, where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
3: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई के मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
2: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
0: विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि

0: आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
1: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और

0: सिंधु चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
2: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
1: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दलदली अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंदी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे पंकज उदास के गाए चंद गैर फिल्मी गजलों और गीतों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:45 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सफर नई बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तरात और सबकी शमूलियत शामिल है। उन्होंने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने गुजरात में 35,000 करोड़ रूपये की मालियत के कई प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं, ताकि बामी दिफा और समंदरी सरहद से मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। रूस ने यूक्रेन लड़ाई के खात्मे के लिए भारत की अहम कोशिशों की हिमायत की है। रूस ने इस मामले पर भारत के मौकफ से वाबस्तगी का इजहार किया है और अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के 2 तमगों समेत भारत ने 5 तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फिनटेक सफर को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तरात और सबकी शमूलियत है। उन्होंने कहा कि एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम जैसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंस के शोबे में नए इम्कानात खोल रही हैं। जनाब मोदी ने आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 7वें एडिशन से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने फिनटेक के चैंपियन के तौर पर यूपीआई की सताइश की और इस बात का जिक्र किया कि पिछले माह 2400 करोड़ से ज्यादा यूपीआई लेनदेन रिकॉर्ड किए गए। उन्होंने कहा कि अब भारतीय यूपीआई 11 मुल्कों में दस्तियाब है। पिछले सहमाही में मुल्क की काबिल जिक्र मजमू घरेलू पैदावार जीडीपी की शहर तरक्की की सताइश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि चैलेंजों से पुर आलमी तनाज़ियात, गैर यकीनी सूरत हाल और तवानाई और जरूरी अशिया की आलमी सप्लाई चेन्स पर दबाव के बावजूद भारत की 7.8% की तरक्की ने दुनिया को एक बार फिर उम्मीद की यकीन दहानी करा दी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मुल्क की खुदमुख्तार क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- तक पहुंचा दिया है, जिसमें एक मुस्तहकम आउटलुक शामिल है, और इस तरह भारत 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे के बाद ए रेटिंग के जुमरे में वापस आया है। 4 रोजा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मुंबई में 8 से 11 सितंबर तक मुनक्किद हो रहा है। इससे कबल दिन में आज वजीर आजम ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने मगरबी रेलवे के लिए वक्फ मालगाड़ी की राहदारियों की 3 अहम सेक्शन मुल्क के नाम वक्फ किए और ये मालगाड़ी की राहदारी के नेटवर्क की पूरी तरह तकमील और बाकायदा कामकाज शुरू होने की अलामत है। उन्होंने 9,700 करोड़ रूपये की मालियत के रेलवे के 3 तोसी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के एक नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक मुकम्मल खुदकफील सप्लाई चेन मुल्क के अंदरून तैयार हो रही है, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक से समंदरों में भारी जहाजरानी तक का अहाता करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर उभरा है और वो अब खुद जदीद तरीन रेलगाड़ियों और मेट्रो के कोच बना रहा है। उन्होंने भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर की तेजी से होती हुई कायापलट को भी उजागर किया। वजीर आजम ने नवसारी में नौ तामीर शुदा बीजेपी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद एक हुजूम रैली से भी खिताब किया। जनाब मोदी ने शहरियों और अवामी नुमाइंदों से जोर देकर कहा कि वो समाजी खिदमात और सफाई सुथराई को रोजमर्रा की एक आसानी से की जाने वाली आदत बना लें, साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाएं कि तरक्याती स्कीमों की रसाई हर किसी तक हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतअद्दिद रहनुमाओं के साथ 2वीं बातचीत करेंगे। آج نئی دلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ بات کہی. روس یوکرین جنگ کے سلسلے میں ترجمان نے کہا کہ بھارت یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ اس لڑائی کو روکے جانے کے سلسلے میں کیا کوئی نظریات اور تجویز ہیں جو مدد کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے حال ہی میں یوکرین اور پولینڈ کا دورہ کیا تھا. اپنی بات چیت کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ بھارت نے مسلسل یہ موقف برقرار رکھا ہے کہ یہ دور جنگ کا نہیں ہے اور کوئی بھی حل جنگ کے میدان سے نہیں نکلے گا. نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب سے متعلق بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بھارتی فورنسک ٹیم اور ٹنل میں بچاؤ ٹیم زمینی سطح پر کام کر رہی ہیں. فورنسک ٹیم اس وقت کٹھمنڈو میں دو لیبوریٹریوں میں کام کر رہی ہے اور وہ 1200 ڈی این اے نمونوں کی جانچ کر رہی ہے. جناب جیسوال نے کہا کہ 275 بھارتی شہر

0: शहरी लापता हैं, जिनमें वो 49 शहरी भी शामिल हैं जो चीन की तरफ लापता हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 169 भारतीय शहरियों को अब तक बचाया जा चुका है। जयराम जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के अवाम और हुकूमत के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने जल्द मदद का हाथ बढ़ाया और वो राहती इमदाद, बचाव और तामीर नौ की कोशिशों में मदद जारी रखेगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि 7 तैयारों के जरिए अब तक 95 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है और कुछ और इमदादी सामान जल्द भेजा जाएगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत चीन ताल्लुकात रफ्ता रफ्ता मुस्बत समत की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताल्लुकात के इस तरह रफ्ता रफ्ता मामूल पर आने और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते इंतहाई अहम हैं। वज़ीर दफा राजनाथ सिंह 3 रोजा श्रीलंका के दौरे पर आज कोलंबो पहुंचे। उनके दौरे का मकसद दो तरफा दिफाई और बहरी इश्तराक को वसत देना है। बंदरा नायके बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के नायब वजीर दिफा अरुणा जया सीकरा और श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने जनाब सिंह का पुरजोश खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर दिफा मजबूत दिफाई और बहरी शराकतदारी समेत बाहमी तौर पर फायदेमंद मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मकसद से श्रीलंका की क्यादत के साथ बातचीत करेंगे। आज रूस ने यह कहते हुए कि यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए भारत की जानिब अंग कोशिशों का वो खैर मकदम करता है, कहा है कि मॉस्को की हिकमत अमली बातचीत और सफारतकारी के जरिए हल तलाश करने के नई दिल्ली के मौकफ से करीबी तौर पर हमाहंग है। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले आज दोपहर नई दिल्ली में एक वर्चुअल ब्रीफिंग से मीडिया से खिताब करते हुए क्रेमलिन के तर्जुबान दिमित्री पेस्कोव ने यह बात कही। जनाब पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन लड़ाई पर वो भारत के मौकफ से वाकिफ हैं और काफी हद तक वो उनके खुद के मौकफ से मुताबिकत रखता है कि वो यूक्रेन जंग का पुरम हल चाहते हैं और रूस इससे इत्तफाक रखता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के एकता नगर में 22 सितंबर को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अता करेंगी। एक बड़ी पॉलिसी पहल के तहत इत्तेहाद नशरियात की वजारत ने कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब को कौमी राजधानी से परे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक्कद करने का फैसला किया है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, गंगा की तराई वाली मगरबी बंगाल, झारखंड और ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने अहमदाबाद में जारी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले के तहत आज सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे के 1 तमगे समेत कुल 5 तमगे जीते। मर्दों के कंपाउंड टीम मुकाबले में भारत के तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने सोने के तमगे जीते, जबकि हरविंदर सिंह और विजय सुंदी ने मर्दों के रिकर्व टीम जुमरे में भी सोने का तमगा अपने नाम किया। खवातीन रिकर्व टीम मुकाबले में भावना और पूजा ने चांदी के तमगे जीते। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सफर नई बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तिरात और सबकी शमूलियत शामिल है। उन्होंने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में 35,000 करोड़ रूपये की मालियत के कई प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्यूफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं, ताकि बाहमी दिफा और समंदरी हद से मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके और रूस ने यूक्रेन लड़ाई के खात्मे के लिए भारत की अंग कोशिशों की हिमायत की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेंडेज पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। मशवरे सेहत के।

इस सिलसिले के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से लेकर हाजिर खिदमत है आपका मेजबान आदावर्स। आज के सेगमेंट में हम भुने हुए चनों के मुतालिक कुछ बताना चाहेंगे, इनके क्या क्या तिब्बी फवायद हो सकते हैं। जायके में तो अच्छा होता ही है, यानी रोस्टेड चने की हम बात कर रहे हैं। और भुने हुए चने के जो छिलके हैं, अगर उनको ऐसे ही खा लिया जाए, इन दोनों तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। भुने हुए चने के छिलके उतार कर भी आप खा सकते हैं और छिलके समेत भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर छिलके के साथ आप करें तो इसमें फाइबर्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं और गजाइत भी भरपूर हो जाती है, जो हमारे निजाम हाजमा को बेहतर बनाने में मुआविन साबित हो सकते हैं। और खास बात यह है कि वजन को कंट्रोल करना अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वजन ना बढ़े और मोटापा आपको परेशान ना करे, तो आप भुने हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि चने के छिलकों में भरपूर यानी वाफर मकदार में डाइट्री फाइबर्स होते हैं, जो इजावत को मुलायम करते हैं, कब्ज को दूर करते हैं और आपके पेट को साफ रखते हैं। इस तरह से ये मुआविन साबित हो सकते हैं निजाम हाजमा को दुरुस्त करने के लिए। अब जैसे हमने कहा कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, चाहते हैं कि आपके वजन में इजाफा ना हो, बेली पर बहुत ज्यादा फैट ना आए, तो इसके लिए छिलके के साथ अगर भुने चने आप खाएं तो लंबे वक्त तक आपको भूख नहीं लगती, ऐसा लगता है कि पेट या मेदा जो है हमारा भरा हुआ है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती और वजन घटाने में ये बात मददगार साबित हो सकती है, यानी भुने हुए चनों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं छिलकों के साथ। अब बात कर लेते हैं उन अफराद की जो शुगर के मर्ज में मुब्तला रहते हैं। भुने हुए चनों के छिलकों में मौजूद डाइट्री फाइबर्स और चने के अंदर जो गजाई अज्जा मौजूद होते हैं, वो आपकी शुगर को यानी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। और दिल की सेहत की अगर बात की जाए तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे एलडीएल कहा जाता है, इसके इस्तेमाल से वो कम होता है, दिल की सेहत में इजाफा होता है, बेहतरी की जानिब गामजन होती है आप दिल की सेहत। और अगर थकान आप महसूस करते हैं कभी, तो चने का इस्तेमाल कीजिए, फौरन तवानाई आपको मिलेगी, थकान भी आपको दूर हो जाएगी, क्योंकि दोनों चने के छिलके और दाने दोनों मिलकर जिस्म को तवानाई देने में मुआविन साबित होते हैं। और आपने देखो स्नैक्स के तौर पर इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो सेहतमंद भी रहते हैं और वक्त भी अच्छा गुजरता है और आप तली हुई चीजों से भी दूर रहते हैं। और हम यहां बात करना चाहेंगे कि छिलके समय तक अगर खाया जाए तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वैसे तो दोनों ही तरह से फायदा होता है, क्योंकि चने का जो छिलका है दोस्तों भूसी की तरह काम करता है, जैसे आटे में चोकर होता है, भूसी होती है, इसी तरह से ये जो चने का छिलका है ये भी भूसी की तरह काम करता है और निजाम हाजमा को तेज करने में मददगार साबित होता है ये छिलके के साथ चना। और ये मेटाबॉलिक रेट को जो है उसमें इजाफा करता है और इस तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ वजन को भी कम करने में मुआविन साबित होता है। इसके अलावा एक वजह यह है कि जब आप छिलकों के साथ चनों का इस्तेमाल करते हैं तो टॉक्सिन जो है, फासिद मवाद जो है, वो जिस्म से आपके बाहर निकलते हैं और फैटी लीवर के मरीजों के लिए ये एक बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसा माहिरीन का कहना है। जिन्हें भी फैटी लीवर की परेशानी है, दुश्वारी है, उन्हें चने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और कब्ज के लिए हमने आपको बता ही दिया कि क्योंकि छिलके के साथ आप खाते हैं तो कब्ज से राहत मिलती है। और खास बात यह कि जो अफराद बवासीर के मर्ज में मुब्तला रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फाइबर्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं और पेट को आपके साफ रखता है। तो इसका इस्तेमाल अगर ऐसे अफराद भी करते हैं जो बवासीर के मर्ज में मुब्तला है, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और डायबिटीज के लिए तो खैर हमने आपको बताया ये होते ही होते हैं, क्योंकि इसमें
फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं और जहाँ फाइबर्स आपको रहेंगे तो वहाँ निज़ामे हाजमा को भी दुरुस्त करेंगे और आपके शुगर से मुतालिक अगर कोई परेशानी आपको है यानी शुगर से के मर्ज में मुब्तला है तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय के साथ इस्तेमाल करें, कब सुबह का वक्त है सुबह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम को चाहें तो शाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इसके और

0: सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। इसके अलावा भी और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन वक्त की तंगी है तो आज बस इतना ही। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। और ये सुनिए मार्केट मंत्र प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, aur hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain desh ke jane mane अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
0: वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,635. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन, इनॉग्रेट्स एंड डेडिकेट्स टू द नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 35,000 करोड़ रुपीज इन गुजरात. Says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई गिरावट. सेंसेक्स 550 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 23,635 दर्ज हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया. कहा, स्वदेशी उन्नत ट्रेन और मेट्रो कोच का उत्पादन कर भारत वैश्विक निर्माण हब के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन आज बिकवाली की गई और प्रमुख सूचकांक इस वर्ष जून के मध्य के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आकर बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 555 अंक यानी 0.73% नुकसान के साथ 75,578 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 144 अंक यानी 0.61% घाटे के साथ 23,635 दर्ज हुआ. हालांकि विस्तारित बाजारों में लिवाली कहीं अधिक तेज देखी गई सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.2% लाभ में रहा.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स डिक्लाइन फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन टुडे, एंडिंग एट द लोएस्ट लेवल सिंस मिड जून. The Sensex declined 555 points or 0.73% to end at 75,578, while the Nifty shed 144 points or 0.61% to settle at 23,635. However, in the broader market of the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 and the Small-Cap 100 indices gained 0.2% each. Earlier, the markets opened lower and remained under pressure throughout the session as Brent crude prices edged closer to the $100 per barrel mark, heightening concerns over inflation and broader economic uncertainty.
1: नजर डालते हैं सेंसेक्स में शामिल कंपनियों पर जिनके प्रदर्शन में कहीं गिरावट कहीं तेजी देखने को मिली. सबसे पहले अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियां. आईसीआईसीआई बैंक को आज 2%

0: घाटा हुआ। एक्सिस बैंक के शेयरों में 1.7% की गिरावट आई। अल्ट्राटेक सीमेंट 1.2% नुकसान के साथ बंद हुआ। उधर लाभ कमाने वाली कंपनियों में सम्मिलित रही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे 1.5% का फायदा हुआ। अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 1.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 0.8% लाभ के साथ बंद हुए।
1: इन द सेक्टरल इंडेक्सेस ऑन द बीएसई 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर एज्ड डाउनवर्ड। अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मेंस इंश्योरेंस एज वेल एज टॉप 10 बैंक्स फेल 1%। प्राइवेट बैंक्स index dropped 0.9% and financial services lost 0.8%. In contrast, capital goods advanced 1.3%, power gained 0.7%, and healthcare as well as industrials added 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 2,009 advanced and 216 remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 34 पैसे कमजोर हुआ, 94.83 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर ठीक ठाक गिरावट हुई और जून मध्य के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है बाजार, किस अर्थ में ले रहे कारोबार को?
2: देखिए मनोज जी, एक तो ये बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूंगा, क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो अनसर्टेनिटीज हैं, वो वापस फिर एक हाइटेंड मोड पर हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसमें कोई ऐसा चिन्ह नहीं आ रहा है जिससे कि हमें लगे कि शांति किसी एजेंडा पे हो या कुछ उसका वजूद हमें नजर आए, तो जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस एस्केलेशन में है। और जब क्रूड प्राइसेस एस्केलेशन में है तो उसका सीधा असर जो है पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर आता है, भारत के ऊपर आता है और जो भी इसके इम्पोर्टर हैं उनके ऊपर आता है। ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर ही बहुत काफी असर होता है। तो उससे के मद्देनजर मैं ये समझता हूं कि जो अभी मार्केट में जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रहा पिछले कुछ सेशंस में, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया अनसर्टेनिटीज को देखते हुए कि ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी दिशा नहीं मिल रही है कि कोई पीस की वार्ता आगे कोई किसी एजेंडा में हो। तो एक तो ये, दूसरा जो एक जो इन्फ्लेशन को लेके कि जो इन्फ्लेशन अभी आने वाले टाइम में या तो राइज कर सकता है या फिर उसी जो हायर स्टिकी जोन में रह सकता है, जैसे कि यूएस का इन्फ्लेशन है 3.4% पे, तो उनके टॉलरेंस लेवल से काफी ज्यादा है, जिसे फेड आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लेगा वो एक अनसर्टेनिटी जो है इन्वेस्टर्स के माइंड में है, जो भी कुछ ही दिनों में हमारे सामने आएंगे उनके रिजल्ट, जो भी फेड डिसीजन लेगा। और तीसरे नंबर पे जो एक ऐसा जो अनुमान था कि बहुत जल्दी मार्केट्स में एक तेजी आएगी, जब पीस हो जाएगा, जब कुछ ऐसी वार्तालाप होगी, तो वो सभी चीजों के ऊपर कोई ऐसा विचार नहीं।
1: सो व्हाई डिड द मार्केट फेल टू फाइंड सपोर्ट डिस्पाइट सिलेक्ट रिजिलियंस इन मिड कैप एंड डिफेंसिव सेक्टर्स?
2: मिस्टर लेक, बिकॉज पीपल आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स एट दिस जंक्चर, अपना एंटिसिपेटिंग द हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द कमिंग टाइम्स एंड द हाई इन्फ्लेशन एंड द अनसर्टेनिटी एट द ग्लोबल लेवल। दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स आर नॉट टेकिंग द लॉन्ग कॉल टू गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट्स। वेयर देयर इज सम प्रॉफिट, देन दे आर बुकिंग सम पार्शियल प्रॉफिट और द फुल प्रॉफिट और फार प्रॉफिट, बट द प्रॉफिट बुकिंग इज सिग्निफिकेंटली हाई इन द मार्केट एट दिस जंक्चर। दैट्स व्हाई मार्केट्स आर सिग्निफिकेंटली लो टू द लेवल ऑफ जून 2026। बट गोइंग फॉरवर्ड, इफ सम पीस प्रोसेस हैपन्स एट द ग्लोबल लेवल, देन आई बिलीव मार्केट्स विल रिकवर सूनर देन लेटर।
1: सो टूडे द टॉप 10 बैंक्स फेल 1%, प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स फेल 0.9% एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज लॉस 0.8%। सो आर बैंक्स वल्नरेबल मेनली बिकॉज ऑफ रिस्क एवर्जन और कुड हाई क्रूड अल्टीमेटली अफेक्ट लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी एज वेल?
2: आई बिलीव ऑल दीज थ्री फैक्टर्स आर वर्किंग, बिकॉज वेन द क्रूड प्राइसेज

0: rise, then the inflation trajectory also expands and go high. Then the banks, central banks are also in a mood of tough monetary measures. So that's why banking sector is not in that much comfortable position after observing such kind of developments at the global level, whether the West Asia or the Russia Ukraine, their war is also intensifying. So that's why the situation is not in any direction. People are confused and they are taking their decisions to book the profit and to make some gains from the market.
1: So in contrast to what I just mentioned about banks and all going down, we also had the pharma and healthcare attracting money today. What could be the reason? Is it defensiveness? Is it export potential? Or is it because rupee related benefits?
0: Yes, because this is a export oriented sector actually, jo pharma and Ayush and all these related activities like that technical stocks also. These export-oriented stocks sometimes gain when the market declines. So that may be the reason that these stocks are showing the strength in the market.
1: So what does it say to you about the domestic investors being very confident when you see that the mid-cap has gained today? Does it show their confidence, or could that pocket face delayed profit booking if volatility persists?
0: No, Likji, this is some kind of churning. When the people book their profits in the blue chips and then they shift to the other prospective mid caps, so that their investments are not out of the market. So that's why this is the shift from some profit booking in the blue chip companies, then the shift towards the mid-cap, small and mid-cap. So that churning is happening between the larger and smaller stocks.
2: यहाँ पर एक संक्षिप्त सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि रुपया कमजोर हुआ है, निसंदेह आज भी गिरावट हुई है, लेकिन रुपए के गिरने ने किस रूप से हमारे निर्यात को प्रोत्साहित किया है और किस रूप से प्रतिस्पर्धी बने हैं हमारे बाजार? बहुत संक्षिप्त में
0: मनोज जी, जब रूपी डेसिलेरेट होता है, गिरता है, तो उसका उसके जब तो प्राइस कॉस्ट मार्जिन जो एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा फायदा होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो कॉम्पेटिटिव हो जाते हैं, जिससे अर्निंग्स भी इंक्रीज हो जाती है.
3: Reserve Bank has consistently viewed fintech as a valuable partner in building the financial system of the future, the regulatory sandbox, the Reserve Bank innovation hub, and our structural and continued dialogues with startups, fintechs, and other stakeholders all rest on the conviction that better policy emerges from continuous, open, and constructive engagement. We have encouraged self-regulation within the sector. We have supported the development of digital public infrastructure that fintechs can build upon. We have been open to new ideas and new players. We have promoted responsible innovation while safeguarding trust that is the very foundation of finance. And we will continue with this approach, guided by a vision to build a financial system that is safer, more trustworthy, more inclusive, fair, efficient, and supports economic growth and public welfare. Honorable Prime Minister, this festival is a testament to what is possible when policymakers, regulators, investors, financial intermediaries, and innovators share a common purpose. I, on behalf of all the participants, express our heartfelt gratitude to you for taking out precious time for this event.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीन अहम हिस्सों को देश को समर्पित किया, जिससे फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क का काम पूरा हो गया और अब ये चालू हो गया है. इस अवसर पर एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने 2800 किलोमीटर से अधिक लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने को 21वीं सदी के भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और देश की बदलती हुई कार्य संस्कृति का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है और अपनी खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे नेटवर्क में 50,000 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच और 2.5 लाख वैगन जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री ने चिप टू शिप लोकल प्रोडक्शन के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए कहा कि देश के भीतर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सप्लाई चेन बनाई जा रही है जिसमें हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर भारी समुद्री शिपिंग तक सब कुछ शामिल है।
1: लेट्स टेक यू लाइव वंस अगेन टू मुंबई वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज नाउ एड्रेसिंग द गैदरिंग एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026।
4: तीसरी बार सरकार बनने से लगी थी और ये हैट्रिक आप सभी के बीच आने से जुड़ी है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है। ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, हर बार जब मैं यहां आता हूं तो मुझे पहले से ज्यादा युवा दिखाई देते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है, मुझे पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। साथियों, फिनटेक की इस एनर्जी के बीच ही मुंबई में सांस्कृतिक ऊर्जा भी इन दिनों चरम पर है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। हमारे यहां हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। मैं गणपति बापा को नमन करते हुए आप सभी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री तीसरी बार पहुंचे और उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए नए विकसित हो रहे भारत के भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारियां दी। हम समझना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन किस रूप में एक विश्व समुदाय को आपस में नजदीक लाते हैं और ये जो फिनटेक फेस्ट है वह क्या आकार लेगा, हमारे आर्थिक तंत्र को, वैश्विक आर्थिक तंत्र को क्या योगदान देगा।
0: देखिए मनोज जी, जो फिनटेक है वो हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और वी आर प्राउड के हम भारत पूरे ग्लोबल लेवल पे लीडर हैं। हमारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वी आर नंबर वन, 20 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं एक महीने में, एक बहुत बड़ी बात है जिसमें जो बड़े कंट्रीज हैं वो काफी पीछे हैं। तो ऐसे जो सम्मेलन है इससे एक तो हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो अप्रोच है वो पूरे विश्व में उजागर होती है कि भारत में इस तरीके की डेवलपमेंट्स हैं और भारत इन चीजों में आगे अपनी लीडरशिप बना के रखे हुए है। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, जो हम विकसित भारत की तरफ जो बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, जो अभी हमारे पास 20 साल और है हमें बड़ी ऊर्जा के साथ काम करने के, तो ये जो सेक्टर है चाहे वो फिनटेक है, एआई है, डिजिटलाइजेशन है, तो ये सभी सेक्टर जो न्यू इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं ये पूरी इकोनॉमी को गति दे रहे हैं, उसकी स्पीड को तेज कर रहे हैं, जो हमारे जिसकी वजह से हम देखिए अपना जो जीडीपी है 7.8%, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज पहले होती थी उनसे कहीं ज्यादा हमारा जो ग्रोथ है वो कहीं आगे निकल गया है। अब चाइना का ग्रोथ है वो 4.5% के आसपास अटका हुआ है, एंड वी आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी. तो ये सब चीजों से हमें पता चलता है कि हमारी जो रफ्तार है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो ऊर्जा है, वो पूरे विश्व में अभी विजिबल है.
1: सो इन नटशेल, GFF 2026 सीक्स टू बिल्ड ऑन इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मूव फ्रॉम पोटेंशियल टू इम्पैक्ट.
2: यहां पर डॉक्टर शर्मा, हम आपको एक बार फिर से श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे गुजरात, जहां वडोदरा में एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है. हमारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज देश को समर्पित कर दिया गया. इसके तीन अहम हिस्से हैं, वो भी पूरे हो गए. किस रूप में ये सहायक होगा माल परिवहन के लिए और कैसे यह जो लॉजिस्टिक्स का हमारा क्षेत्र है उसे कह लें योगदान देने वाला है?
0: देखिए मनोज जी, मैं इन कॉरिडोर्स को फ्रेट कॉरिडोर्स ही नहीं, मैं इनको ग्रोथ कॉरिडोर्स मानता हूं. जी, ये भारत की ग्रोथ कॉरिडोर्स है. जब भी कोई नए कॉरिडोर्स आते हैं तो भारत की जो ग्रोथ है और भी गतिमान हो जाती है. तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस तरीके से हम हमारी जो रफ्तार है, जैसे मैंने पहले बताया, तो और सुदृढ़ होगी और हमारी ग्रोथ जो है उसको आगे सस्टेनेबल बनाने में ऐसी हमें ग्रोथ कॉरिडोर्स और चाहिए जो हमें और ज्यादा सपोर्ट करेंगे.
2: यहां पर एक और तथ्य हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच तक बनाने लगा है. किस रूप में देख रहे हैं आप हब बनने की स्थिति?
0: जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए अभी हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर मोबाइल एक्सपोर्ट्स में हो, वी आर द लीडिंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज. तो जो पहले हम नेट इम्पोर्टर होते थे, जो मोबाइल नाम का नामो निशान नहीं था, हम सब कुछ ही 100% हम इम्पोर्ट कर रहे थे, तो अभी हम उसके बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं. ये मैन्युफैक्चरिंग की ही देन है कि हमारी जो ऊर्जा जो हमारी मेक इन इंडिया से हमें मिली, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और PLI स्कीम, सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारी जो विश्व में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अभी वो विख्यात होने लगे हैं, जिसे हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बताते हैं कि अवर प्रोडक्ट्स आर इन डिमांड सिग्निफिकेंटली एट द ग्लोबल लेवल. जो एक्सपोर्ट्स है वो 13-14% के ऊपर ग्रो करना और मर्चेंडाइज 17-18% पे ग्रो करना एक बहुत बड़ी बात है. और इसके अलावा जो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम वैल्यू एडेड देखें, जो पहले चाइना कहीं आगे होता था, तो अभी चाइना भी उससे पीछे है. हम मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है जिसमें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है, 2 परसेंटेज पॉइंट ऊपर हम जो ग्लोबल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है. तो स्वाभाविक है कि हम एक आने वाले टाइम की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं.
2: आइए आगे.
4: बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे.
2: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के रिपोर्ट के अनुसार देश में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री वार्षिक आधार पर 17.51% बढ़कर 24,23,201 इकाई पर पहुंच गई. CNG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक अगस्त महीने में ही EV जैसे वैकल्पिक ईंधन वाले पैसेंजर वाहनों की बिक्री पहली बार पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से आगे निकल गई और बाजार में ट्रांजेक्शन हुए 41.95%.
4: यानी
2: पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी
4: हम यहाँ जितनी देर से बैठे हैं,
2: जो ग्राहकों की पसंद में बड़े बदलाव दिखाता है. अगस्त में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 16.14% बढ़ी, जबकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 14.45% की बढ़ोतरी हुई. साथ ही उल्लेखनीय बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में ऑटोमोबाइल की बिक्री शहरी इलाकों की तुलना में बेहतर रही है. शहरी बिक्री में 15.17% की वृद्धि हुई, जबकि आलोच्य अवधि में ग्रामीण बिक्री वार्षिक आधार पर 19.79% बढ़ी है. यहां पर बहुत संक्षेप में आपको आपसे ये प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या दिखा रहे हैं आंकड़े, खासतौर से जो ईवी की बिक्री बढ़ी है और ग्रामीण भारत में वाहनों की बिक्री अधिक बढ़ रही है?
0: देखिए मनोज जी, जो पैसेंजर व्हीकल्स है ये एक डिमांड इंडिकेटर है, जिसे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है. और सेकंड जो रूरल डिमांड, जैसे आपने बताया कि जो रूरल एरियाज में इनकी डिमांड और तेज गति से बढ़ी है, तो आने वाले टाइम में ये एक इंडिकेशन है कि हमारी जो डिमांड ट्रैजेक्टरी है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो हमारा जो ग्रोथ है वो भी सुदृढ़ रहेगा. सो दिस इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन द कमिंग टाइम्स.
2: आइए लिए चले श्रोताओं आपको वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां जापान का निक्की 225 1.7% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% की कमी आई. अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो इस वर्ष पिछली तिमाही की तुलना में अप्रैल जून तिमाही में जापान के जीडीपी

0: So this is a great support for the world economic growth also.
1: Okay. Canada's retaliatory tariffs on $28 billion Canadian dollars worth of U.S. goods took effect today with duties of up to 50%. The tariffs target products including steel, furniture and clothing, while fresh fish and lobster were removed following pressure from Canada's seafood industry. The move comes after trade talks between Canada and the United States collapsed last week with no sign yet of negotiation resuming anytime soon. The global crude oil prices climbed to multi-week highs as Houthi attacks on Saudi energy facilities intensified concerns about disruptions in global oil supplies. Brent crude was trading 1.7% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.4% up at $93.90 per barrel when reports last came in. What do you expect, Dr. Sharma, now that the oil is now towards $98?
0: I guess considering the very tense situation in the Strait of Hormuz, so I believe the prices will remain elevated. Though the volatility will come in the coming times, the prices are in the rising mode at this juncture.
2: Yani kis roop mein hamare desh ki arthavyavastha par iska asar padega bahut sankship mein.
0: देखिए जहां तक क्रूड का सवाल है अगर वो $100 या इसके नीचे रहता है तो हमारी ग्रोथ के ऊपर कोई असर आने की संभावना नहीं है हमारी ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी हाँ अगर इसमें बहुत तेज एस्केलेशन आती है तो हमारी ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती
2: है आइए श्रोताओं आपको लिए चलें सर्राफा बाजार भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% बढ़त के साथ 1,53,077 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था जबकि चांदी भी थोड़ी सी तेज थी इसके मूल्यों में 0.9% की बढ़ोतरी थी और इसके भाव 2,33,826 रूपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहे थे और बस अब यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देना
0: जी शुक्रिया मनोज जी
1: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर शर्मा बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन Benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 550 points. Nifty settles at 23,635. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्र का रिपीट ब्रॉडकास्ट ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है वक्त है आपके पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों के प्रोग्राम तामिले इरशाद का आज इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेजबान नईम आदावर्ज बेकरारी सी बेकरारी है वसल है और फिराक तारी है जो गुजारी न जा सकी हमसे हमने वो जिंदगी गुजारी है

साहिब बीबी और गुलाम फिल्म की कवालियां सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार थे शकील बदायूनी और मौसीकी की जहां तक बात है तो हेमंत दा ने मौसीकी तरतीब दी थी। और अब नाम शामिल करना चाहेंगे उन दोस्तों के जो इस कवाली को सुनना चाहते थे। बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ सहारनपुर चंद्रनगर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग की जानिब से। आप हैं चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा। गोकुल चौक गंजला शहर से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्केवाली फलनाचा। और इसी नक्शे को सुनना चाहते थे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत और अहले खाना। ये फरमाइश मौसूल हुई अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी की। इसी नकमे को सुनने के मुंतजिर थे पटेल नगर मलोड़ से डॉ रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। गांधीग्राम गुजरात से फरमाइश की थी प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी ने। और आप हैं कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। इससे पहले नगमे को पसंद किया था ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी ने। और आप हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से सुनना चाहते थे इस पहली पेशकश को टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर और तुषार की फरमाइश भी थी। और आप हैं सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमित कुमार दामोदर, बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से। और मुल्लापुर दाखा से सुनना चाहते थे इस नकमे को राजेश जैन, बिट्टू जैन, साथ में उनके संजीव जैन भी हैं। और टेबल गार्डन नई दिल्ली से फरमाइश की थी रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने। और आप हैं पिंजौर से चंद्रमोहन और साथ में हैं उनके इंद्र मोहन। और ये फरमाइश मिली करनाल से बलविंदर सिंह सोडी साहब की। और इसी नगमे को सुन रहे थे आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर। और अगला मेल मौसूल हुआ ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल का। और आइए अब सुनवाते हैं आपको आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में सिंधबाद अलीबाबा और अल्लादीन फिल्म का नगमा एस एच बिहारी का लिखा हुआ, मौसीकी रवि की है। और जहां तक सुनना चाहते हैं इस नगमे को काटर रोड वाशिन से हैं मास्टर विट्ठल सरोशे, सुषमा सरोशे, मायरा सरोशे। सलाई सोखना नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, साथ में राहुल कुमार शर्मा। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना का। अगले नकमे को आपने भी पसंद किया, आप अमीर खुसरो रोड गंज टंडवा से भुवन प्रकाश गौतम, डॉ दबीरुल हसन, साथ में बेगम शबनम अनवार, किशन सबकाल, आशा सबकाल, विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बीड शहर से आपने फरमाइश की है। और दिल्ली के रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नयाब। और आप हैं रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और बेबी कार्तिकी, गांधीबाग अकोला से। अगले नखमे को आपने भी पसंद किया, किशनगंज बिहार से हमारे सामने रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, अनुराग मोहन। और महाराष्ट्र के परभनी से हैं रूपेश संघई, महेश संघई और प्रगेश संघई। और ये फरमाइश मेल प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा एमपी से मौसूल हुआ है आनंद जोशी, तनुजा जोशी, साथ में फाल्गुनी जोशी। और ओम गायकवाड़, आम्रपाली गायकवाड़ आविष्कार हैं, सुनने के मुंतजर अगले नगमे को तमसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से। शमसुल कमर रही, शाहीन फातिमा अदनान की फरमाइश है गंज टुंडवारा से। और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रेमला भावसार, भावेश कुमार भावसार। और उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफार खत्री की फरमाइश है खरगोन गोगावा से। और अगला नगमा आप भी सुनना चाहते हैं।

छत्तीसगढ़ डोबरगांव के हमारे सामीन राष्ट्रपाल कश्मीर राधिका कश्मीर और अनिश्का तन्मय और ये फरमाइश मिली है अस्तुपराज लमो से मदर अली अंसारी रजे बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी की और इम्तियाज इमाम आतिश ताहिरा परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा हैं बिशनपुर गिरडी झारखंड से इसी नकमे को सुनने के मुतमन्नी हैं उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशोर ताशु पाकुर झारखंड से। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

हमेशा प्रोग्राम में लीजिए। अब सुनिए हिरात फिर नाएगी फिल्म का नगमा आशा भोसले का गाया हुआ और नगमा निगार है SH बिहारी, मौसीकी OP नैयर ने तरतीब दी है। इस नगमे को सुनने के मुंतजिर है हमारे बहुत सारे सामीन। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज और अहले खाना इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। पोषण बंछोर, चंद किरण बंछोर और साथ में छाया, पारा 2 छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश मौसूल हुई है। गणेशपुर गंज डुंडवाड़ा से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां और शिफा सिमरन की इसी नगमे को सुनने के मंतज हैं। प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, यशराज शिंदे रोहिदास चौक पंधारपुर सिटी से हैं। और अगला ईमेल मिला है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, अनंत भगत, अरुणा भगत और चेतन भगत का इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं तो इनको करना पड़ेगा साइड लाइन। राजू माठे, गजानन माठे, ज्ञानेश्वर माठे की फरमाइश है असलगांव बाजार महाराष्ट्र से। और आप हैं आखिरी दीवान MP से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। शेरवानी स्कूल गंज डंडवाड़ा से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर। और अगला ईमेल मिला है संजय ढींगा, नमन ढींगा, पाढ़िया का बागपत UP से। और नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शी मिर्गे, डॉक्टर प्रियंका कालपांडे साईनगर RV महाराष्ट्र से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पुन्नू वडतकर। अगला ईमेल मौसूल हुआ है उन दोस्तों का जो हो चुके हैं शामिल, तो आगे बढ़ते हैं जनाब। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोदा रामटेके और साथ में है उनके शव्या। और एक बार थोड़ा सा अपडेट करते हैं उसके बाद फिर शामिल करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, चूंकि कुछ दोस्त फिर पीछे छूट जाएंगे। भाटापारा देवरी से हैं गंडूलाल रचक, के साहू और अश्वनी वर्मा। और ये फरमाइश मिली है गिरडी झारखंड से सैयद शर्मा परवीन, बाबू सुफियान और अर्शी सुल्तान की है। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। आपने डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से फरमाइश इस साल की है। और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी है टावर चौक गुमला झारखंड से SM जावेद, शगुफ्तान जुम्मी साथ में शामिल है। बबलेश पवार, डेनी पवार, मास्टर मनीष की फरमाइश है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। और आप हैं सियरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान। और अगला नगमा आपकी नजर पे करते हैं, आप हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश उत्तम नगर दिल्ली से। अजीत कसाना के साथ में माया देवी हैं, ऋतिक भी हैं और उनके कुछ और साथी हैं। लदावली मुरादाबाद से अपनी फरमाइश हमें इस साल की है और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान निषाद साथ में अतरा तबस्सुम। और अगले मेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी करते हैं हम साइड लाइन। शब्बीर हुसैन, मुज्जू बाबा साथ में शहजाद हुसैन, सब्जी मंडी बुल्डाना से आपकी फरमाइश मिली है। बैलरी लवस्तर छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं अगला नगमा शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास और साथ में युवती देवदास। अयोध्या नगर रालेगांव से हैं विनोद कुमार ढवले, वेनुताई और प्रथमेश ढवले, राशिद हुसैन अंसारी साथ में उनके आस्था अंसारी और नौरीन भी हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावाली से आपकी फरमाइश मिली है। नासिर शेख, नाजे नासिर, साजिद शाहिद, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं तो साइड लाइन करते हैं इस ईमेल को और आगे बढ़ते हैं, एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं। बागवान मंजिल छोटी बलिया करजत से हैं नूर आयशा अहमद बागवान, रुबीना रफत बागवान और अखलाक अहमद। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म का नगमा सुनिए, आशा भोसले का गाया हुआ एस एच बिहारी का लिखा नगमा है और मौसीकी ओपी नैयर की है और फरमाइश बहुत सारे शामिल की है। शामिल कर लेते हैं जनाब, अगला ईमेल तो रिपीट हो गया, इसको साइडलाइन कर दिया हमने। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी आलम अंसारी साथ में असद अंसारी इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, हनुमानगढ़ राजस्थान से आपकी फरमाइश हमें मिली है। गुरमी सिंह मेहता साहब हैं साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से जो सुन रहे हैं इस वक्त तमिल एशियात प्रोग्राम और पाकुड़ झारखंड से सुनना चाहते हैं अगला नगमा। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु और ये फरमाइश मिली है। जाफरगंज जहानाबाद बिहार से इंतजार अंजुम और आलम आरा की जानिब से इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं बशकमल डॉक्टर बसंत बिरगो मोतीलाल यादव भाटापारा से। और अगले नगमे की फरमाइश विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम की भी है, आपने आकोट से फरमाइश की है और दिल्ली के मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, पलसी बुजुर्ग महाराष्ट्र से विजय शेगांवकर, जयश्री शेगांवकर और ऋषिकेश शेगोकार दरअसल इनका जो सरनेम है वो इस तरह से, महाराज केतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीदेव गोस्वामी, मीनाक्षी हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। अगला नाम आपके नजर कहते हैं गंज डंडवाड़ा से शमसुल कमर रही, शाहिन फातिमा, अदनान खान और ये फरमाइश के लिए सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और कुशल शाह की, पद्मा टॉकीज नेपाल नगर एमपी से और हाडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा और साथ में सार्थक शर्मा और महेंद्र मोदी ठाकुर साहेब, कुलदीप सिंह होरा की फरमाइश है रामगढ़ कैंट से। अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं, आप है गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, रामरतन टॉकीस, कुंडलवाड़ी से आपकी फरमाइश आई है और रुकनुद्दीन मंटाल, शब्बीर बनट्टी, आसिफ इकबाल है गुलबर्गा कर्नाटक से, धनौरी तेलीवाला से सुनना चाहते हैं इस नगमे को, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अहले खाना और नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल और इसी नगमे की फरमाइश की है। बड़े रवि चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, त्रिभुवन मालवीय नाथ मालवीय और साथ में अनमोल मालवीय श्लोक। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा आशा भोसले की आवाज में।

0: उन्होंने कहा कि कुल 169 भारतीय शहरियों को अब तक बचाया जा चुका है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा श्रीलंका दौरे पर आज कोलंबो पहुंचे। उनके दौरे का मकसद दोतरफा दिफाई और बहरी तआवुन को वसत देना है। बिंद्रा नाइक के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के नायब वजीर दिफा अरुणा जिया सीकरा और श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने जनाब सिंह का पुरजोश खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर दिफा मजबूत दिफाई और बहरी साझेदारी समेत बाहमी तौर पर फायदेमंद मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के मकसद से श्रीलंका की क्यादत के साथ बातचीत करेंगे। जनाब सिंह अपने दौरे में कोलंबो में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। रवानगी से कबल अपने में जनाब सिंह ने भारत की पड़ोस मुकदम पॉलिसी और महासागर विजन के तहत श्रीलंका को भारत के अहम साझेदारों में से एक करार दिया। आज रूस ने यह कहते हुए यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए भारत की जानिब से अमन कोशिशों का खैर मकदम किया है कि मॉस्को की हिकमत अमली बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल तलाश करने के नई दिल्ली के मौकफ से करीबी तौर पर हम आहंग है। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले आज दोपहर नई दिल्ली में एक वर्चुअल ब्रीफिंग से मीडिया से खिताब करते हुए क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने यह बात कही। जनाब पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन लड़ाई पर वो भारत के मौकफ से वाकिफ हैं और काफी हद तक वो उनके खुद के मौकफ से मुताबिकत रखता है कि वो यूक्रेन जंग का पुरमन हल चाहते हैं और रूस इससे इत्तफाक रखता है। जनाब पेस्कोव ने कहा कि ये यूक्रेन के साथ जंग की सूरत हाल से सदर पुतिन की जानिब से वजीर आजम मोदी को आगाह किए जाने का भी एक मौका होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान हुकूमत से जोर देकर कहा है कि वो इंसानी हकूक के वकला ईमान मजारी हाजिर और हादी अली चट्टा को फौरन और गैर मशरूत तौर पर रिहा करे। उन पर आयद किए गए जुर्म और तवील सजा ने इख्तलाफ राय को खामोश करने के लिए साइबर क्राइम से मुतालिक कवानीन के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में सख्त तशवीश पैदा कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम एक खत में एमनेस्टी ने कहा कि इन दो वकीलों को इस बरस 23 जनवरी को हिरासत में लिया गया था, हालांकि उन्हें 2 दिन कबल ही गिरफ्तारी से कबल जमानत दे दी गई थी। बांग्लादेश के लिए भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में आज बंगा भवन में बांग्लादेश के सदर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से खैर सुगाली पर मबनी मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों के अवाम के बाहमी मफाद के लिए बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सफर नई बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तराअत और सबकी शमूलियत शामिल है। उन्होंने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने गुजरात में 35,000 करोड़ रूपये की मालियत के कई प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं ताकि बाहमी दिफा और समुद्री सरहद से मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। और रूस ने यूक्रेन लड़ाई के खात्मे के लिए भारत की अमन कोशिशों की हिमायत की है। रूस ने इस मामले पर भारत के मौकफ से वाबस्तगी का इजहार किया है। इसी के साथ बरसगीर की खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल एप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशात और प्रोग्राम जारी है तामिले इरशाद। इस प्रोग्राम का अगला नगमा आप तमाम सामिन की नजर है।

अरिजीत फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलाल आबादी ने इस नगमे को लिखा, मौसीकी तरतीब दी थी सुधीर फड़के ने। और फरमाइशों की जहां तक बात है तो काफी ईमेल हमारे सामने है। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से ये ईमेल अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर का है और इसी नगमे को सुनना चाहते थे। खजवाई नगर सेतुपारा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान और आप हैं। मोहम्मद करीम जख्मी, बेबी फातिमा गाजी, साथ में नजमा बेगम नाज, रेलवे रोड गंज टुंडवारा से। संबलपुर कांकेर से फरमाइश की थी फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्वी यादव ने और इसी नगमे को सुनना चाहते थे। कैलाश पुरमाली, दीपक पुरमाली और समर पुरमाली अहमदपुर खेगांव खंडवा से। और ये फरमाइश है हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और तस्लीम अंसारी की जानिब से। और आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और वंश कनेरा मोहल्ला पटियाला से। इसी नगमे को सुनने के मुतवन्नी थे कुम्हार गली गांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, साथ में प्रतीक्षा। और ये फरमाइश ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट की फरमाइश भी थी। इसी नगमे की फरमाइश आपने भी की थी। आप हैं नेहरू चौक पैठा से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव, भंडारा रोड क्रू माला महाराष्ट्र से हर्षल पाटिल, कुंज बिहारी और कंचन माला की फरमाइश भी थी। और आप हैं गांव लथारा पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी जस्सी, सीता गीता और ये फरमाइश ईमेल गगनदीप थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी की जानिब से मिला, टोरवाल नवाशहर पंजाब से। और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं तो अगला ईमेल शामिल कर लेते हैं। कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार। और ये फरमाइश ईमेल मिला है गांव जाखोज से शंभुदयाल खटक, तुलना देवी, योगेश कुमार खटक का। वडिंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस और पिंकी अरोड़ा इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। रफीक अहमद, मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार, ताज मंजिल लक्कर बाजार खंडवा से आपने फरमाइश है मिसाल की है। और खानजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, तजीब खान, मंजू अशरफ भी हैं। अगला नगमा आप भी सुनना चाहते हैं बगबूढ़ा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम और मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और साथ में भूमिका है पदमपुर श्री गंगानगर से। संजय डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुम डाबेराव है विदर्भ आकोट से। और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक और गीता नायक का। अगले नगमे को आपने भी सुनना चाहे आप हैं मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मनोवर हुसैन अंसारी, फैजुल अलीम सिद्दीकी, पश्चिम थोक गंज टंडवारा से। और गांव जिलापुर मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इसरार और अहले खाना ये फरमाइश मिली है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिसा शबिस्ता के। और आपने ये फरमाइश बाजार रोड मुंगीसापुर से हमें इरसाल किए। तो आइए सुनते हैं तामीरशाद प्रोग्राम का अगला नगमा आशा भोसले की आवाज में, हावड़ा ब्रिज फिल्म से। इस नगमे का इंतखाब हमने किया आपके लिए, ओपी नैयर की है मौसीकी।

छत्तीसगढ़ से आपने फरमाइश है वैशाल की है, और काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से हैं भारती प्रकाश अम्बाड़े, जानवी अम्बाड़े, वैष्णवी हर्षल अम्बाड़े, मोटाला महाराज से विजय सरोलकर, रतनमाला और आरती और अहलखाना, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली हैं, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से, और ही फरमाइश है ये ताम्बरम चेन्नई से शाहिद अली फत फारूकी और हिफ्जा अली की जानिब से। अगला नखवा भी सुनना चाहते हैं फिर राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से श्याम किटे, वंदना किटे, कार्तिक किटे, और बल्लारपुर चंद्र जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भाषंकर, प्रिया भाषंकर, मास्टर ओमी भी साथ में हैं, डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद हैं, पुरानी भिलाई तीन चौरादा छत्तीसगढ़ से, और ये फरमाइश मिली है अजमेर शरीफ राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी की जानिब से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी और नवीद हसन अब्बासी, और इसी नगमे को सुनने के लिए कुछ और सामीन भी मुंतजर है, उनका नाम भी शामिल कर देते हैं। वो है छिंदवाड़ा एमपी से उदयवान ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे और उनके बहुत सारे साथी, और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है जिला पटियाला पंजाब नाभा से हैं सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी और अहले खाना, और आदर्श नगर मनोर पंजाब से फरमाइश की राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा ने। इसी नक्शे को सुनना चाहते हैं कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव और प्रेमलता श्रीवास्तव, और ये फरमाइश आई है कमालगंज फरुखाबाद से तस्नीम अहमद फारूकी की जानिब से, और मेहनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहनकर, राही सरिता गोहनकर, अर्जुन गोहनकर डुक्कू, रोहित अच्छा गजानन येले, नवदीप येले, मधुकर येले हैं सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से, शंकरलाल जायसवाल, अब अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल हैं नांदेड़ येताला से, दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा से हैं, और प्रवीण हागो ने, योगिता हागो ने और प्रियाली हैं कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से, राजधानी रायपुर से मिनीलू में एक नीलम साहिबा साथ में डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, और ही फरमाइश मिली है नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, पिंकी सानी और अफजल मलिक की, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं कामेश यादव, साथ में हैं राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, सिंघाड़ तलाई खंडवा एमपी से। तो आइए सुनते हैं अगला नगमा। फिल्म है रुस्तम-ए-रोम, मौसीकी सुरेश कुमार की।

इस नखमे के साथ साथ ही कुछ नाम भी शामिल कर लेते हैं दोस्तों, चूंकि वक्त अब कम रह गया है। मॉडल टाउन कला से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर और नरेंद्र तनेजा और उनके कुछ और साथी, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार की फरमाइश मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से, और ये फरमाइश मेल मिला है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, और राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र भाई रुद्र और रानी मुकेश, और व्हाइट हाउस बेंगलुरु से है भारत भूषण, साथ में अंजु श्रीवास्तव, और ये फरमाइश मिली है नाचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल अकबर डावर की जानिब से, और अगला ईमेल

अब ये जो बहुत सारे सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये क्यों है कभी बताइएगा जरूर। और श्री कृष्ण बाठी के साथ में कौन कौन है ये भी देखना चाहेंगे जनाब। संदीप पे हैं और अमूल्य हैं धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से, सीताराम कागड़ा बबीता बोध निखिल कागड़ा एकता कॉलोनी रोहतक से हैं। और ये फरमाइश ईमेल मिला है गांव गला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर और आरती रानी की जानिब से। और इस बीच में नगमा भी हो गया है खत्म, कोई बात नहीं है, एक और नगमा आपकी नजर करते हैं, बल्कि छोटे छोटे नगमे हैं तो दो नगमे भी शायद आपको सुनने को मिल जाए। ठाकुर जर्नैल सिंह फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, आशा भोसले का गाया हुआ, गणेश की है मौसीकी।

हमारे दिल की भी आवाज है, कुछ और दोस्त भी शामिल हो जाए। अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चांद फारूक है निजामाबाद तेलंगाना से, फरमाइश किया नेहरू पार्क से। और अगला ईमेल मनमोहन राजावत राज मधुर राजावत राशि रक्षित का है, और आपने ये फरमाइशी ईमेल शाजापुर एमपी से भेजा है। और अगला ईमेल हरमिंदर चावला सोन जोशी शिव कुमार शर्मा का है, भाटापारा छत्तीसगढ़ से है आपकी फरमाइश। और अनिल ताम्रकार अमर ताम्रकार दिलीप वर्मा है शिवाजी चौक कटनी से, और ये फरमाइश ईमेल मिला है आशा भोसले, अच्छा जी हाँ उनकी आवाज में नकमत आप सुन रहे हैं, 15 कावड़ा से अनिल उषा ब्रांडे, अनुश्री धनश्री ब्रांडे, और गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली, साथ में मुजफ्फर अली। और ये फरमाइश मेल प्रभुदास कोटेचा, हंसा कोटेचा, आशीष कोटेचा गए जंक्शन पर राजकोट से, उस्मान शेख फौजी तो सहरा बानो और करिश्मा।

और ये है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसन पवार की फरमाइश पर लक्कड़ बाजार खंडवा से आपने ईमेल किया है। अनिल मोहन, उषा मोहन टेलोनायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं। सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना गुरुवंश सिंह जोड़ा है कृष्णा पार्क दिल्ली से। और स्वर्ण सिंह है गांव दौलेवाला मोगा पंजाब से।

0: प्यार का बंधन फिल्म के इस नगमे के साथ ही तमिल इशाद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। हम आज इन्हीं सब कुछ विषयों पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी। केतन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: सबसे पहले तो केतन जी हमें यही बताइए कि प्रधानमंत्री की जो आज की सभा रही है और विशेष रूप से जो विभिन्न विकास परियोजनाओं का आरंभ हुआ है वह किस रूप में है और कैसे गुजरात समेत पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा।
3: प्रधानमंत्री जी ने आज गुजरात के प्रमुख दो शहर की मुलाकात लेके वेरियस डेवलपमेंटल वर्क से उनको या तो शिलान्यास किया है या तो डेडिकेट किया है नेशन को। सुबह सबसे पहले वो वडोदरा आए थे सेंट्रल गुजरात में, जहां करीबन 35,000 करोड़ से भी ज्यादा वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स का उन्होंने शिलान्यास किया या तो फिर इनॉग्रेशन किया, जिसमें मेनली देखे जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स और इंडियन रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स को समावेश किया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करीबन 1840 करोड़ प्रोजेक्ट्स की कीमत के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। और जो जिस प्रोजेक्ट पर सबकी नजर है वो जैसे आपने जिक्र किया कि 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे के, उसका उन्होंने आज राष्ट्र को समर्पित किया
2: जी।
3: तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा जो प्रधानमंत्री का दौरा है भारत का, उसमें ये सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो 20,000 करोड़ का एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC
2: जी,
3: ये जो 3 प्रमुख उपक्रम है उसका लोकार्पण।

0: प्रकाश हुआ है।
1: यहाँ पर श्रोताओं हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही, खासतौर से रेलवे के क्षेत्र में देश ने जो प्रगति की है उसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत न केवल रेलवे कोच और मेट्रो कोच बल्कि रेलवे लोकोमोटिव के लिए भी एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के तौर पर उभरा है। 2014 से लेकर अब तक देश में 50,000 आधुनिक रेलवे कोच बनाए गए हैं। आइए हम प्रधानमंत्री का वक्तव्य समझते हैं।
2: जब देश की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बीते एक दशक में भारत रेल कोच मेट्रो कोच बनाने का रेल इंजन बनाने का भी एक बड़ा निर्माता बना है। 2014 के बाद से अब तक भारत ने करीब 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए हैं। पुरानी सरकार 10 साल में 50,000 टॉयलेट नहीं बना सकती थी, 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही। करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं, 2.5 लाख।
1: यहाँ पर केतन जी हम समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा कि रेलवे का बजट काफी बढ़ा है उससे पूरा इकोसिस्टम बदल गया है, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए किस रूप में परिवर्तन हो रहा है।
0: देखिए, प्रधानमंत्री का जो पहले विजन था कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है। वेरियस प्रोजेक्ट चाहे वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में उन्होंने बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। थोड़े साल पहले बड़ौदा में ही एक बॉम्बार्डियर रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन भी उन्होंने किया था। तो आज जो वडोदरा में हुआ है, करीबन 329 किलोमीटर का जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है, मोर देन 9,700 करोड़, उसमें वडोदरा रतलाम का एक रेलवे लाइन है, करजन से मलसर तक का ब्रॉडगेज कन्वर्जन है, और विश्वामित्री डबोई सेक्शन का एक डबलिंग रेलवे ट्रैक है। वो सब प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया और या तो इनॉग्रेशन किया या तो शिलान्यास किया। लेकिन सबसे ज्यादा देखने की बात है कि मुंबई से वडोदरा, मतलब महाराष्ट्र को सेंट्रल गुजरात और सेंट्रल गुजरात से अहमदाबाद तक,
1: जी,
0: वो पूरा जो इंडस्ट्री कॉरिडोर है जिसको गुजरात में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत तब तक आया करती थी वो माल परिवहन की थी, गुड्स परिवहन की,
1: जी,
0: कि एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती थी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में आज कहा है कि एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी और गुड्स ट्रेन भी चलेगी तो ऑब्वियसली दोनों के लिए परेशानी होगी। तो पहले जितना डिस्टेंस काटने के लिए 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा लगता था, वो डिस्टेंस इन डेडिकेटेड ट्रेक कॉरिडोर की वजह से कम होके आधे से भी कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यदि मुझे बड़ौदा से मुंबई किसी चीज को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो जो ट्रैवलिंग टाइम था, ऑपरेशन कॉस्ट थी, वो जो पहले आती थी वो इन डेडिकेटेड ट्रेक कॉरिडोर की वजह से काफी कम हो जाएगी। तो नो डाउट ये इसमें दो तरह से हम देख सकते हैं इस चीज को, कि एक तो जो रेलवे के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कि नई लाइन शुरू करना, नई परिवहन सेवाएं शुरू करना, तो इनसे एक तो नए रोजगार के नए अवसर तो क्रिएट होंगे, साथ में इस प्रोजेक्ट से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्रीज जो अभी गुजरात में आ रही है, गुजरात अहमदाबाद और मुंबई के बीच का जो कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके बीच में जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है, उन इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदिन डोमेस्टिक, मतलब कंट्री में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा की जरूरत, वो सुविधाएं काफी बढ़ेगी। वो सुविधाएं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन और पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से बूस्ट मिलेगा।
1: यहाँ यदि हम ये समझना चाहें तो बड़े पैमाने पर इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, किस रूप में रोजगार का परिदृश्य बदलेगा, बढ़ेगा, एक ओर कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा, दूसरी ओर आम लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा, थोड़ा इसको भी स्पष्ट कीजिए।
0: मतलब जिस तरह के प्रोजेक्ट के बाद एक आ रहे हैं, ब्रॉड लाइन कन्वर्जन से लेके नई लाइन क्रिएट करना, तो ऑब्वियसली नए प्रोजेक्ट्स में नए लोगों की खपत होगी, नए गुड्स की खपत होगी। तो जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है पूरी एक रेलवे लाइन को डेवलप करने के लिए या कोई एक नेशनल हाईवे को डेवलप करने के लिए, तो ऑब्वियसली जब काम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और दूसरा इनसे क्या है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो प्रॉस्पर होगी, और यदि लोकल इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर होगी तो मेरे ख्याल से ये परिवहन की वजह से जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो बड़े प्रोजेक्ट पहले नहीं ला सकती थी, वो बड़े प्रोजेक्ट्स वो शुरू करेगी सब इंडस्ट्रीज। तो ऑब्वियसली किसी भी इंडस्ट्री का यदि ग्रोथ होता है, पूरे एक सेक्टर का ग्रोथ होता है, तो उसी सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
1: यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के उस उद्बोधन को याद करना चाहेंगे जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगी और जिससे देश के भीतर एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। किस रूप में इसे देखते हैं कि जो नया फ्रेट कॉरिडोर बना है, साथ ही जो नई कह लें औद्योगिक इकाइयां आ रही हैं, उससे किस तरह से पूरे देश के लिए और विश्व के लिए आने वाले दिनों में हम सप्लाई चेन के रूप में विकसित हो सकेंगे?
0: सप्लाई चेन एसेंशियल है, और ऐसा इफेक्टिव सप्लाई चेन के लिए हमें चाहिए क्या, एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, चाहे वो रेलवे के जरिए हो या और जरिए से हो। आज जो प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न के फ्रेट कॉरिडोर का डेडिकेट किया है नेशन में, उसमें आप उसमें देखिए आप तीन सेक्शन इंक्लूड है, एक सारण से मकरपुरा मतलब बड़ौदा, एक उमरगांव से न्यू सफाले और तीसरा न्यू सफाले से मुंबई का JNPT। तो इस तरीके से देखें तो सानंद यहाँ है अहमदाबाद के बगल में
1: जी,
0: वहां से लेके मुंबई के JNPT पोर्ट तक जो गुड्स का परिवहन जिस गति से होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से परिवहन में काफी तेजी आएगी, क्योंकि एक डेडिकेटेड कॉरिडोर है तो परिवहन में तेजी आएगी, तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट मिलेगा। और दूसरा कि जिस तरह से हम पिछले अभी हमने देखा है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आ चुकी है, पूरे विश्व की नजर अभी जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ रही है, तो उस दिशा में हमें किसी पर आयात करने के लिए निर्भर न रहना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर से लेके जो जो भी चीजें जिस पर हम दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे इंपोर्ट करने के लिए, वही चीजें हम आज डोमेस्टिकली अपने देश में बना रहे हैं, शुरू हो गया है, कहीं प्रोजेक्ट स्पीड पकड़ चुका है। ऑटो इंडस्ट्री में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, टेक्सटाइल तो हमारा है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर चिप बनाने से लेके। तो जो एक 2047 का एक प्रधानमंत्री ने हमें जो जिन्हें देश को एक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, इस विकसित भारत के लक्ष्य में सबसे प्रमुख कोई चीज है तो वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहाँ जो चीज की जरूरत है वो चीज का उत्पादन भी हमारे वहाँ हो और उस चीज का बाजार भी हमारे यहाँ हो
1: जी।
0: तो ये दोनों तरीके से ये अलाइन होता है उनके विजन के साथ, कि एक तरफ यदि हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो जो उत्पादन हो रहा है उसको बाहर भेजने के लिए, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट और देश के बाहर भेजने के लिए जो सुविधा हमें डेवलप करनी चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने शिप का जिक्र किया था
1: जी,
0: कि चाहे हम दरियाई रूट से एक्सपोर्ट करें या और अदर रूट से, लेकिन वो जो पोर्ट है, पोर्ट से इंटीरियर एरिया में परिवहन करने के लिए भी इफेक्टिव सुविधा की जरूरत है। तो दिस वॉज द गैप विच वी आर एक्सपीरियंसिंग पिछले कई सालों से, तो वो गैप आज इस प्रकार के प्रोजेक्ट की वजह से काफी कम होता जा रहा है, काफी हम उस दिशा में काफी आगे देखते जा रहे हैं।
1: यानी कुल मिलाकर हम देखें तो देश तेज गति से प्रगति कर रहा है और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। इस बदलाव को किस रूप में आंकते हैं आप?
0: निश्चित तौर से एक बदलाव लोग अभी महसूस कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात पैसेंजर के तौर में मैं कहता हूँ, आज हम देख रहे हैं कि कितनी सारी वंदे भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी बढ़ी है, सुविधाएं मिली है, नई नई वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है और वो डेडिकेट हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे का जो परिश्रम है, वो ये रेलवे रिलेटेड फैसिलिटीज खड़ी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कि किसी एक ट्रेन को आप एक शहर के से दूसरे शहर को जोड़ते हैं तो इफेक्टिव कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो उस दिशा में ये काफी सिग्निफिकेंट है कि पहले रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, हमारे पास सबसे बड़ा कनेक्टिविटी पावर है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं हम ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक के जो लास्ट विलेजेस है भारत के, वो हम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। तो इस सरकार ने जो रेलवे पर फोकस किया है, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 2.75 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें 50,000 कोच अपने आप में एक माइलस्टोन है, कि जिस देश में अभी 10-15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि रेलवे कोच बनाएंगे, वहां आज हम 50,000 रेलवे कोच नए छोड़ चुके हैं
1: जी।
0: तो रेलवे में अपने आप में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, अच्छी गाड़ियां देखने को मिलती है। और आज गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद से सूरत जाने के लिए, अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए आज आपके पास ट्रेन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपका समय बचाता है, आपकी एनर्जी बचाता है, और एट द सेम टाइम ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से जो इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, उसका समय बचेगा, इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट परिवहन कर पाएंगे, वो भी अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है टुवर्ड्स 2047।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हम सधे कदमों से धीरे धीरे चलकर पूरा कर रहे हैं, और हम विश्वास रखते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेज गति से देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ेगा। केतन जी, आपने हमें बहुत उपयोगी जानकारियां दी हैं, श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर हमारी नशियात जारी है। बज़्म मौसीकी सुनिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का गाया राग तोड़ी में ख्याल।

ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि अब भारतीय यूपीआई 11 मुल्कों में दस्तियाब है। पिछले सहमाही में मुल्क की काबिल जिक्र मजमू घरेलू पैदावार जीडीपी की शरह तरक्की की सताइश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि चैलेंजों से पुर आलमी तनाजात गैर यकीनी सूरतयाल और तवानाई और जरूरी अशिया की आलमी सप्लाई चेन्स पर दबाव के बावजूद भारत की 7.8% तरक्की ने दुनिया को एक बार फिर उम्मीद की यकीन दहानी करा दी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मुल्क की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी प्लस से बढ़ाकर A- तक पहुंचा दिया है, जिसमें एक मुस्तकम आउटलुक शामिल है, और इस तरह भारत 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे के बाद ए रेटिंग के जुमरे में वापस लौटा है। 4 रोजा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मुंबई में 8 से 11 सितंबर तक मुनक्किद हो रहा है। इससे कबल दिन में वजीर आजम ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम ने मगरबी रेलवे के लिए वक्फ मालगाड़ी की राहदारियों के 3 अहम सेक्शन मुल्क के नाम वक्फ किए और ये मालगाड़ी की राहदारी के नेटवर्क की पूरी तरह तकमील और बाकायदा कामकाज शुरू होने की अलामत है। जनाब मोदी ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू अम्बरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक मुसाफिर रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो दूर दराज वाके कबायली इलाके अलीराजपुर को कौमी रेल ग्रिड से जोड़ती है। उन्होंने 9,700 करोड़ रुपए की मालियत के रेलवे के 3 तौसीई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के एक नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक मुकम्मल खुद कफील सप्लाई चेन मुल्क के अंदरून तैयार हो रही है, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक से समुद्रों में भारी जहाजरानी तक का आता करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर उभरा है और वो अब खुद जदीद तरीन रेलगाड़ियों और मेट्रो के कोच बना रहा है। उन्होंने भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर की तेजी से होती हुई कायापलट को भी उजागर किया। उन्होंने नवसारी में नौ तामीर शुदा बीजेपी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद एक पुरहजुम अवामी रैली से खिताब किया। जनाब मोदी ने शहरियों और अवामी नुमाइंदों से जोर देकर कहा कि वो समाजी खिदमात और सफाई को रोजमर्रा की एक बिला कोशिश आदत बना लें, साथ ही इस बात को यकीनी बनाएं कि तरक्याती स्कीमों की रसाई आखिरी फर्द तक हो। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी इस माह की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतअद्दिद रहनुमाओं के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात कही। रूस यूक्रेन जंग के सिलसिले में तर्जुमान ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ राबते में है और वह इस बात पर गौर कर रहा है कि इस लड़ाई को रोके जाने के सिलसिले में क्या कोई नजरियात और तजावीज हैं जो मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने हाल ही में यूक्रेन और पोलैंड का दौरा किया था। अपनी बातचीत के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा था कि भारत ने मुसलसल ये मौकफ बरकरार रखा है कि ये दौर जंग का नहीं है और कोई भी हल जंग के मैदान से नहीं निकलेगा। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब से मुतालिक बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय फॉरेंसिक टीम और टनल में बचाव टीम जमीनी सतह पर काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम इस वक्त काठमांडू में 2 लेबोरेटरियों में काम कर रही है और वो 1,200 डीएनए नमूनों की जांच कर रही है। जनाब जायसवाल ने कहा कि 275 भारतीय शहरी लापता हैं, जिनमें वो 49 अफराद भी शामिल हैं जो चीन की तरफ लापता हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 169 भारतीय शहरियों को अब तक बचाया जा चुका है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा श्रीलंका दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे। उनके दौरे का मकसद दोतरफा दिफाई और बहरी तआवुन को वसत देना है। बिंद्रा नायक के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के नायब वजीर दिफा अरुणा जिया सीकरा और श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने
جناب سنگھ کا پرجوش خیر مقدم کیا. اپنے دورے میں وزیر دفاع مضبوط دفاعی اور بحری ساجیداری سمیت باہمی طور پر فائدہ مند مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مقصد سے سری لنکا کی قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے. جناب سنگھ اپنے دورے میں کولمبو میں بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے. روانگی سے قبل اپنے بیان میں جناب سنگھ نے بھارت کی پڑوس مقدم پالیسی اور

0: सागर विजन के तहत श्रीलंका के को भारत के अहम साझेदारों में से एक करार दिया। कल रूस ने यह कहते हुए कि यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए भारत की जानिब से अमन कोशिशों का वो खैर मकदम करता है और कहा है कि ये मॉस्को की हिकमत अमली बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल तलाश करने के नई दिल्ली के मौकफ से करीबी तौर पर हम आहंग है। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले कल दोपहर नई दिल्ली में एक वर्चुअल ब्रीफिंग से मीडिया से खिताब करते हुए क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने यह बात कही। जनाब पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन लड़ाई पर वो भारत के मौकफ से वाकिफ हैं और काफी हद तक वो उनके खुद के मौकफ से मुताबिक रखता है कि वो यूक्रेन जंग का पुरअमन हल चाहते हैं और रूस इससे इत्तेफाक रखता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान हुकूमत से जोर देकर कहा है कि वह इंसानी हकूक के वकला ईमान मजारी हाजिर और हादी अली चट्टा को फौरन और गैर मशरूत तौर पर रिहा करे। उन पर आयद किए गए जुर्म और तवील सजा ने इख्तलाफ राय को खामोश करने के लिए साइबर क्राइम से मुतालिक कवानीन के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में सख्त तशवीश पैदा कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम एक खत में एमनेस्टी ने कहा कि इन दो वकीलों को इस बरस 23 जनवरी को हिरासत में लिया गया था, हालांकि उन्हें दो दिन कबल ही गिरफ्तारी से कबल जमानत दे दी गई थी। बांग्लादेश के भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में कल बंगा भवन में बांग्लादेश के सदर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से खैर सगाली पर मबनी मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों ने दोनों मुल्कों के अवाम के बाहमी मफाद के लिए बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ढाका में भारतीय हाई कमीशन ने अपने इस तबादले ख्याल की तफसील बताते हुए भारत और बांग्लादेश के दरमियान कदीम ताल्लुकात को उजागर किया, जिसकी तश्कील मुश्तरक तारीखी करीबी सकाफती ताल्लुकात और आवाम से आवाम के राब्तों पर होती है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सफर नई बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तराआत और सबकी शमूलियत शामिल है। उन्होंने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने गुजरात में 35,000 करोड़ रूपये की मालियत के कई प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्त किया। उन्होंने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं ताकि बाहमी दिफा और समुद्री सरहद से मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। और रूस ने यूक्रेन लड़ाई के खात्मे के लिए भारत की अमन कोशिशों की हिमायत की है। रूस ने इस मामले पर भारत के मौकफ से वाबस्तगी का इजहार किया है। इसी के साथ आलमी खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से हजार इकहत्तर किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। क्लासिकी मौसीकी में रिजर्व सुनी पंडित जगदीश मोहन का जल तरंग पर बजाया राग दुर्गा और राग यमन।

क्लासिकी मौसीकी में अभी आप सुन रहे थे पंडित जगदीश मोहन का जल तरंग पर बजाया राग दुर्गा और यमन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आखिरी शब्द इस प्रोग्राम में सुनिए चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नक्मे। आगाज आशा भोसले और शमशाद बेगम के गाए हुए नक्मे से।

0: 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने मगरबी रेलवे के लिए वक्फ मालगाड़ी की राहदारियों के 3 अहम सेक्शन मुल्क के नाम वक्फ किए और ये मालगाड़ी की राहदारी के नेटवर्क की पूरी तरह तकमील और बाकायदा कामकाज शुरू होने की अलामत है। जनाब मोदी ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू अम्बरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक मुसाफिर रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो दूर दराज वाके कबायली इलाके अलीराजपुर को कौमी रेल ग्रिड से जोड़ती है। उन्होंने 9,700 करोड़ रुपए की मालियत के रेलवे के 3 तौसीई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के एक नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक मुकम्मल खुद कफील सप्लाई चेन मुल्क के अंदरून तैयार हो रही है, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक से समुद्रों में भारी जहाजरानी तक का अहाता करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर उभरा है और वह अब खुद जदीद तरीन रेलगाड़ियों और मेट्रो के कोच बना रहा है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी इस माह की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतादद रहनुमाओं के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने यह बात कही। रूस यूक्रेन जंग के सिलसिले में तर्जुमान ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ राबते में है और वह इस बात पर गौर कर रहा है इस लड़ाई को रोके जाने के सिलसिले में क्या कोई नजरियात और तजावीज हैं जो मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने हाल ही में यूक्रेन और पोलैंड का दौरा किया था। अपनी बातचीत के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ने मुसलसल ये मौकफ बरकरार रखा है कि ये दौर जंग का नहीं है और कोई भी हल जंग के मैदान से नहीं निकलेगा। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब से मुतालिक बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय फॉरेंसिक टीम और टनल में बचाव टीम जमीनी सतह पर काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम इस वक्त काठमांडू में 2 लेबोरेटरियों में काम कर रही है और वो 1,200 DNA नमूनों की जांच कर रही है। जनाब जायसवाल ने कहा कि 275 भारतीय शहरी लापता हैं, जिनमें वो 49 अफराद भी शामिल हैं जो चीन की तरफ लापता हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 169 भारतीय शहरियों को अब तक बचाया जा चुका है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के आवाम और हुकूमत के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने जल्द मदद का हाथ बढ़ाया और वो राहत इमदाद बचाव और तामीर नौ की कोशिशों में मदद जारी रखेगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि 7 तैयारों के जरिए अब तक 95 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है और कुछ और इमदादी सामान जल्द भेजा जाएगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत चीन ताल्लुकात रफ्ता रफ्ता मुस्बत सिमत की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताल्लुकात के इस तरह रफ्ता रफ्ता मामूल पर आने और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते इंतहाई अहम हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा श्रीलंका दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे। उनके दौरे का मकसद दोतरफा दिफाई और बहरी तआवुन को वसअत देना है। बंदरा नायके बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के नायब वजीर दिफा अरुणा जयसिक्रा और श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने जनाब सिंह का पुरजोश खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर दिफा मजबूत दिफाई और बहरी साझेदारी समेत बाहमी तौर पर फायदेमंद मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के मकसद से श्रीलंका की क्यादत के साथ बातचीत करेंगे। जनाब सिंह अपने दौरे में कोलंबो में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। रवानगी से कबल अपने बयान में जनाब सिंह ने भारत की पड़ोस मुकदम पॉलिसी और महासागर विजन के तहत श्रीलंका को भारत के अहम साझेदारों में से एक करार दिया। कल रूस ने यह कहते हुए कि यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए भारत की जानिब से अमन कोशिशों का वो खैर मकदम करता है और कहा कि मॉस्को की हिकमत अमली बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल तलाश करने के नई दिल्ली के मौकफ से करीबी तौर पर हमांग है। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले कल दोपहर नई दिल्ली में एक वर्चुअल ब्रीफिंग से मीडिया से खिताब करते हुए क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने ये बात कही। जनाब पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन लड़ाई पर वो भारत के मौकफ से वाकिफ हैं और काफी हद तक वो उनके खुद के मौकफ से मुताबिकत रखता है कि वो यूक्रेन जंग का पुरमन हल चाहते हैं और रूस इससे इत्तेफाक रखता है। جہاں پیسکوف نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ جنگ کی صورتحال سے صدر پوتن کی جانب سے وزیر اعظم مودی کو آگاہ کیے جانے کا بھی ایک موقع ہوگا. بھارت نے احمد آباد میں جاری عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے تحت کل سونے کے دو، چاندی کے دو اور کانسے کے ایک تمغے سمیت کل پانچ تمغے جیتے ہیں. مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلے میں بھارت کے تومر کمار اور شیام سندر سوامی نے سونے کے تمغے جیتے، جبکہ ہرویندر سنگھ اور وجے سندری نے مردوں کے ریکرو ٹیم زمرے میں بھی سونے کا تمغہ اپنے نام کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا فنٹیک سفر نئی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے، جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت شامل ہے. انہوں نے ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کا افتتاح کیا. وزیر اعظم نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا. انہوں نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں، تاکہ باہمی دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے. روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے کے لیے بھارت کے امن کوششوں کی حمایت کی ہے. روس نے اس معاملے پر بھارت کے موقف سے وابستگی کا اظہار کیا ہے. اور احمد آباد میں عالمی پیرا اندازی سیریز میں سونے کے دو تمغوں سمیت بھارت نے پانچ تمغے جیتے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایڈ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈیش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کا ایک بجا جاتا ہے. ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں انجلی. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है. मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं.
3: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है. एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले.
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए. भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है. श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया. प्रधानमंत्री ने कहा 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया. इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है. श्री मोदी ने कहा कि यह गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं. श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही. रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रक्षा मंत्री का श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री अरुणा जयसेकरा ने बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफगानी की. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए. कानून मंत्रालय के अनुसार 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है. गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 1 वकील और 1 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रहेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest GFF 2026 in Mumbai. The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in last month. He said, Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, "World has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities."
3: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
4: द 4-डे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 इज बीइंग हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 8th to 11th of September. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library, that is PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness and enhance public engagement. The government has approved strategic investment plans with an aggregate project outlay of over 735 crore rupees for ITI clusters in Rajasthan, Uttar Pradesh and Telangana. It includes 241 crore rupees investment plan for Rajasthan, over 240 crore rupees for Uttar Pradesh and 254 crore rupees investment plan for Telangana. It was approved during the 5th National Steering Committee, that is NSC, meeting of the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITIs, PM Setu. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh, who arrived in Colombo on his maiden three-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership, made the remarks during an interaction with the Indian diaspora yesterday. The Defence Minister said that India will always stand firmly with Sri Lanka whenever the island nation faces a crisis. He said both the nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship. Three judges were appointed to the Chhattisgarh High Court and two additional judges to the Guwahati High Court yesterday. According to the Union Law Ministry, three judicial officers have been elevated as judges of the Chhattisgarh High Court. In the Guwahati High Court, one advocate and one judicial officer were appointed additional judges. Judicial officers and advocates are appointed judges in high courts. Additional judges are usually appointed for a period of 2 years before being elevated as judges or what is commonly called permanent judges. India bagged 5 medals, including 2 gold, 2 silver and 1 bronze on the penultimate day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad yesterday, with the men's teams winning the top honours. Reigning world champion Toman Kumar and Shyam Sundar Swamy clinched the gold medal in the men's compound team event with a dominant win over Iraq's Abbas Kadim and Anwar Aldawood 152-139. Men's duo of double Paralympic medalist Harvinder Singh and Vijay Sundi overcame Slovakia's David Ivan and Denis Ivan 6-2 to bag the yellow medal in recurve team title. The women's recurve team of Bhavna and Pooja settled for silver after going down 0-6 to Chinese pair in the final. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्यरात्रि के 1:10 गीत सुनहरे कार्यक्रम जिसमें हम आपको सुनवाते हैं पुराने सदाबहार फिल्मी नगमे और उन यादों में ले जाते हैं जो आपके दिल में आज भी बरकरार हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि गाने ही जो लिखे हैं, जो गाए गए हैं और जो संगीत उनमें है वो इतना खूबसूरत है कि उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो चलिए निकल पड़ते हैं इन गीतों के सफर पर आशा भोसले की आवाज के साथ। जी हाँ, पहला गीत फिल्म वक्त से आ रहा है आपके लिए।

जी हाँ, जो भी है बस यही एक पल है, और वो पल आप हमारे साथ और हम आपके साथ जी रहे हैं रेडियो के माध्यम से। अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपको सुनवाने जा रहे हैं, कश्मीर की कली फिल्म से। और ये रात में अगर आप कुछ ऐसे बोल सोच रहे हैं कि आपको उनकी तारीफ करनी है, तो इस गीत से बेहतर शायद ही कुछ हो जिससे

अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी की आवाजों में ये गीत फिल्म राजकुमार से, जिसमें संगीत शंकर जयकिशन का था। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर व अन्य साथियों की आवाजों में। फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है, और गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, संगीत से पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफी की आवाज के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत फिल्म शागिर्द से। बोल मजरूह के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे जो आपको दिल तक पहुंच रहे हैं। और अगला गीत फिल्म किस्मत से आशा भोसले की आवाज में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। नूर देवसी के लिखे बोल हैं और ओपी नैयर ने संगीत से पिरोया था।

इस गीत के बाद अब चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर। जी हाँ, किशोर कुमार, आशा भोसले व अन्य साथियों की आवाजों में आपको ये गीत सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है कर्ज, बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत सुनहरे कार्यक्रम में या रहा है अगला गीत।

0: इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 2 बजने को हैं, लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया। श्री मोदी ने कहा कि यह गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात की। रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रक्षा मंत्री की श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री अरुणा जयसेकरा ने बंदरनायके के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय

0: इसी गीत के साथ नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। फिलहाल रात्रि के 3 बजने को हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रहेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है।

महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा कराईकल में भी बारिश की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गुलाम अली की आवाज में कार्यक्रम की ये पहली गजल आप सुन रहे थे। अब आइए आपको सुनवाते हैं एक और गजल मेहंदी हसन की आवाज में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल और गीत। इस कार्यक्रम में अभी आपने जो गजल सुनी उसको आवाज दी थी जगजीत सिंह ने। अब आइए सुनते हैं मेहदी हसन की आवाज में ये गजल।

ये गजल आप सुन रहे थे चंदन दास की आवाज में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी गजल लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में।

0: लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की गाई हुई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम गजल और गीत अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

जी पहले सुनिए सुधा रघुनाथ के स्वर में कृष्ण स्तुति।

और अब प्रस्तुत है भूकल चिन्न सत्यनारायण के स्वर में नारायण तीर्थ की एक रचना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 52 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार होंगे 5:05 पर। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5:10 पर।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी होगा प्रातः 5:30 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे प्रातः 6:10 पर।

प्रातः 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 7:10 पर।

फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 से। प्रातः 8:45 पर होगा हमारा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा।

प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साइंस मैगजीन। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक होगा प्रातः 9:30 से।

0: प्रातः 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 5 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: सारे काम भारंतर पूरी पड़ी हमें अब गुण परे गुण नाही अमृत छाद बिक।

दर्शन परसे गुरु का जानम मरण दुख सिफत खसम दी नूर अरसम कुरस तुद लिठ सचे पातशाह मल जानम जनम दी सजन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सबना दा सजन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਤਲੰਗਾ

आपनरे करहर रंग कीना माणे आनड़िए मानरा काय करे आपनरे करहर रंग कीना माणे सहनेड़ा तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे किया दे सलाइया नैणी

सह नजर कर देखा सो दिन लेखा कामण नौनिद पाई अपने कंत प्यारी सास भगण नानक सबराई ऐसा रंग राते सहज की माते अहन सा पाई समाने सुंदर साई स्वरूप विचखण ऐसा रंग राति सहज की माती अनस भाई समाणी सुंदर साई स्वरूप विचखण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तिलंग महला पहला प्यानड़िए मानड़ा काय करे अपना घर हर रंग की ना माने है।

जो तोलिया ने सगौरा होया वे जो हम तम रिगाहे शीस ने वाया क्या किए ब्राह्मण कर्म सफोक निश्चो कर्म नानक निश्चो क्या सतगुरु।

ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੁਰਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ

ਸਾਰੀਆ ਸੰਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਕੀਤੇ।

ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ